ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर। आज है रविवार, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 जुलाई 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय 5:59 होने वाले हैं। आरंभ होती है आज की सभा। इस सभा में आपका स्वागत है।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। समाचार के लिए लिए चलते हैं आपको हमारे दिल्ली केंद्र।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यू और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती किसानी। इसमें आज टाढ़ जमीन में बोई जाने वाली फसलें विषय पर जानकारी दे रही हैं अनीता तिर्की।
1: बीजों को खेत में बोने से पूर्व बीज में अनुशंसित
2: खरीफ के मौसम में टाढ़ जमीन में
3: तीन विधियों
2: धान, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मड़ुआ, उड़द, मूंग,
3: कुल्थी,
2: सरगुजा इत्यादि लगा सकते हैं,
3: ही मिलाना है।
2: इसके लिए सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करके 2 से 3 बार हल या ट्रैक्टर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। अंतिम जुताई के समय कंपोस्ट 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में बिखेर दें। प्रदेश की टाढ़ जमीन अम्लीय है, अतः इससे अच्छी उपज लेने के लिए चूने का प्रयोग आवश्यक है। अगर हम लाइन में चूना डालें तो प्रति वर्ष 3 से 4 क्विंटल चूना की आवश्यकता होती है और मिट्टी का पीएच ठीक हो जाता है, जिससे उपज अच्छी प्राप्त होती है। टाढ़ जमीन में यदि आप खेती करते हैं तो इसके लिए आपको उन्नत किस्मों की जानकारी, बीज दर और उर्वरक की मात्रा क्या होगी इसका भी जानकारी रखना है। जैसे कि यदि आप धान लगा रहे हैं तो धान के लिए उन्नत प्रभेद में बिरसा विकास धान 109, बिरसा विकास धान 110, वंदना, बिरसा धान 108 ये प्रमुख है। बीज दर 80 किलो से 100 किलो प्रति हेक्टेयर है और उर्वरक की मात्रा जो है नित्रजन, फास्फोरस और पोटाश 40 किलो, 20 किलो, 20 किलो प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह यदि आप मक्का लेना चाहते हैं तो बिरसा मक्का 1 जो करीब 85 दिनों में तैयार हो जाती है, बिरसा मक्का 2 जो करीब 75 दिनों में तैयार हो जाती है और सुवान कंपोजिट 1 ये करीब 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। बीज दर 20 किलो प्रति हेक्टेयर है और उर्वरक की मात्रा जो है नित्रजन यानी नाइट्रोजन जो है 100 किलो प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलो प्रति हेक्टेयर और पोटास 40 किलो प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह यदि आप अरहर की खेती करना चाहते हैं तो उपास 120 लगा सकते हैं जो करीब 120-130 दिनों में तैयार हो जाती है, बिरसा अरहर 1 जो करीब 190 दिनों में तैयार हो जाती है, आशा जो करीब 200 दिनों में तैयार हो जाती है, बहार 230 दिन की फसल है या नरेंद्र अरहर 1 जो करीब 240 दिन की फसल है इसको आप लगा सकते हैं। बीज दर 20 किलो प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह यदि आप मड़ुआ की खेती करना चाहते हैं तो मड़ुआ की उन्नत किस्मों में A404 है जो करीब 115 से 120 दिनों में तैयार हो जाती है, बीज दर 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर है। गुंदली की अच्छी किस्म में उन्नत किस्म में बिरसा गुंदली 1 है जो करीब 55 से 60 दिनों की फसल है। कुल्थी की उन्नत किस्मों में बिरसा कुल्थी 1 है जो करीब 100 से 105 दिनों में तैयार हो जाती है। अगर आप सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो बिरसा सोयाबीन 1 या बिरसा सफेद सोयाबीन 2 लगा सकते हैं। बीज दर होगा 70 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर। यदि आप तिल की खेती करना चाहते हैं तो कांके सफेद इसको लगा सकते हैं, बीज दर 5 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर है। अगर हम उड़द की बात करें तो बिरसा उड़द 1 या पंत यू 19 ये लगा सकते हैं जो करीब 75 से 80 दिनों में तैयार हो जाती है, बीज दर 30 किलो प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह हम अगर मूंग की बात करें तो पूसा विशाल इसको आप लगा सकते हैं। मूंगफली में AK12-24 या बिरसा बोल्ड और सरगुजा की बात करें तो बिरसा नाइजर 1 इसको आप लगा सकते हैं।

0: जो करीब 100 से 105 दिनों में तैयार हो जाती है।
1: टार जमीन में बोई जाने वाली फसलें, खेती किसानी कार्यक्रम में इस विषय पर जानकारी दे रही थी अनिता तिर्की। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है चिंतन। 12

0: खराब आदतों को त्यागना ही विसर्जन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार हैं, और जब हम इनका त्याग करते हैं तो यही विसर्जन है। साथ ही जहां खुद का ध्यान ना रहे, यानी इस आत्म तत्व को जब तक हम उस परम तत्व में विलीन कर देते हैं तो हम स्वयं का विसर्जन करते हैं। कोई भी मनुष्य ना तो संपूर्णतः अच्छा है और ना ही कोई 100% खराब। प्रत्येक मनुष्य में अच्छी और खराब दोनों आदतों का समावेश होता है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के जीवन का ध्येय यही होना चाहिए कि वो विकारों से दूर रहे। हमें हमेशा खराब आचरण को दूर करके सदा आचरण को अपनाना चाहिए। बहुत से लोग नए साल में या किसी अन्य विशेष दिवस पर प्रण करते हैं कि वे अपनी समस्त खराब आदतें त्याग देंगे, लेकिन उनका प्रण 2-4 दिन में ही टूट जाता है। इसका कारण उनका मन है, जिसे वे साध नहीं पाते, और यही मन उन्हें विचलित कर देता है। इसके लिए अपनी इच्छा शक्ति भी दृढ़ करनी चाहिए। उसे मन से दृढ़ता पूर्वक ये मानना चाहिए कि निश्चित तौर पर खराब आदतें दूर हो सकती हैं। खराब आदतें मनुष्य का चरित्र नहीं बल्कि उसका स्वभाव है, और वो इससे छुटकारा पा सकता है। विसर्जन का मतलब यही है कि ब्रह्मांड से हम आत्म तत्व के रूप में आए और फिर उसी में विलीन हो गए। कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि आत्मा क्या है और मनुष्य के मरने के बाद ये कहां चली जाती है। कबीरदास जी ने कहा कि जैसे घड़े में आप पानी रखिए और उसे तालाब में रख दीजिए, तो घड़े और तालाब का पानी अलग अलग होगा, लेकिन जैसे ही घड़ा फूटता है वैसे ही भीतर का पानी तालाब में मिल जाता है। इसी तरह हमारा शरीर भी एक घड़ा है, आत्मा इसके अंदर जल के समान है। जैसे ही शरीर से यह निकलती है तो वो सागर रूपी ब्रह्मांड में मिल जाती है। मनुष्य को सोचना चाहिए कि जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है ये सब प्रभु की संरचना है, और इसमें हम मात्र एक खिलौने हैं। हम केवल अपनी भूमिका निभाने आए हैं और अपने हिस्से का अभिनय करके चले जाएंगे। जब आपको हमेशा इस बात का ज्ञान और आभास रहता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो एक धोखा है और इसमें कुछ भी शाश्वत नहीं है तथा सभी कुछ अस्थाई है, तभी मनुष्य स्वयं को विसर्जित कर पाता है।
1: ये था आज का चिंतन, जिसका संकलन और वाचन किया दिनेश कुमार लाल ने। आइए शामिल होते हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में, और सबसे पहले सुनते हैं ये देशभक्ति गीत अनूप जलोटा की आवाज में।

अनूप जलोटा की आवाज में अभी आप ये देशभक्ति गीत सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये भक्ति गीत।

इसी भक्ति गीत के साथ आराधना संपन्न होती है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

वन गमन के समय श्री राम के शोक में व्याकुल अयोध्या के नरनारी किसी प्रकार भी उनका साथ छोड़ने को राजी नहीं हुए। वे रथ के पीछे खींचे से चल दिए। प्रेम युक्त वचनों द्वारा उन्होंने लोगों को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु स्नेह डोर में बंधे लोग किसी भांति लौटने को तैयार नहीं होते। शोक और परिश्रम से थके लोग जब रात्रि में सो गए तो उन्हें देवताओं की माया से गाढ़ी नींद आ गई। दोपहर रात गए श्री राम ने सुमंत्र को रथ कुछ इस प्रकार हांक ले चलने को कहा कि पृथ्वी पर उसके पहियों के निशान ना दिखें। इस प्रकार शिव के चरणों में सिर नवाकर सीता और लक्ष्मण सहित राम अयोध्या के नरनारियों को सोता छोड़कर चल दिए। सवेरा होने पर जब लोग जागे तो श्री राम को न पाकर हाहाकार मच गया। कहीं रथ के पहियों के निशान तक नहीं मिले। संताप से भरे लोग प्रलाप करते अयोध्या लौट चले। उधर सीता तथा मंत्री समेत दोनों भाई गंगा तट पर बसे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। रथ से उतरकर उन्होंने पतित पावनी गंगा को हर्षित होकर प्रणाम निवेदित किया।

अभी आप श्री रामचरितमानस गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब आपको आज की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा हम बता दें। अब से बस कुछ ही देर में यानी 6:55 पर आपको ले चलेंगे हमारे दिल्ली केंद्र, जहां आप क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार सुन पाएंगे। 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसके अंतर्गत आप सुन पाएंगे आरसीटी क्यों जरूरी विषय पर एक भेंट वार्ता डॉक्टर सिबातुल्ला से। इनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल। 7:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरेले खुला आकाश। ये कार्यक्रम 7:45 पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अंतर्गत आज आप सुन पाएंगे शांति में निवेश यूएन पीस कीपिंग में हमारे ऐतिहासिक योगदान का महत्व, और वार्ताकार होंगे संतोष कुमार। 8:00 आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे और 8:30 पर हमारे स्टूडियो से प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। संवेद गान शिक्षा आप सुनेंगे 8:45 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन आप सुन पाएंगे 9:05 पर। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कलाकार अभिराम पाठक से राग देशी में अलाप और धमार गायन। 10:00 समय होगा बच्चों के लिए हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा का। इस कार्यक्रम के सूत्रधार होंगे अवधेश और शिल्पी, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की होगी। 10:30 पर आप सुनेंगे मनोरंजन और जानकारी से भरा कार्यक्रम जोहार रांची। 11:30 पर फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, और 12:00 महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। इस कार्यक्रम की सूत्रधार होंगी सुमन तिवारी, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की होगी।

आंचलिक लोकगीत का कार्यक्रम भारत भारती आप सुन सकते हैं आज मगही भाषा में, कलाकार सिसोदनी सिंह और साथियों से 12:30 पर। लोक रंग ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे खड़िया में, कलाकार इग्नासियस कैरकट्टा और साथियों से 12:45 पर। 1 बजे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार आप सुन पाएंगे 1:05 पर। हमारे स्टूडियो से प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे 1:10 पर। तो ये थी आज की सभा में प्रस्तुत होने वाले कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी न्यूजीलैण्डदेशस्य स्वीयाम् ऐतिहासिकीं द्विदिवसीय यात्रां सम्पन्नं कृत्वा भारतं प्रति प्रस्थितवान्। विगतचत्वारिंशत् वर्षेभ्यः अनन्तरम् एषा कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः प्रथमा न्यूजीलैण्ड यात्रा आसीत्, या उभयदेशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धान् नूतनां गतिम् अददात्। यात्रा समये प्रधानमन्त्री मोदी न्यूजीलैण्ड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्ताम् अकरोत्। उभौ नेतारौ रक्षा, पर्यटन, क्रीडा, पद प्रबन्धन, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालनादिषु क्षेत्रेषु पञ्च ज्ञापन पत्राणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। अस्याः यात्रायाः प्रमुखाकर्षणेषु अन्यतमः कार्यक्रमः ऑकलैण्ड नगरस्य स्पार्क अरीना इत्यत्र आयोजितः प्रवासी भारतीय समुदायस्य समागमः आसीत्, यस्मिन् 10,000+ प्रवासी भारतीयाः समुपस्थिताः आसन्। समागमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् भारत न्यूजीलैण्ड देशयोः भविष्यं परस्परं सम्बद्धमस्ति।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: प्रधानमन्त्री मोदी सस्नेह स्वागताय न्यूजीलैण्ड देशस्य प्रधानमन्त्रिणं क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतं प्रति कृतज्ञतां प्रकटितवान्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् भारतं पारम्परिक रक्षा सामर्थ्यस्य उन्नत प्रौद्योगिकीनां च सुदृढीकरणेन दृढम्, आत्मनिर्भरं, भविष्यस्य आह्वानेभ्यश्च अनुकूलं रक्षाबलं निर्माति। असौ एतत् विशाखापत्तनम् नगरे भारतीय नौसेनायाः पूर्वी नौसेनादले प्रोजेक्ट 17A इत्येतस्य अन्तर्गते स्वदेशे निर्मितस्य षष्ठयुद्धपोतस्य INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य समावेशन समारोहं सम्बोधयन् अवदत्। रक्षामन्त्री अवदत् यत् INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य नौसेनायां सम्मेलनम् भारतस्य सामुद्रिक सामर्थ्यस्य स्वदेशी रक्षा क्षमतायाश्च सुदृढीकरण दिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानमस्ति। पश्चिम बंगाल प्रशासनेन राज्याय UCC इति समान नागरिक संहितायाः प्रारूप विधेयकस्य परीक्षार्थं नव सदस्यात्मिका समितिः निर्मिता। अस्मिन् विषये अधिसूचना पूर्वमेव प्रकाशिता अस्ति। सेवानिवृत्त न्यायमूर्तिः रंजना प्रकाश देसाई समितेः अध्यक्षत्वेन नियुक्ता। मेघालयस्य पूर्व राज्यपालः तथागत रॉयः अपि समितेः सदस्येषु अन्यतमः अस्ति। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरणेन खाद्य सुरक्षा मानकाधिनियमस्य 2006 इत्यस्य उल्लंघन सम्बद्धानां बहूनां उपभोक्तृ परिवादानां अनन्तरं स्विगी इंस्टामार्ट इत्यस्मै नव अधिसूचनाः प्रेषिताः। फीफा विश्वचषक प्रतिस्पर्धायाम् अद्य प्रातः फ्लोरिडा इत्यत्र मियामी क्रीडा प्रांगणे इंग्लैंड देशेन नॉर्वे देशं 2-1 इत्यंकान्तरालेन पराजित्य उपान्त्यचक्रे प्रविष्टम्। वियतनाम देशस्य प्रधानमन्त्री ले मिन हुन इत्येषः फूक्वक द्वीपस्य समीपे जाता स्पीड बोट इत्येतस्याः

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक व्यापक अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधरोपण महायज्ञ का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। उधर गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधरोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किश्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 239 करोड़ रुपए की 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों की निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकोक द्वीप के पास रट नगोआई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका के कंसास में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अर्जेंटीना मुकाबले में 1-0 से आगे है। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उधर लंदन में कल रात विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और एफएम 100.5 मेगा हर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसमें आज आरसीटी क्यों जरूरी विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सिबातुल्ला। इनसे बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
1: दोस्तों, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आए दिन हमें दांतों में समस्याएं देखने को मिल जाती है क्योंकि हमारा खान पान बिगड़ गया है। हम बाहर की चीज़ों को अधिक प्रेफर करते हैं, चटपटी चीज़ें खाते हैं, मसालेदार चीज़ों का सेवन करते हैं और ऐसे में दांतों में समस्या उत्पन्न हो जाती है। दांतों में दर्द हो जाता है, दांत हिलने लगती है और फिर हम दंत चिकित्सक के संपर्क में चले जाते हैं। तो सावधानियां हम किस प्रकार रखें? यदि दांतों में जरा सा भी हमें दर्द का एहसास होता है तो हमें सावधान होने की आवश्यकता है, तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें और चिकित्सक प्रायः हमें आरसीटी का सलाह देते हैं। तो ये आरसीटी क्या है, कब किया जाता है, क्यों किया जाता है और कितना लगभग खर्च आ जाता है, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिबगतुल्ला साहब। ये जो बीमारियां होती हैं दांतों में दर्द, लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, फिर बीमारियां बढ़ती चली जाती है और चिकित्सक के पास पहुंचते हैं तो फिर आरसीटी की सलाह दी जाती है। तो किस प्रकार हम सावधान रहें कि हमारे दांत बची रहे, स्वस्थ रहे?
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहले हर पेशेंट को, हर व्यक्ति को एक प्रोफिलैक्सिस विजिट करना है डेंटिस्ट के पास, जो नियरेस्ट डेंटिस्ट हो, जिसको आप जानते हो, जो अच्छे हो इस फील्ड में, आप उनसे एक बार प्रोफिलैक्सिस विजिट मिनिमम 6 मंथ मैक्सिमम 1 ईयर में करते रहना है। इससे आपके दांतों में दर्द नहीं होंगे। अगर किसी तरह की बीमारी उसमें दिखा, कैविटी दिखा, डीके दिखा, दांतों की सड़न दिखा, तो पहले ही स्टेज में उस दांत को बचाया जा सकता है, आरसीटी की नौबत नहीं आएगी। अगर आप अनदेखा करेंगे, डॉक्टर आपको सलाह दिए कि इसमें भरना पड़ेगा, फिलिंग करना पड़ेगा, अगर आप फिलिंग करा लेते हैं तो आगे चलकर आपको दांतों में दर्द नहीं होगी। अगर आप डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे तब, प्रोफिलैक्सिस विजिट करते रहेंगे तब, अगर आप नहीं किए तो दांतों में दर्द हुआ, दांत में दर्द होने के बाद डॉक्टर दो सलाह दे सकते हैं, या तो फिर दांत को निकाला जा सकता है या फिर दांतों को बचाया जा सकता है। जैसे दांत जो बचाने की विधि है उसको आरसीटी बोलते हैं, रूट केनाल ट्रीटमेंट, वो जड़ का ट्रीटमेंट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं दांतों के अंदर 3 लेयर होते हैं, जो ऊपर के लेयर एक दिखता है, फिर एक मिडिल लेयर है, एक फिर इनर लेयर है। तो ऊपर का जो लेयर है वो इनामिल होता है, जो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बॉडी के अंदर जो हड्डी होता है वो मजबूत होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हार्डेस्ट इनामिल होता है। फिर उसके बाद की जो लेयर होता है वो डेंटिन होता है, डेंटिन थोड़ा कमज़ोर होता है और सेंसिटिव होता है। अगर दांत में कैविटी शुरू होंगे तो सबसे पहले हो सकता है पेशेंट को, लोग को पता चले कि दांत में सिलसिलाहट है। अगर ऐसा होता है तो भी डॉक्टर से इमीडिएट मिलना है, डॉक्टर अगर फिलिंग कर देंगे, फिलिंग के लायक होगा, भरने के लायक होगा तो दांतों में दर्द नहीं होंगे। अगर आप नहीं मिलते हैं, यहाँ भी नज़रअंदाज करते हैं, तो वो तीसरा जो लेयर है पल्प है। अगर पल्प तक कैविटी पहुँच गया, आप जो भी खा पी रहे हैं वो पल्प तक पहुँच रहा है, तो जिससे दर्द भी और सेंसिटिव भी होंगे। दर्द होने की वजह क्या है कि वो जो आप बाहर से जो पदार्थ खा रहे हैं, मुंह के थ्रू खा रहे हैं, तो वो पल्प पे टच कर रहा है, टच करते करते रूट जो जड़ होते हैं दांतों के, वो धीरे धीरे इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसको वो रूट का जो इन्फेक्शन निकाला जाता है, पल्प निकाला जाता है, फिर जो रूट के अंदर जो केनाल होता है उसको शेप दे करके, आरसीटी करके, उसमें ऑब्चुरेट करके फिल किया जाता है। इसी प्रोसेस को आरसीटी बोलते हैं, रूट केनाल ट्रीटमेंट। लेकिन इससे बचा जा सकता है अगर आप प्रोफिलैक्सिस विजिट करते रहेंगे तब। ये होता क्यों है, दांतों की सड़न क्यों होती है, लोग ब्रश नहीं करते प्रॉपर ढंग से, जैसे ब्रश करना चाहिए ब्रश नहीं करते हैं, और खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं, जो भी खाना खाए वो दांतों के

0: बीचों में फंसे रह गए, दांत को बीच से निकला नहीं, तो वो धीरे धीरे कैविटी बनना शुरू हो जाते हैं। तो आप रेगुलर विजिट करें, 2 बार दांतों के ब्रश करें, अच्छे से देखभाल करें, तो दांतों के दर्द से बचा जा सकता है।
1: प्रारंभिक लक्षण है कि दांतों में दर्द, ये दर्द जैसे ही शुरू होता है आप उसे नजरअंदाज नहीं करें। और जैसा आपने बताया आरसीटी, तो आरसीटी कितना जरूरी हो जाता है करना, और डॉक्टर साहब इसमें खर्च भी है अलग अलग तरीके से लगता है।
0: बेशक इसमें खर्च ज़्यादा है, लेकिन अगर आप प्रोफिलैक्सिस विजिट करते रहेंगे, जैसे ही आपके दांतों में कैविटी हुआ, डॉक्टर को आपको सलाह दिया कि आपको भरना है, तो अगर आप उस वक्त भरा देते हैं तो आपको आरसीटी की नौबत नहीं आएगी। जगह अगर आप दांत भरते हैं तो बहुत से डेंटिस्ट है, पैसे 1,000 के कम में हो जाएंगे, 500, 600, 300 रुपये में हो जाएंगे दांत भरने का। अगर इसी को नज़रअंदाज करते जाएंगे तो स्टेप बढ़ता चला जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बुखार अगर हुआ ठीक हो, नहीं हो रहा है मेडिसिन लिए, अगर ठीक होगा ठीक है, नहीं हुआ तो धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट बढ़ता चला जाता है, जैसे कि ये जांच करना वो जांच करना। इसी तरह इसमें भी है, अगर शुरुआती दौर की कैविटी है तो कम खर्च में हो जाएंगे, जब आरसीटी करना हो तो उसमें खर्च थोड़ा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आरसीटी करने के बाद उसमें फिलिंग किया जाता है, फिलिंग करने के बाद उसके ऊपर से क्राउन डाला जाता है जो कि उसको बचाया जाए। अगर आप क्राउन नहीं डालेंगे, क्योंकि आरसीटी में होता क्या है, ब्लड सप्लाई काट दिया जाता है, जो ब्लड सप्लाई दांतों का वो काट दिया गया। अगर ब्लड सप्लाई कट गया तो वो दांत ब्रिटल हो गया, ब्रिटल का मतलब कि वो कमजोर हो गया, जैसा कि कुछ मारेंगे तो टूट जाएगा। अगर वो टूट गया, कुछ हार्ड चीज खाए, फ्रैक्चर हो गया, तो जो मैंने आरसीटी किया या जो आपने आरसीटी करवाया और कैप नहीं डलाया, तो दांत टूट गया, तो फिर वो दांत को निकालना पड़ेगा। आरसीटी करने के बाद कैप लगाना, इसमें खर्च ज़्यादा है। तो मैं तो अपने श्रोताओं को यही संदेश दूंगा कि ये नौबत ना आए, आप हमेशा, आपको कोई तकलीफ हो ना हो, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 1 ईयर में आप नियरेस्ट डेंटिस्ट से मिले, परामर्श ले, आपके मुंह में किसी तरह चेंजेस तो नहीं है, किसी तरह कैविटी तो नहीं हो रही है, तो इससे आपको बेनिफिट होंगे और खर्च भी कम होंगे।
1: डॉक्टर साहब, ये जो कैप लगता है आरसीटी के बाद, इसकी लाइफ कितनी होती है, और कैप लगने के बाद कौन कौन सी सावधानियां रखने की आवश्यकता है? क्या हम हर चीज खा सकते हैं, चना खा सकते हैं, सभी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं?
0: जैसे कैप इसमें अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं मेटल का होता है जिसको फुल मेटल बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील होता है फुल मेटल बोलते हैं, एक होता है PFM पोर्सलिन फ्यूज्ड मेटल, अंदर में मेटल होता है, बाहर में तूत कलर मटेरियल होता है जिसको सिरामिक बोलते हैं, एक होता है कंप्लीट सिरामिक, जिरकोनिया जिसको बोलते हैं फुल सिरामिक। तो सबसे बेस्ट तो जिरकोनिया होता है, क्योंकि आज सभी लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। अगर मेटल का प्रोडक्ट, मेटल का धातु बॉडी के अंदर हो तो MRI नहीं किया जाता है। तो कोशिश करना है, अगर आपके पास पैसे हैं तो जिरकोनिया सबसे बेस्ट है। जहाँ तक कि रहे कि ये लगाने के बाद क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं, आप मेटल का लगाएं या फिर PFM लगाएं या जिरकोनिया लगाएं, आपको खाने में किसी से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ भी नुकसान नहीं है। बस सिर्फ अवॉइड करना है स्टिकी फूड, स्टिकी फूड जैसे कि च्युइंगम नहीं खाना है, या फिर तो डेट्स वगैरह, खजूर वगैरह खा रहे हैं जो स्टिकी फूड है, वो नहीं करना है। क्योंकि अगर जो हम लोग दांतों में आरसीटी की उसके ऊपर कैप लगाए, वो सीमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है, जब वो फिक्स होगा तो वो एयर वैक्यूम उसमें नहीं होता है। अगर थोड़ा सा आप स्टिकी चीज़ खाएंगे तो वो अपनी तरफ खींचेगा, तो हो सकता है वो कैप निकल जाएगा। अगर कैप निकल भी गया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो कैप फिर से लगाया जा सकता है, आप डॉक्टर से मिलें और उसको लगा लें।
1: कितना खर्च है इस कैप में?
0: जिरकोनिया इसमें खर्च ज़्यादा है, यानी स्टार्टिंग इसका अराउंड 4,000 से शुरू है। इसमें अलग अलग कंपनी के, अलग अलग लैब का है, 5 ईयर्स का वारंटी है, 10 ईयर्स का है, 15 ईयर्स का है, एक लाइफ टाइम तक का है, तो सबका अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उसमें खर्च आते हैं।
1: तो चलिए, आज बड़ी अच्छी बातचीत हुई दांतों के बारे में कि आरसीटी करवाने की आपको नौबत ही ना पड़े, यदि आप सजग होते हैं, जागरूक होते हैं और डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं, और जैसे ही आपको दांतों में थोड़ी सी भी सनसनाहट या दर्द महसूस होता है तो आप डॉक्टर के संपर्क में रहिए, दांत निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आरसीटी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेवजह पैसे आपके खर्च नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और दोस्तों फिर एक मुलाकात करेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।
2: आरसीटी क्यों जरूरी, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सिबगतुल्ला, इनसे बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल। ये प्रसारण आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

नया दिन नया सवेरा, महज एक शुरुआत ही मिटाएगी सारा अंधेरा। तेरी कोशिश तेरा हौसला ही काम आएगा, ये वक्त ही है फिर पलट जाएगा। सुबह सुरीली कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गीतों के सफर में आपका हम सफर है, आपका रेडियो दोस्त मनीष। इस कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए फिल्म कभी आर कभी पार से, शमशाद बेगम की आवाज, रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, जिसे संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मेरा गांव मेरा देश से। लता मंगेशकर की आवाज, रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

उमा देवी की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म दर्द से। शकील बदायूनी की रचना थी, संगीत नौशाद का। अगला गीत आपके लिए किशोर कुमार, मन्ना डे और महमूद की आवाजों में फिल्म पड़ोसन से। राजेंद्र कृष्ण ने इसके बोल लिखे, संगीत से सजाया आर डी वर्मन ने।

की अब के जो आवाज लगाई चोटी कर दूंगा सज्जम सकजम सकनम सकदम सत्संगति दक्षिण सत्सज्जम सकजम सकनम सकदम सत्संगति दक्षिण सत्सज्जति सदन सज्जन सदन सज्जनी सदनी सज्जनु सत्स सरित जनता जनता

0: चतुरा घोड़ा, ये क्या रहा घोड़ा चतुरा, घोड़ा चतुरा एक पे रहना, या घोड़ा बोला या चतुरा बोला गा।
1: एक चतुर नार करके सिंगार,
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार,
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात,
2: अपने ही जाल में फंसत जात,
1: हम मरत जात, अरे
2: चतुर नार बड़ी होशियार,
1: करके सिंगार
2: अपने ही जाल,
1: मेरे मन के द्वार
2: फंसत जात,
1: घुसत जात,
2: हम हंसत जात,
1: मरत जात,
2: मरत जात,
1: मरत जात।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आशा भोसले, बप्पी लहरी, किशोर कुमार और एस जानकी की आवाजों में अगला गीत सुनिए। बोल अनजान के हैं, संगीत बप्पी लहरी का।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम खुला आकाश। इसके अंतर्गत शांति में प्रवेश, यूएन पीस कीपिंग में हमारा ऐतिहासिक योगदान विषय पर जानकारी दे रहे हैं संतोष कुमार।
1: वैश्विक शांति, सुरक्षा और निस्वार्थ मानवीय सेवा के आधुनिक इतिहास में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में भारत का योगदान सबसे गौरवशाली, व्यापक और अटूट अध्याय रहा है। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र के सबसे पहले शांति स्थापना मिशन के शुरुआत से लेकर आज तक भारत इस बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है। भारत के लिए वैश्विक शांति में यह निवेश केवल एक भू राजनीतिक या सैन्य दायित्व नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता, मानवाधिकारों की रक्षा और वसुधैव कुटुम्बकम के दार्शनिक विचार के प्रति देश की ऐतिहासिक और नैतिक नीतिगत प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के साथ भारत का संबंध उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं इन मिशनों और संयुक्त राष्ट्र का इतिहास। जब वैश्विक समुदाय द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से उभरकर एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण कर रहा था, तब भारत ने अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर शांति स्थापना का बीड़ा उठाया। भारत का सबसे पहला और ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण योगदान कोरियाई प्रायद्वीप में देखा गया। भीषण युद्ध की परिस्थितियों के बीच भारत ने अपनी सुप्रसिद्ध 60वीं पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस इकाई को मैदानी मोर्चे पर तैनात किया। इस अद्वितीय चिकित्सा दल में 17 सैन्य अधिकारी और 309 अन्य रैंकों के जाबाज चिकित्सा कर्मी शामिल थे। इस दल ने युद्ध के मैदान में बिना किसी भेदभाव के मित्र राष्ट्रों के सैनिकों, स्थानीय नागरिकों और यहाँ तक कि युद्ध बंदियों का भी इलाज किया। इस निस्वार्थ सेवा ने भारतीय सेना की निष्पक्षता और मानवीय दृष्टिकोण को पहली बार वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। इसके अतिरिक्त कोरियाई युद्ध के समापन पर युद्ध बंदियों की अदला बदली की अत्यंत जटिल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रक्रिया को संभालने के लिए गठित तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता भी भारत को सौंपी गई थी, जिसका कुशल नेतृत्व जनरल केस थिमैया ने किया था। स्वेज नहर संकट के बाद मिस्र और इजराइल के बीच शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अपने पहले बड़े सैन्य बल का गठन किया। इस मिशन में भारतीय सेना की 11 पैदल सेना बटालियनों ने अपनी सेवाएं दी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मिस्र के क्षेत्र से विदेशी सेनाओं की वापसी की बारीकी से निगरानी करना और गाजा पट्टी तथा सिनाई प्रायद्वीप में बफर जोन बनाकर शांति बनाए रखना था। इस मिशन ने साबित किया कि भारतीय सैनिक जटिल राष्ट्रीय विवादों में पूरी तरह निष्पक्ष रहकर संयुक्त राष्ट्र के जनादेश का पालन करवा सकते हैं। कंबोडिया, लाओस और वियतनाम के क्षेत्र में भी शांति की निगरानी के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग में भारत ने एक महत्वपूर्ण और सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य किया, जिसने दक्षिण पूर्व एशिया में युद्ध की विभीषिका को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई। वर्ष 1948 से लेकर समकालीन समय तक भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में संचालित किए गए 71 ऐतिहासिक शांति मिशनों में से 50 से अधिक मिशनों में सीधे भाग लिया है। इस पूरी अवधि के दौरान भारत ने 2,90,000 से अधिक सैन्य कर्मियों और लगभग 15,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र के नीले हेलमेट के तहत युद्ध क्षेत्रों में भेजा, जो कि किसी भी देश द्वारा दिया गया सबसे बड़ा संख्यात्मक योगदान है। वैश्विक स्तर पर शांति मिशनों के बदलते परिदृश्य के बावजूद भारत संयुक्त राष्ट्र को सबसे अधिक सैन्य और पुलिस बल प्रदान करने वाले शीर्ष देशों में लगातार बना हुआ है। वर्तमान समय में लगभग 5,300 से अधिक भारतीय शांति रक्षक दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों में चल रहे सक्रिय और संवेदनशील मिशनों में अग्रिम मोर्चा पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में इस मिशन में भारत के 2,416 से अधिक सैन्य और पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो गृह युद्ध जैसी कठिन परिस्थितियों के बीच वहां की नागरिक आबादी को सुरक्षा और मानवीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। बेल्जियम के शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के तत्काल बाद कांगो भीषण गृह युद्ध और कटंगा प्रांत के अलगाववादी उग्रवाद की आग में झुलस गया था। संयुक्त राष्ट्र ने स्थिति को संभालने के लिए वहां अपना सैन्य बल भेजा, जो संयुक्त राष्ट्र के इतिहास का पहला शांति प्रवर्तन अभियान था। इस अत्यंत खतरनाक मिशन में भारत ने लगभग 12,000 सैनिकों की 2 पूर्ण ब्रिगेड भेजी। भारतीय सैनिकों को केवल आत्मरक्षा में ही नहीं, बल्कि शांति के जनादेश की रक्षा करने और सशस्त्र भाड़े के सैनिकों से निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए बल प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी। इस अभियान में भारतीय वायुसेना के कुछ लड़ाकू विमानों ने भी भाग लिया था, जो यूएन के इतिहास में एक दुर्लभ और ऐतिहासिक घटना थी। भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाते हुए विद्रोहियों के ठिकाने को ध्वस्त किया और कांगो देश के भौगोलिक विघटन को सफलतापूर्वक रोका। सोमालिया में भीषण अकाल, अराजकता और कबीलाई सरदारों के आपसी युद्धों के बीच भारतीय ब्रिगेड को तैनात किया गया था। भारतीय सेना ने वहां न केवल सुरक्षा घेरा तैयार किया, बल्कि मानवीय सहायता के तहत हजारों टन खाद्य सामग्री का सुरक्षित वितरण सुनिश्चित किया, कुओं का निर्माण कराया और स्कूलों को दोबारा शुरू किया। भारतीय डॉक्टरों ने वहाँ हजारों स्थानीय नागरिकों और लाखों मवेशियों का मुफ्त इलाज किया, जिससे भारतीय सेना को स्थानीय आबादी का अभूतपूर्व समर्थन मिला। वैश्विक स्तर पर शांति स्थापना के अभियानों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और सुरक्षा अभियानों में लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल करने में भारत दुनिया का सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक रहा है। शांति वार्ताओं और संघर्ष के बाद समाज में महिलाओं की उपस्थिति, स्थानीय आबादी, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों में सुरक्षा और विश्वास की भावनाओं को कई गुना बढ़ा देती है। वर्ष 2007 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में एक महान मिसाइल कायम की, जब उसने लाइबेरिया में दुनिया की पहली पूर्ण महिला पुलिस इकाई को तैनात किया। 105 भारतीय महिला पुलिस अधिकारियों की इस टुकड़ी ने लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया में रात के समय सशस्त्र गश्त, दंगों पर नियंत्रण और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। इस तैनाती का सबसे बड़ा और स्थायी प्रभाव यह हुआ कि लाइबेरिया के स्थानीय महिलाओं में सुरक्षा बलों में शामिल होने का आत्मविश्वास जगा, जिससे वहां की राष्ट्रीय पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 6% से बढ़कर अल्प समय में ही 12% से अधिक हो गई। भारतीय महिला सैन्य अधिकारियों की व्यावसायिकता को संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगातार सर्वोच्च सम्मान दिया जाता रहा है। मेजर राधिका सेन और हाल ही में मेजर अभिलाषा बराक उनको उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत लैंगिक कूटनीति के क्षेत्र में पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। वर्तमान में विभिन्न सक्रिय यूएन मिशनों में 150 से अधिक भारतीय महिला अधिकारी और सैन्य अग्रिम मोर्चों पर सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। भारतीय शांति रक्षकों की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि वे केवल एक बंदूकधारी सैनिक के रूप में कार्य नहीं करते, बल्कि वे संकटग्रस्त देशों में सद्भावना के दूत बनकर जाते हैं। भारतीय सेना के पेशेवर चरित्र में मानवीय संवेदना गहराई से रची बसी है, जिसे सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन गतिविधियों के माध्यम से धरातल पर उतारा जाता है। भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स ने युद्ध से तबाह हुए देशों में हजारों किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया, पुलों की मरम्मत की, हवाई पट्टियों को सुधारा है और स्कूलों तथा सामुदायिक केंद्रों का जीर्णोद्धार किया है। दक्षिण सूडान में भारतीय इंजीनियरों द्वारा बनाई गई सड़कें आज वहां की अर्थव्यवस्था और मानवीय सहायता के परिवहन की जीवन रेखा बन चुकी है। नई दिल्ली में स्थित सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग वर्ष 2000 से ही भारतीय और विदेशी सैनिकों को मिशन विशिष्ट कड़ा प्रशिक्षण दे रहा है। यह केंद्र अब तक 10,000 से अधिक भारतीय और दुनिया के 98 से अधिक देशों के 2,000 से अधिक विदेशी अधिकारियों को शांति स्थापना के सिद्धांतों, आधुनिक तकनीकों और मानवाधिकारों की रक्षा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दे चुका है, जो इसे वैश्विक शांति प्रशिक्षण का एक प्रमुख केंद्र बनाता है। वैश्विक शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थापना के इस महान मानवीय उद्देश्य के लिए भारत ने जो मानवीय कीमत चुकाई वह किसी भी अन्य देश की तुलना में सर्वाधिक है। संयुक्त राष्ट्र के नीले झंडे के नीचे कर्तव्य निभाते हुए 178 से अधिक भारतीय वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की सबसे गौरवशाली और अमर प्रतीक कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया हैं। वर्ष 1961 में गोरखा राइफल्स के इस युवा अधिकारी ने केवल 16 सैनिकों की अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ मिलकर भारी अत्याधुनिक हथियारों से लैस सैकड़ों उग्रवादी विरोधियों के अचानक हुए हमले को नाकाम कर दिया था। अदम्य साहस और अद्वितीय युद्ध कौशल दिखाते उन्होंने आमने सामने की लड़ाई लड़ी और विद्रोहियों को पीछे हटने

0: जनरलों और रणनीतिकारों को उनके व्यावसायिकता के कारण संयुक्त राष्ट्र के सबसे कठिन और राजनीतिक रूप से संवेदनशील अभियानों में फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत की कूटनीतिक विशेषज्ञता और विश्वसनीयता के कारण ही देश को संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग के लिए बार बार चुना जाता है, जो इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि संघर्षों को सुलझाने और युद्ध के बाद देशों को सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण में भारत के नीतिगत दृष्टिकोण को वैश्विक मंच पर सर्वोच्च प्राथमिकता और महत्व दिया जाता है। 21वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और यह पहले से कहीं अधिक खतरनाक और जटिल हो चुका है। आज के समय में शांति रक्षकों का सामना पारंपरिक सेनाओं से नहीं बल्कि अत्याधुनिक हथियारों आईईडी और साइबर उपकरणों से लैस अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों, उग्रवादी गुटों और सोशल मीडिया पर चलने वाले दुष्प्रचार अभियानों से होता है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के संपूर्ण इतिहास का व्यापक अवलोकन करने पर यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की भूमिका एक साधारण भागीदार देश से कहीं बढ़कर वैश्विक शांति के मुख्य संरक्षक की रही है। कोरिया की बर्फीली वादियों से लेकर कांगो के घने और अशांत जंगलों तक, सोमालिया के मरुस्थलों से लेकर लेबनान की अत्यधिक संवेदनशील पहाड़ियों तक भारतीय सैनिकों ने अपनी अनुकरणीय व्यावसायिकता, अनुशासन, पूर्ण निष्पक्षता और मानवीय संवेदना से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का मस्तक हमेशा ऊंचा किया है। यह ऐतिहासिक योगदान और निरंतर भागीदारी केवल सेना की टुकड़ियों को भेजने का कार्य नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थिरता, मानवाधिकारों की रक्षा और एक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था के निर्माण के प्रति भारत का एक दीर्घकालिक निरंतर और ठोस निवेश है। जब तक दुनिया के किसी भी कोने में शांति, स्थिरता और सुरक्षा की आवश्यकता रहेगी, नीले हेलमेट पहने भारतीय सैनिक मानवता की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए अग्रिम पंक्ति में खड़े रहेंगे और शांति के मिसाल को प्रज्वलित रखेंगे।
1: शांति में निवेश, यूएन पीस कीपिंग में हमारा ऐतिहासिक योगदान। खुला आकाश कार्यक्रम में अभी आप इस विषय पर वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे संतोष कुमार। ये प्रसारण आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज के लिए थोड़ी ही देर में आपको ले चलेंगे हमारे दिल्ली केंद्र।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड

0: की तीन देशों की यात्रा संपन्न न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक

0: पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के

0: अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमरीका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमरीका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमरीका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
0: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने आईएनएस महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ एआई से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा सम्पन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया।

0: जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Magu. The headlines. Prime Minister Narendra Modi concludes his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beats Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals. And Linda Noskova beats Carolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. Prime Minister Narendra Modi has concluded his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand and departed for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. India and New Zealand elevated their bilateral ties to a strategic partnership and signed several agreements and memoranda of understanding across key sectors. These include defense, tourism, sports, disaster management, and dairy and animal husbandry sectors. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations.
2: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
1: Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said Prime Minister Modi's three-country visit delivered significant outcomes, advancing cooperation across several sectors, including trade, technology, security, education, innovation, and people-to-people exchanges, among others. Vietnamese Prime Minister Le Minh Hun has ordered a probe into the speedboat tragedy near Phu Quoc Island that claimed the lives of 15 Indian tourists. According to a statement issued by Consulate General of Vietnam in Mumbai, Prime Minister Hun has asked authorities to identify shortcomings, determine causes of the accident, and

प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। रेल मंत्रालय ने गढ़वा से छत्तीसगढ़ के बलरामपुर तक 9000 करोड़ की लागत से रेलवे लाइन परियोजना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सभी विभागों के रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू। वित्त मंत्री ने कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर होंगी नियुक्तियां। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मनरेगा के अंतर्गत 10 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को पद सृजित कर नियमित करने का दिया निर्देश। मौसम विभाग ने राज्य में 14 और 15 जुलाई को भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट, बारिश की कमी पूरी होने की उम्मीद। और रांची के सरला बिरला स्कूल में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 9 ओपन गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 में नन्हे प्रतिभागी कर रहे शानदार खेल का प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्रालय ने झारखंड के गढ़वा जिले से छत्तीसगढ़ के बलरामपुर तक 261 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन बिछाने को मंजूरी दे दी है।

0: इस परियोजना से झारखंड और छत्तीसगढ़ रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। पलामू सांसद बीडी राम ने कहा कि स्थानीय लोगों के कुछ मांगे हैं जिसे रेलवे मंत्री के समक्ष रखा जाएगा।
1: प्रतिनिधिमंडल का कहना यह था कि बड़गढ़ बंदरिया होकर के रेल लाइन को गुजरना चाहिए। संबंध में मैंने उन्हें बताया कि जो पुराने रेल लाइन का अलाइनमेंट था उसमें गाड़ी का स्पीड 89 किलोमीटर ही रहेगा, जबकि ये रेल लाइन जो बन रही है उस पर गाड़ी की स्पीड 130 किलोमीटर होगा। पुराने अलाइनमेंट पर रेल निकलना संभव नहीं है, इसलिए नया अलाइनमेंट स्पीड के दृष्टिकोण से दिया गया है।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सभी विभागों के खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 3,51,000 से अधिक नियमित पद स्वीकृत हैं। इनमें से केवल 1,87,610 पदों पर ही कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य सरकार विभागों की रिक्तियां को भरने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।
2: हेमंत सोरेन जी की ही सरकार है जहां रिक्तियों को भरने की दिशा में बहुत तेज गति से कार्रवाई की जा रही है, और मैं अनुमान करता हूं कि इनके कार्यकाल में लगभग 40,000 से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां की गई हैं, इससे अधिक भी हो सकती है। सरकार की इच्छा है कि ये जो 5 वर्षों का कालखंड है यानी कि 2029 तक अधिक से अधिक राज्य के युवाओं को जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं उन्हें अवसर दिया जाए ताकि वो सरकारी पदों पर नियुक्त किए जा सके।
0: झारखंड हाईकोर्ट ने मनरेगा में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों के हित में अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए स्वीकृत पद सृजित कर उन्हें उन पदों पर समायोजित करें। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने कहा कि 10 वर्षों से अधिक समय तक सेवा दे चुके कर्मियों को आउटसोर्सिंग में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन 30 जुलाई तक पूरा करना अनिवार्य कर दिया है। गठित समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। नई समिति में अभिभावकों की प्रमुख भूमिका होगी। समिति में 50% महिला सदस्यों की भागीदारी अनिवार्य होगी। राज्य सरकार ने कहा है कि इससे विद्यालयों के संचालन, निगरानी और सामुदायिक सहभागिता को और अधिक मजबूत बनाने का लक्ष्य है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा से संबंधित जिलों के लिए जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI-D 2025-26 में चतरा जिले ने अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए विशेष प्रयास श्रेणी 2 में 256वां रैंक प्राप्त किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की यह वरीयता सूची बच्चों में सीखने का अवसर, शिक्षा की पहुंच, आधारभूत सुविधा और संरचनाएं, समानता एवं प्रशासनिक दक्षता, शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण जैसे विषयों का आकलन का तैयार किया जाता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 14 जुलाई को BLO BLA 2 की संयुक्त बैठक और चुनाव पाठशाला आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान अनमैप्ड मतदाताओं पर भी चर्चा होगी तथा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सभी पात्र नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड की BLO जमीला बीबी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उन पर SIR फॉर्म भरने के दौरान पैसे मांगने का आरोप था। जिले के उपायुक्त PN मिश्रा ने बताया कि BLO जमीला बीबी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने पैसे न देने पर नागरिकता रद्द करने की धमकी दी थी।
3: बीएलओ उन्होंने कुछ लोगों से पैसा मांगा है और पैसा लिया भी। उक्त के आलोक में मैंने तत्काल प्रभाव से उस बीएलओ को वहां से जो इनोग्रेशन फॉर्म और एसआईआर की प्रक्रिया होनी थी उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है उन्हें, और साथ ही जो मूल उनका काम था आंगनवाड़ी सेविका के रूप में वहाँ से भी चयन मुक्त करने का निर्देश मैंने डीडीसी को दे दिया है।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार लोगों को सोलर आधारित बिजली पैनल लगाने पर विभिन्न श्रेणियों में अनुदान दे रही है। साहिबगंज के विद्युत कार्यपालक अभियंता शंभू चौधरी ने बताया कि जिनके घर में बिजली की खपत ज्यादा है उनके लिए यह योजना लाभदायक है और इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों के ऊपर सोलर सिस्टम लगाते हैं और सोलर लगाने के बाद उनका कंजम्पशन 200 यूनिट से कम जाता है, तब तो 100% उनका बिल फ्री हो जाएगा। 100% फ्री नहीं भी होता है तो जितना यूनिट वो सोलर से जनरेट करेंगे वो एक तरह से मुफ्त होगा।
0: झारखंड में अगले सप्ताह मॉनसून के और अधिक सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 14 और 15 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में बारी बारी

0: सरला बिरला पब्लिक स्कूल रांची में आयोजित 39वीं राष्ट्रीय अंडर 9 ओपन एवं गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 के 9वें राउंड के ओपन मुकाबले में व्यांश ने अमांश को, सिद्धार्थ ने रियांश को, रयान ने तक्षांत को और निखिल ने जिनसन को हराया, जबकि जोहान और तमीज के बीच का मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। दूसरी ओर गर्ल्स मुकाबलों में नंदी प्रीतिका ने अर्पिता को, अंशिता ने अर्शिता को और पुनीता ने पविष्णा को पराजित किया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मनरेगा कर्मियों को नियमित करने के हाईकोर्ट के आदेश को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने वियतनाम में स्पीड बोट पलटने से 15 भारतीयों की मौत की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। प्रभात खबर की सुर्खी है, बहरागोड़ा में करोड़ों का पन्ना जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। हिंदुस्तान ने रांची के चिकित्सक डॉक्टर शशि दिनकर की दुमका के मसानजोर के गेस्ट हाउस में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। और दैनिक जागरण की सुर्खी है, भारत न्यूजीलैंड ने संबंधों को दिया रणनीतिक महत्व का दर्जा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्रालय ने गढ़वा से छत्तीसगढ़ के बलरामपुर तक 9000 करोड़ की लागत की रेलवे लाइन परियोजना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सभी विभागों के रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू। वित्त मंत्री ने कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर होंगी नियुक्तियां। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मनरेगा के अंतर्गत 10 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को पद सृजित कर नियमित करने का दिया निर्देश। मौसम विभाग ने राज्य में 14 और 15 जुलाई को भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट, बारिश की कमी पूरी होने की उम्मीद। और रांची के सरला बिरला स्कूल में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 9 ओपन गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 में नन्हे प्रतिभागी कर रहे शानदार खेल का प्रदर्शन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉव पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें, और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी।

मुझे पहुंचाई, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी रांची से ये प्रसारण आप सुन रहे हैं मनीष के साथ।

0: आइए सुनते हैं समवेत गान शिक्षा। गीतकार हैं पल्ली कवि नंद किशोर बड़।
1: नमस्ते गुरुजी।
2: नमस्ते नमस्ते। अच्छा बच्चों, आज मैं तुम्हें गाना सिखाता हूँ। इस गीत को लिखे हैं पल्ली कवि नंद किशोर बड़। तो फिर अभी गाना लिखो। पहले स्थाई दानिया खोरा पड़ी ची,
1: दानिया खोरा पड़ी ची,
2: बेलो जाऊ ची बुड़ी,
1: बेलो जाऊ ची बुड़ी,
2: की सुंदर पारा जोड़िए,
1: की सुंदर पारा जोड़िए,
2: जाऊ छंती उड़ी,
1: जाऊ छंती उड़ी।
2: अच्छा अभी पहला अंतर लिखो। आसो आसो पारा जोड़ी को,
1: आसो आसो पारा जोड़ी को,
2: मोरो पिंडारे बसो,
1: मोरो पिंडारे बसो,
2: खाई बाकू देवी तुम्हों को,
1: खाई बाकू देवी तुम्हों को,
2: मुही नड़िया रसो,
1: मुही नड़िया रसो।
2: अभी दूसरा अंतर लिखो। पी बाकू देवी तुम्हों को,
1: देवी
2: पद्म पोखरी पानी,
1: पद्म पोखरी पानी,
2: सोई बाकू देवी खटुली,
1: सोई बाकू देवी खटुली,
2: माली घरु मु आनी,
1: माली घरु मु आनी,
2: माली घर खटुली रे जे,
1: माली घर खटुली रे जे,
2: बाउंसर पातिया, माँ झुवं करो गोड़रे,
1: माँ झुवं करो गोड़रे,
2: रतन नर झुंटिया,
1: रतन नर झुंटिया।
2: अभी चौथा अंतरा लिखो। सारी पचारिला सुवारे,
1: सारी पचारिला सुवारे,
2: क्यों दांडरे जीबा,
1: क्यों दांडरे जीबा,
2: सुआ बोले सारी चालोगो,
1: सुआ बोले सारी चालो
2: गो, बड़ो

0: दंडरे जीबा,
1: बड़ो दंडरे जीबा।
0: तो फिर तुम लोगों ने गाना लिख लिया?
1: हाँ बुजी।
0: ठीक है, अभी मैं तुम्हें ये गाना सिखाता हूँ। मैं गाऊंगा पहले, तुम लोग उसे दोहराना, ठीक है?
1: हाँ गुरुजी।
2: तो अभी गाना सुनते हैं, जो कि ये दादरा ताल पर है, जो कि 6 मात्रा मध्य लय में है।

उसके बाद हम तीसरा अंतर चलते हैं। माली घर खटुली रे जे बाउसर पातिया माछुअ कर गोड़ रे रतन रुंटिया।

0: हाँ बच्चों, तुम लोगों ने ये गाना सीख लिया। इस गीत को लिखे थे उड़ीसा के जाने माने कवि पल्ली कवि कौन? हाँ ठीक, तुम लोगों ने गाना सीखा। यहाँ घर में जाओ, अपने साथियों को ये गाना जरूर सिखाना, ठीक है?
1: हाँ गुरु जी।
0: तो फिर चलो।
1: नमस्ते गुरु जी।
0: हाँ
2: अभी आप सुन रहे थे समवेत गान शिक्षा। गीतकार थे पल्ली कवि नंद किशोर बड़। ये प्रसारण आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर।

जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। कार्यक्रम रसरंजन में आपका स्वागत, अभिनंदन। गीतों के सफर में आपका हम सफर है आपका रेडियो दोस्त मनीष। तो गीतों का ये सफर शुरू करते हैं और सुनते हैं जब प्यार किसी से होता है फिल्म से ये गीत। कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत जतिन ललित का।

अगला गीत सुनिए अमित त्रिवेदी की आवाज में फिल्म क्वीन से, जिसे लिखा अनीता दत्त गुप्ता ने और संगीत से सजाया अमित त्रिवेदी ने।

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
0: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
0: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: रेस्टोरेंजल में गीतों का ये सफर जारी है और गीतों के सफर में आपका हम सफर है, आपका रेडियो साथी मनीष। अगला गीत आपके लिए हमने लिया है फिल्म शादी में जरूर आना से, आवाज आशित त्रिपाठी की, जिसे लिखा शकील आजमी खान ने, संगीत राशिद खान का।

0: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1,00,000 बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी,

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं कलाकार अभिराम पाठक से राग देसी में अलाप और धमार गायन। पखावज पे संगत कर रहे हैं रामवचन पाठक, हारमोनियम पर उनका साथ दे रही हैं संचाली नाग।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कलाकार अभिराम पाठक से राग देसी में अलाप और धमाल गायन। पखावज पे संगत कर रहे थे रामवचन पाठक। हारमोनियम पर इनका साथ दे रही थी संचाली नाग। ये प्रसारण आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं बच्चों को संबोधित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं अवधेश और शिल्पी, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की है।

0: बीज धरा में दब जाता है तब सुंदर पौधा बनता है। मेहनत और धैर्य का साथी हो तो हर सपना पूरा होता है।
1: हार नहीं है अंत सफर का, ये तो नई शुरुआत है, गिरकर फिर जो उठ जाए वही सच्ची सौगात है।
0: हाँ बच्चों, जीवन में जीत मिले तो खुशियों के दीप जलाओ, लेकिन यदि हार मिले तो उससे भी सीख जाओ, क्योंकि जीवन एक यात्रा है बच्चों, और इस सफर में बहुत खुशियों की धूप मिलती है तो कभी कठिनाइयां भी मिलती है।
1: हाँ बच्चों, लेकिन हमेशा याद रखिए, वही बच्चे आगे बढ़ते हैं जो मुश्किलों से घबराते नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करते हैं, क्योंकि चुनौतियां आपकी दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वो आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं, वो सच्ची मार्गदर्शक और शिक्षक है।
0: हाँ बच्चों, इसलिए चुनौतियों से डरना नहीं है, बल्कि डरने के बजाय उससे कुछ न कुछ सीखना चाहिए। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और आगे बढ़ने का अवसर भी देती है।
1: बिल्कुल बच्चों, जरूरी नहीं है कि हर बार सफल हो, कभी असफलता मिले तो अपनी गलती से सीखें, दोबारा मेहनत करें और विश्वास रखें कि अगली बार सफलता अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि असफलता अंत नहीं होती।
0: बच्चों सही कहा भैया ने, इसलिए कठिन समय में भी आत्मविश्वास बनाए रखें, हमेशा सकारात्मक सोचें और अपने माता पिता, शिक्षकों, दोस्तों से सलाह लें, नियमित अभ्यास भी करते रहें, देखिएगा खुद पर विश्वास होगा तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी।
1: बच्चों, आप किसी भी महान व्यक्ति की जीवनी पढ़कर देखिए, उनके जीवन में भी कई चुनौतियां आईं, पर उन्होंने उसका सामना किया, बिना डरे डटकर सामना किया, मेहनत की और सत्य की राह अपनाई, फिर उन्हें अपनी मंजिल मिली।
0: जी हाँ बच्चों, दुनिया का लगभग हर सफल व्यक्ति कभी न कभी कठिनाइयों से गुजरा है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार निरंतर प्रयास करते रहे।
1: दीदी ने बिल्कुल सही कहा बच्चों, मुश्किलें हमें रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जो बच्चा गिरकर फिर उठना सीख जाता है, वही जीवन में बड़ी सफलता हासिल करता है। इसलिए हमेशा साहसी बनिए, मेहनत करिए और अपने सपनों पर विश्वास रखिए।
0: बच्चों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का प्रसिद्ध वाक्य हमेशा दोहराइए और उसे याद रखिए कि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
1: तो बच्चों, हमने बात की सपनों की, विश्वास की, आशा की, और आपको पता ही होगा कि 12 जुलाई को हम लोग मनाते हैं विश्व अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, और आशा दिवस मनाने का मतलब ही है कि हम अपने जीवन से आशा को बाहर न करें, निराश न हो और आशा का हाथ थाम कर ही चलें, एक न एक दिन सफलता हमें अवश्य मिलेगी। और कहा भी जाता है बच्चों, आशा से आकाश थमा है।
0: बच्चों आपको पता ही होगा कि 16 जुलाई को रथ यात्रा भी है, इसमें भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की यात्रा निकलती है, जिसे उड़ीसा पूरी में धूमधाम से मनाया जाता है।
1: हाँ बच्चों, आज हम आपको एक ऐसी यात्रा की कहानी सुनाने जा रहे हैं, यानी रथ यात्रा की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें लाखों लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ शामिल होते हैं, और वो है भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा, जिसे हमारे शहर रांची के धुरवा में भी निकाली जाती है।
0: हाँ बच्चों, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने रथ यात्रा देखा है? अरे वाह भैया, इतने सारे बच्चों ने रथ यात्रा देखा है, बहुत अच्छा लगा होगा, है ना, क्योंकि बड़े बड़े रथ और खूब सारी भीड़ भी होती है।
1: बच्चों, भारत के ओडिशा राज्य के पूरी शहर में हर साल एक अद्भुत रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीन विशाल सुंदर रथों में विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। तीनों रथों के अलग अलग नाम होते हैं, नंदी घोष, ताल ध्वज, दर्प दलन।
0: हाँ भैया, और कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाने के लिए यह यात्रा करते हैं। हजारों लाखों श्रद्धालु मिलकर इन विशाल रथों को मोटी रस्सियों से खींचते हैं, और मान्यता है कि रथ खींचना सेवा, प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है।
1: बच्चों, इस रथ यात्रा की सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हर व्यक्ति मिलजुल कर भगवान के रथ को खींचता है, और यही हमें प्रेम, एकता, समानता और भाईचारे का संदेश भी देती है।
0: बच्चों, भगवान जगन्नाथ नाम का अर्थ भी बहुत प्यारा है। पता है क्या है? उनके नाम का अर्थ है पूरे जगत के नाथ, यानी सभी के भगवान।
1: इस यात्रा की सबसे सुंदर बात यह है बच्चों कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं, क्योंकि मंदिर के भीतर जाने का अवसर सभी को नहीं मिलता। इसलिए इस दिन भगवान सभी के दर्शन के लिए स्वयं नगर भ्रमण के लिए बाहर आते हैं।
0: और बच्चों, क्या अमीर गरीब छोटे बड़े सभी मिलकर रथ की रस्सी को खींचते हैं, और यह दृश्य हमें सिखाता है कि भगवान की नजर में सब एक समान है।
1: हाँ बच्चों, तीनों रथ भी बहुत विशेष होते हैं। हर वर्ष नए रथ बनाए जाते हैं। कुशल कारीगर महीनों की मेहनत से इन्हें तैयार करते हैं। रंग बिरंगे कपड़ों, सुंदर नक्काशी और ध्वजों से सजे ये रथ बड़े ही मनमोहक लगते हैं।
0: बच्चों, इन रथों को बनाने में किसी लोहे का किल, कांटे या मशीन का उपयोग नहीं होता, बल्कि पारंपरिक जोड़ यानी कि लकड़ी की खुटियों से बनाया जाता है भगवान का यह रथ।
1: हाँ बच्चों, जब लाखों श्रद्धालु जय जगन्नाथ का जय घोष करते हुए रथ खींचते हैं तो पूरा वातावरण भक्ति और उत्साह से भर जाता है। ये दृश्य हमें एकता, सहयोग और सेवा को समझाता है।
0: बच्चों, हमारे शहर में ध्रुवा स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी खूब धूमधाम से मेला लगता है, जहां झूले, खिलौने, मिठाइयां और स्थानीय लोग बाजार में अपने सामान भी बनाते हैं और उसे सजाते हैं। और अगर मौका मिले तो इस बार रथ यात्रा को देखने आप जरूर जाइएगा और वहां से कुछ खरीदारी भी करिएगा, क्योंकि स्थानीय जो हमारे कलाकार होते हैं बहुत सारे सामान को बनाते हैं और अपनी मेहनत से वहां तक लाते भी हैं।
1: यानी कि वोकल फॉर लोकल को भी हमें आगे बढ़ाना है बच्चों, लेकिन कुछ सावधानियां भी साथ में हमें बरतनी है, क्योंकि रथ यात्रा के दौरान काफी भीड़ होती है। इसलिए अपने माता पिता के साथ जाएं, ज्यादा भीड़ वाले स्थान पर ना जाएं और अपने परिवार के साथ रहें या अपने परिवार के सदस्यों का मोबाइल नंबर अपने पास जरूर रखें।
0: बिल्कुल, और बड़ों के साथ रहें बच्चों। जैसा कि भैया ने कहा, मेले का आनंद लें पर किसी के साथ भेदभाव न करें, दूसरों की भी सहायता करें, साथ ही अपनी संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों का सम्मान करें। अच्छी बातों को जीवन में आत्मसात करना सीखें बच्चों।
1: तो बच्चों, हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें आपसे की और अब वक्त हो चला है आपको बाल गीत सुनवाने का, यानी कुछ मनोरंजन करवाने का। तो चलिए सुनते हैं ये बाल गीत।

0: वाह, गीत सुनकर सभी के चेहरे खिल उठे भैया। और अब बच्चों आपकी बारी है, आज आप सब क्या क्या सुनाएंगे हमें?
1: आज हमारे बच्चे तैयार होकर आए हैं दीदी, और वो तो कुछ न कुछ हमें जरूर सुनाएंगे, तो चलिए सुनते हैं उनके मुख से।
0: तो रेहांशी, आप सबसे पहले क्या सुनाएंगी?
2: मैं आनंद विश्वास द्वारा रचित गई पीछे मुड़कर कभी न देखो कविता सुनाने वाली हूँ।
0: सुनाइए।
2: पीछे मुड़कर कभी न देखो, आगे ही तुम बढ़ते जाना, उज्जवल कल है तुम्हें बनाना, वर्तमान ना व्यर्थ गवाना, संघर्ष आज तुमको करना है, मेहनत में तुमको खपना है, दिन और रात तुम्हारे अपने, कठिन परिश्रम में तपना है, फौलादी आशाएं लेकर तुम लक्ष्य प्राप्त करते जाना, पीछे मुड़कर कभी न देखो, आगे ही तुम बढ़ते जाना, आगे ही तुम बढ़ते जाना, झंझावाती प्रबल पवन हो तुमको कहीं नहीं रुकना है, बाधाएं हो सिर पर हावी फिर भी तुम्हें नहीं झुकना है, मन में दृढ़ विश्वास लिए संकल्प सिद्ध करते जाना, पीछे मुड़कर कभी न देखो, आगे ही तुम बढ़ते जाना, आगे ही तुम बढ़ते जाना, नदियां कब पीछे मुड़ती हैं, कल कल करती आगे बढ़ती, समय चक्र आगे ही बढ़ता, घड़ी कहां कब उल्टी चलती, पल पल बदल रहा है सब कुछ, संग समय के चलते जाना, पीछे मुड़कर कभी न देखो, आगे ही तुम बढ़ते जाना, आगे ही तुम बढ़ते जाना।
1: वाह, बहुत अच्छी कविता, आगे ही तुम बढ़ते जाना। आपका नाम क्या है बेटा?
3: मेरा नाम वंशिका है।
1: वंशिका, आप किस क्लास में पढ़ती हैं?
3: सातवीं कक्षा में।
1: सातवीं में। तो आज अपने दोस्तों को क्या सुनाएंगी?
3: आज मैं आप सभी को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत पराक्रमी और बहादुर है, वो है कर्ण। तो आइए सुनते हैं कहानी कर्ण की।
1: गुड।
3: पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ से, पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ से, तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में, सूरज का अंश होके फिर भी हूँ अछूत में, आर्यवर्त को जीत ले ऐसा हूँ सूतपूत में, कुंती पुत्र हूँ मगर न हूँ उसी को प्रिय मैं, कुंती पुत्र हूँ मगर न हूँ उसी को प्रिय मैं, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूँ क्षत्रिय मैं, आओ मैं बताऊं महाभारत के सारे पात्र ये, आओ मैं बताऊं महाभारत के सारे पात्र ये, भोले की सारी लीला थी, कृष्ण के हाथ सूत्र थे, बलशाली बताया जिसे सारे वो राजपुत्र थे, काबिल दिखाया बस लोगों को ऊंची गोत्र के, सोने को पिघला कर डाला सोन तेरी कंठ में, नीची जाति होके किया वेद का पठन तूने, यही था गुना तेरा, तू सारथी का अंश था, तू क्यों छिपे मेरे पीछे, मैं भी उसी का वंश था, ऊंच नीच किए जर व अहंकारी द्रोण था, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था, रथ पे सजाया कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को, ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जाति का, खुद से ही अनजान मैं ना घर का ना घाट का, इतिहास साक्ष्य है योद्धा में निपुण था, बस एक मजबूरी थी मैं वचनों का शौकीन था, अगर ना दिया होता वो वचन मैंने कुंती माता को, तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथों को, साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला मैं खाम खा बदनाम था, कौरवों से होके भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख बस कर्ण कर्ण ही बोलेगा, जाना जिसने मेरा दुख बस कर्ण कर्ण ही बोलेगा।
1: वाह, बहुत सुंदर कविता, और आपने बहुत ही सुंदर ढंग से उसको प्रस्तुत भी किया है। आपको पता है कर्ण कौन था?
3: हाँ, कर्ण कुंती माता और सूर्य देव का पुत्र था।
1: और कर्ण के और कौन से भाई, कौन कौन भाई थे?
3: कर्ण के भाई थे कौरव, पांडव।
1: और उनके पांच भाई, पांडव पांच भाई थे ना?
3: हाँ।
1: पांच भाई पांडव कौन कौन थे पता है?
3: हाँ।
1: बताइए।
3: अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर।
1: युधिष्ठिर सबसे बड़े थे।
3: हाँ।
1: लेकिन उनसे भी बड़े कौन थे?
4: कर्ण।
1: कर्ण बड़े थे ना।
2: हाँ।
1: तो आपकी कविता बहुत अच्छी थी। और कर्ण की कहानी जो है वो किस महाकाव्य में मिलती है?
3: महाभारत में।
1: महाभारत में। और महाभारत के रचनाकार कौन है? आपको तो पता है। कौन? वेदव्यास।
3: हाँ।
1: वेदव्यास थे। चलिए, तो आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई और बच्चों को ये कविता जरूर पसंद आई होगी। रेहांशी, आप कुछ और सुनाएंगी कविता? चलिए सुनाइए।
3: यह कविता समय के ऊपर है और इसका विषय समय है। समय का सबसे कहना है, जीवन चलते रहना है, इसको मत बर्बाद करो, सदा काम की बात करो। फूल सदा मुस्काते हैं, हमको यह समझाते हैं, जीवन हंसते रहना है, दुख सुख भी सहना है। कर्म ही जिसकी रीत है, सत्य से जिसको प्रीत है, अंत में उसकी जीत है, समय ही उसका मीत है। धन्यवाद।
0: वाह, बहुत सुंदर कविता। और तुम क्या सुनाना चाहोगी?
3: आप सबको मैं एक कविता रथ यात्रा के ऊपर सुनाना चाहूंगी।
0: अपना नाम बताओ।
3: मेरा नाम वंशिका शांडिल्या है।
0: आज किस क्लास में पढ़ती हो?
3: मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ।
0: सुनाओ।
3: रथ यात्रा। रथ यात्रा का आया त्योहार, खुशियाँ लाया है अपार। जगन्नाथ जी का सुंदर रथ चल पड़ा पावन पथ, बलभद्र और सुभद्रा संग, गूंजे भक्ति के मधुर रंग। भक्त खींचे रथ की डोर, गूंजे जय जय चारों ओर। फूलों से सजा हर द्वार, गूंजे भक्ति का सत्कार। प्रेम शांति का दे संदेश, रथ यात्रा मिटाए हर कलेश।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: और चलिए, आपके एक और दोस्त हमारे साथ उपस्थित हैं, तो चलिए सुनते हैं उनकी कविता।
4: नमस्कार, मैं वेदांत राज। शब्दों की दुनिया में आज कुछ ऐसे एहसास लेकर आया हूँ जो सब सुने नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। प्रस्तुत है मेरी लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ। ख्वाब ऊंचे हैं तो उड़ान भी ऊंची रख, राह में मुश्किलें हैं तो मुस्कान भी ऊंची रख। मंजिल खुद कदम चूमेगी एक दिन, बस अपने हौसले की पहचान भी ऊंची रख। हम वो नहीं जो हालातों से हार जाएं, हम वो हैं जो तूफानों में भी राह बनाए। मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, हम हर कदम पर अपने सपनों को सजाएं। दिए की तरह जलना सीखा है मैंने, अंधेरे से लड़ना सीखा है मैंने। लोग कहते हैं मंजिल बहुत दूर है, पर हर रोज थोड़ा थोड़ा चलना सीखा है मैंने। नजरों में मंजिल और दिल में जुनून रख, मुश्किलें लाख आए फिर भी सुकून रख। उड़ना है अगर आसमान की ऊंचाइयों तक, तो अपने हौसले पर यकीन रख। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।
0: बच्चों के मुख से इतने मधुर मधुर बोली में कविताएं सुनकर भैया मन एकदम आनंदित हो गया। क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना भैया, बहुत होशियार हैं और होनहार हैं। मधुर शब्दों, सुंदर भावों और प्यारे संदेशों से हमारे दिल को इन्होंने जीत लिया।
1: बिल्कुल, और हमारे चेहरे पर भी मुस्कान इन्होंने बिखेर दी अपनी कविता सुना करके।
0: हाँ भैया, क्योंकि अच्छी कविता केवल सुनाई नहीं देती बल्कि मन में लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ देती है, और आज की कविता भी कुछ ऐसी ही थी।
1: तो चलिए, बच्चों से कविता भी हमने सुन ली और बच्चों को हमने कुछ जानकारी भी दी है, लेकिन अभी हमारे पास और भी जानकारियां हैं। तो अगली जानकारी हम बच्चों को क्या देने वाले हैं दीदी?
0: बच्चों, हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है। जो बच्चे सपने देखते हैं और उसे पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, वही आगे चलकर दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा दीदी। बच्चों, आपने भी सपने देखे होंगे या देखते होंगे। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, वैज्ञानिक बनना चाहता है, और इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कलाकार भी बनना चाहते होंगे। तो बच्चों, सपने जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो आपके जीवन को दिशा देते हैं और आगे बढ़ने, सीखने और कुछ नया करने की प्रेरणा भी देते हैं।
0: बहुत सुंदर बात कही भैया ने बच्चों, क्योंकि बड़ा सपना देखने वाला ही बड़ी मंजिल तक पहुँचता है। इसलिए सपने देखने से कभी मत डरिए। चाहे आपका सपना बड़ा हो या छोटा, वह आपके जीवन को नई ऊर्जा देता है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने भी कभी न कभी एक सपना जरूर देखा था।
1: हाँ बच्चों, लेकिन केवल सपना ही नहीं देखा, बल्कि उसे पूरा करने के लिए लगातार मेहनत भी की। यदि रास्ते में कठिनाइयां आई तो उससे हार नहीं मानी, वे गिरकर भी उठे और आगे बढ़ते गए। यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है।
0: बच्चों याद रखिए, सपनों की राह में कभी कभी असफलता भी मिलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि सपना खत्म हो गया। असफलता आपको अपनी गलतियों से सीखने और पहले से बेहतर बनने का अवसर देती है।
1: हाँ बच्चों, एक बात और, सपनों को पूरा करने के लिए कुछ अच्छी आदतें भी जरूरी है, जैसे समय पर उठना, मन लगाकर पढ़ना, खेलना, अच्छी किताबें पढ़ना, शिक्षक और माता पिता का सम्मान करना तथा हमेशा सकारात्मक सोच रखना। ये छोटी छोटी आदतें हैं ना बच्चों, जो भविष्य की बड़ी सफलताओं की नींव बनती है।
0: बच्चों अपने सपनों की तुलना किसी और के सपनों से मत कीजिए। सपने सबके अलग अलग होते हैं और सबकी प्रतिभाएं भी अलग अलग होती है। कोई बच्चा चित्रकला में अच्छा होता है तो कोई संगीत में, कोई खेल में तो कोई पढ़ाई में। सबकी बौद्धिक क्षमता भी एक समान नहीं होती, इसलिए अपने अंदर की विशेषता और रुचि को पहचानिए, फिर उसी दिशा में आगे बढ़िए बच्चों।
1: देखा ना बच्चों, बड़े सपने देखेंगे, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेंगे, असफलता से कभी नहीं डरेंगे
0: और सत्य का साथ

0: आसफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को कालका यानी कि जो वर्तमान में हरियाणा है उसमें हुआ था। उनका बचपन का नाम अरुणा गांगुली था। वे बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज साहसी और देशभक्त थीं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक अध्यापिका के रूप में काम भी किया।
1: बच्चों, जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था तब अरुणा जी ने देश को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया और कई बार जेल भी गईं। जेल में उन्होंने कैदियों के साथ हो रहे अन्याय का विरोध किया और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई।
0: बच्चों, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। उस समय अंग्रेज सरकार ने बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे कठिन समय में अरुणा आसफ अली ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर पूरे देश में आजादी की नई उम्मीद जगा दी। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा याद की जाती है। इसके बाद वे कई वर्षों तक भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व भी करती रहीं और अंग्रेजों से कभी नहीं डरी।
1: बच्चों, देश आजाद होने के बाद भी उन्होंने समाज सेवा का कार्य जारी रखा। वे महिलाओं की शिक्षा, बच्चों के विकास और समाज में समानता के लिए काम करती रहीं। वे दिल्ली की प्रथम महापौर यानी मेयर भी बनी। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और उनके निधन के बाद भारत सरकार ने उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी प्रदान किया।
0: बच्चों, 29 जुलाई 1996 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनका साहस, देशभक्ति और त्याग आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है।
1: तो बच्चों, उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि देश प्रेम सबसे बड़ा धर्म है।
0: बिल्कुल, और अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए।
1: कठिन परिस्थितियों में भी साहस और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए।
0: हाँ बच्चों, शिक्षा, ईमानदारी और सेवा का मार्ग जीवन को महान बनाता है। वीरों की गाथा याद रखें, देश का सदा सम्मान करें। अरुणा जी से सीख यही, साहस से हर काम करें।
1: तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अरुणा आसफ अली के जीवन से प्रेरणा लेते हुए अपने देश, अपने राज्य और अपने समाज की सेवा में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और दीदी, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है तो बच्चों से हमें विदा लेनी होगी, लेकिन चलते चलते हम बच्चों को बता दें कि इस कार्यक्रम की जो प्रस्तुति थी वो गौरव कुमार पांडे की थी। तो बच्चों, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ कहानियों के साथ, कुछ कविताओं के साथ और कुछ अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति।
0: जय हिंद बच्चों।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अभी आप सुन रहे थे बच्चों को संबोधित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के सूत्रधार थे अवधेश और शिल्पी, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की थी। ये प्रसारण आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम जोहार रांची।

जानकारी दे दें। अब से थोड़ी ही देर में यानी 10:30 पर आप सुन सकेंगे प्रोग्राम जोहार रांची। 11:30 का वक्त होगा आपकी पसंद कार्यक्रम का और 12 बजे आपको लिए चलेंगे महिलाओं की दुनिया में, प्रोग्राम है गृहलक्ष्मी।

12:30 का वक्त होगा आंचलिक लोकगीतों के कार्यक्रम भारत भारती का और 12:45 पर आपको सुनवाएंगे लोकगीत कार्यक्रम लोक रंग में। एक बजे आपको लिए चलेंगे समाचारों की दुनिया में और 1:10 का वक्त होगा प्रादेशिक समाचार का।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: स्वागत है, अभिनंदन है आपका आपके अपने प्रोग्राम जोहार रांची में। और आज इस प्रोग्राम के सफर में एक बार फिर आपकी हम सफर है आपकी दोस्त शिल्पी
2: और साथ में मनीष। दोस्तों, कहते हैं ना कि काम के प्रति समर्पण अच्छी बात है, लेकिन काम और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है।
1: बिल्कुल,
2: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में सफलता की दौड़ इतनी तेज हो गई है कि कई बार लोग अपने परिवार, स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी समय नहीं निकाल पाते।
1: लेकिन सच्ची सफलता वही है जिसमें उपलब्धियां भी हों और मुस्कुराहट भी, काम भी हो और अपनों के लिए समय भी, सपने भी पूरे हों और स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है।
2: इन्हीं सुविचारों के साथ बढ़ते हैं आज के सफर पर और कहते हैं
1: जोहार।

0: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जोहार रांची और जोहार रांची में अब बातें आज के इतिहास की। हर तारीख की तरह इतिहास में 12 जुलाई का दिन भी कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाए गए प्रतिबंध को 12 जुलाई 1949 के दिन ही सशर्त हटा लिया गया था।
1: आज ही के दिन सन 1823 को भारत में निर्मित पहला वाष्प इंजन वाला जहाज डायना का कोलकाता में जलावतरण हुआ, अर्थात पानी में उतारा गया। इसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के समय कोलकाता के डॉकयार्ड में ही तैयार किया गया था।
0: सन 1960 में आज ही के दिन यानी 12 जुलाई को ही रांची विश्वविद्यालय और भागलपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पहले रांची विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय

0: विश्वविद्यालय और फिर बिहार विश्वविद्यालय का हिस्सा हुआ करता था, जो कि 1960 में अलग होकर एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय बना।
1: सन 1998 में 16वें विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में फ्रांस ने ब्राजील को 3-0 से हराया। ये फ्रांस का पहला वर्ल्ड कप खिताब था। इस मैच में फ्रांस के महान खिलाड़ी जिदान ने फाइनल में 2 बेहतरीन हेडल गोल करके अपनी टीम को चैंपियन बनाया।
0: आज ही के दिन सन 2003 में उत्तर और दक्षिण कोरिया परमाणु हथियार मुद्दे पर बातचीत के लिए सहमत हुए।
1: और सन 2005 में मशहूर क्रिकेट अंपायर डेविड शेफर्ड ने संन्यास लिया। उनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 12 जुलाई 2005 को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच द ओवल मैदान पर खेला गया एक वनडे मैच था,
0: जहां खिलाड़ियों और दर्शकों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और स्टैंडिंग ओवेशन दिया। अपने 22 वर्षों के लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर में उन्होंने 92 टेस्ट और 172 वनडे मैच में अंपायरिंग की।
1: सन 1912 में क्वीन एलिजाबेथ अमेरिका में प्रदर्शित होने वाले पहली विदेशी फिल्म बनी। और सन 1957 में आज ही के दिन अमेरिकी सर्जन लेरोय ई बर्नी ने बताया कि धूम्रपान और फेफड़े के कैंसर में सीधा संबंध होता है। बातें अभी और भी होंगी, लेकिन उन बातों से पहले एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जोहार रांची, और जोहार रांची में अब जिक्र उनका जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। तो सबसे पहले आपको बताएं कि आज ही के दिन सन 1982 में प्रख्यात साहित्यिक संस्था प्रसाद परिसर के भूतपूर्व सभापति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का निधन हुआ था।
1: सन 2002 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक और गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री घनश्याम भाई ओझा का निधन हुआ, और सन 2005 में पीके वासुदेवन नायर ने भी अंतिम सांसें ली। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिनका संबंध राजनीतिक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से था।
0: सन 2012 में विश्व प्रसिद्ध पहलवान और हिंदी फिल्मों के अभिनेता दारा सिंह का निधन हुआ था। दारा सिंह ने रामानंद सागर द्वारा निर्मित धारावाहिक रामायण में हनुमान की भूमिका निभाकर हिंदुस्तान के घर घर में प्रसिद्धि पाई।
1: उन्होंने करीब 36 वर्षों तक अखाड़े में पसीना बहाया और उनकी लड़ी गई लगभग 500 कुश्तियों में वे एक भी नहीं हारे।
0: इसी वजह से दारा सिंह का नाम ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर हॉल ऑफ फेम में दर्ज किया गया। उन्होंने सन 1959 में पूर्व विश्व चैंपियन जॉर्ज गार्डियांका को पराजित करके कॉमनवेल्थ की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी।
1: बाद में दारा सिंह अमेरिका के विश्व चैंपियन लाउ थेज को पराजित कर फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बने। दारा सिंह को 1966 में रुस्तमे पंजाब और 1978 में रुस्तमे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया।
0: सन 2013 में हिंदी फिल्मों के जाने माने नायक, खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण का भी निधन हुआ। इन्होंने लगभग 350 फिल्मों में अभिनय किया जिनमें मधुमति, उपकार, जंजीर, मजबूर, कालिया, शराबी जैसी मशहूर फिल्मों के नाम शामिल हैं। इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्म भूषण और विलन ऑफ द मिलेनियम अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
1: वर्ष 1999 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार का भी निधन हुआ। गूंज उठी शहनाई, मदर इंडिया, दिल एक मंदिर, धूल का फूल, मेरे महबूब, आई मिलन की बेला, संगम, आरजू और सूरज जैसी फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया और जुबली कुमार के नाम से पुकारे जाने लगे।

0: कहा जाता है कि जब प्रकृति मुस्कुराती है तो उसके चेहरे पर फूल खिल उठते हैं, और अगर इन खिले फूलों को एक साथ देखने का सौभाग्य मिले तो वो अनुभव किसी स्वर्ग से कम नहीं होता।
1: आज हम आपको लिए चल रहे हैं उत्तराखंड की गोद में बसे एक ऐसे ही अद्भुत स्थल की सैर पर जिसे प्रकृति ने अपने सबसे सुंदर रंगों से सजाया है। जी हाँ, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान।
0: समुद्र तल से लगभग 3,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये घाटी वर्षा ऋतु में रंग बिरंगे फूलों की चादर ओढ़ लेती है। जुलाई और अगस्त के महीनों में यहाँ सैकड़ों प्रजातियों के हिमालयी फूल एक साथ खिलते हैं।
1: ऐसा मालूम होता है जैसे धरती पर किसी कलाकार ने रंगों का विशाल कैनवास बिछा दिया हो। ये घाटी केवल अपनी रंग बिरंगी फूलों की सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है।
0: वर्ष 2005 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। यहाँ दुर्लभ वनस्पतियों के साथ साथ हिमालयी पक्षियों और वन्य जीवों की अनेक प्रजातियां भी पाई जाती हैं।
1: फूलों की घाटी तक पहुंचने का सफर भी किसी रोमांच से कम नहीं। गोविंद घाट से शुरू होने वाली पदयात्रा हर मोड़ पर प्रकृति के नए रंग दिखाती है।
0: कल कल बहती धाराएं, बादलों से ढके पहाड़, झरनों की मधुर ध्वनि और शुद्ध पर्वतीय हवा मन को एक नई ऊर्जा से भर देती है।
1: यात्रा के दौरान श्रद्धालु और पर्यटक पास ही स्थित पवित्र हेमकुंड साहिब भी जाते हैं, जिसे ये यात्रा आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम बन जाती है।
0: यदि आप प्रकृति से प्रेम करते हैं, कैमरे में यादगार तस्वीरें कैद करना चाहते हैं, या शहर की भाग दौड़ से दूर कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं,
1: तो फूलों की घाटी आपके लिए एक ऐसा अनुभव है जिसे शहरों में पूरी तरह शब्दों में पूरी तरह से बांधा नहीं जा सकता शिल्पी, और उसे केवल महसूस किया जाता है ना, क्योंकि फूलों और पौधों को देखकर तो मन झूम उठता है।

0: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जोहार रांची, जहां अब कुछ बातें करियर की। दोस्तों, पहले करियर का मतलब होता था एक बंधे बंधाए वक्त पर काम करना, लेकिन आज का युवा चाहता है कि वो अपने समय का मालिक खुद बने।
1: तो अगर आपके भी मन में ये सवाल है तो इसका सबसे अच्छा जवाब है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब है किसी एक कंपनी के लिए अस्थायी नौकरी करने के बजाय अलग अलग क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड काम करना।
0: यानी आप खुद अपने बॉस होते हैं, ये आप तय करते हैं कि कब काम करना है, कितना काम करना है और किसके लिए काम करना है। फ्रीलांसिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले आप अपने स्किल्स पहचानिए,
1: फिर उस स्किल को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस कीजिए, एक छोटा सा पोर्टफोलियो तैयार कीजिए और फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोफाइल बनाइए।
0: शुरुआत में छोटे प्रोजेक्ट्स ही मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ साथ काम भी बढ़ेगा और इनकम भी। बहुत सारे करियर के शुरुआती दौर में चुनौतियां तो होती ही हैं। यहाँ भी कुछ ऐसे ही चैलेंजेस हैं कि इनकम स्टेबल नहीं होगा, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है और हर क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
1: जो लोग इन चुनौतियों को समझ लेते हैं वो फ्रीलांसिंग में बहुत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके फायदे ये हैं कि समय की आजादी रहती है, घर बैठे काम हो जाते हैं, मल्टीपल इनकम सोर्सेज रहते हैं।
0: बिल्कुल, और अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने का मौका भी मिलता है। मनीष, दोस्तों फ्रीलांसिंग सिर्फ एक करियर नहीं, ये एक सोच है, खुद पर भरोसा करने की सोच, अपने सपनों को खुद शेप देने की सोच।
1: तो आपके अंदर भी हुनर है और कुछ अलग करने की चाह है तो फ्रीलांसिंग आपके लिए एक बेहतर रास्ता बन सकता है,
0: क्योंकि जब काम दिल से हो तो ऑफिस के चार दीवारों की जरूरत नहीं होती।

0: जोहार रांची में अब बातें हमारे देश की अद्भुत और समृद्ध संस्कृति की। हमारी संस्कृति की अपनी एक अनूठी खुशबू है, अपना एक अलग रंग है। और आज हम आपको लिए चल रहे हैं पूर्वोत्तर के एक ऐसे ही जादुई और ऐतिहासिक सांस्कृतिक महोत्सव के सफर पर।
1: मेघालय की जयंतिया पहाड़ियों में रहने वाले पनार समुदाय के लिए जुलाई का महीना से बारिश का नहीं बल्कि अदृश्य बुराइयों से जंग का होता है।
0: जी हाँ, भारत के खूबसूरत राज्य मेघालय के जोवाई शहर में हर वर्ष जुलाई के महीने में मनाया जाने वाला महोत्सव है बेहदियन खलाम, जो इस वर्ष 11 से 14 जुलाई तक मनाया जा रहा है।
1: ये जयंतिया जनजाति के पनार समुदाय के सबसे बड़ा त्यौहार है और शब्दों को तोड़कर समझें तो बेह का मतलब है भगाना, दियन का मतलब है लकड़ी की लाठी और खलाम का मतलब है महामारी, यानी लाठियों से महामारी के राक्षस को खदेड़ना।
0: इस त्योहार की तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है। पुरुष जंगलों से पवित्र पेड़ों के तने लाते हैं जिन्हें दियन खलाम कहा जाता है। अनुष्ठानों की शुरुआत और नेतृत्व समुदाय के पारंपरिक मुखिया द्वारा किया जाता है,
1: जो बुरी आत्माओं बीमारियों को दूर करने और अच्छी फसल एवं समुदाय की समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये आयोजन पनार लोगों की कृषि परंपराओं और गहरी आस्था से जुड़ा हुआ है।
0: यहाँ मुख्य उत्सव से पहले लोग अपने घरों की छतों को बांस की लाठियों से पीटते हैं, जो प्रतीक है महामारी के राक्षस को भगाने का। सदियों पुरानी ये सांस्कृतिक परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है, जो हमें बताती है कि कैसे पूरा समाज एकजुट होकर हर बुराई को हरा सकता है।
1: इस महोत्सव का सांस्कृतिक वैभव तब देखते ही बनता है जब आसमान छूते 30-40 फीट ऊंचे रंग बिरंगे रथ, जिन्हें रॉट्स कहते हैं, सड़कों पर निकलते हैं
0: और फिर पूरा शहर उमड़ पड़ता है ऐतनार नाम के एक पवित्र तालाब में। घुटने भर कीचड़ और पानी में हजारों लोग पारंपरिक संगीत पर झूम उठते हैं। ये दृश्य एहसास कराता है कि हमारी जनजातीय संस्कृति में प्रकृति, लोक कला और सामूहिक सद्भाव का कितना गहरा जुड़ाव है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप भारत की असली सांस्कृतिक विविधता को महसूस करना चाहें तो मेघालय के इस अद्भुत उत्सव का हिस्सा जाकर बने, जहां शोर है, कीचड़ है और है आस्था का वो सैलाब जो डर पर इंसान की जीत का जश्न मनाता है।
0: बेहदियन खलाम गवाह है कि जब पूरा आसमान काले बादलों से घिरा हो तब भी इंसानी जज्बा सबसे ज्यादा चमकता है, झूमता है, नाचता है।

गाँव है रेला ऊंचा पाँव यू पटका है ये देसी मेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो नाचो अरे धूम धूम थिरके जा पाँव में जान जगा

0: जोहार राजी में अब बात नहीं मौसम के मिजाज की, तो ये तो हम सब देख ही रहे हैं कि मानसून का रंग अब हमारी रांची क्या पूरे देश में पूरी तरह चढ़ चुका है।
1: बादलों की आवाजाही, ठंडी हवाएं और कभी हल्की तो कभी तेज बारिश, ऐसा ही कुछ आज भी रहने वाला है। दिन की शुरुआत बादलों के साथ तो हो ही रही है, बीच में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें देखने को मिल सकती हैं।
0: आज मौसम विभाग ने गरज चमक, बिजली गिरने और लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। झारखंड के कई हिस्सों के साथ रांची में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
1: अगर बातें करें आज के तापमान की, तो आज का तापमान अधिकतम लगभग 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
0: तो अगर आज आपने वीकेंड प्रोग्राम बना रखा है और कहीं बाहर जाना चाहते हैं, तो अपने साथ छतरी या रेनकोट रखना ना भूलें।
1: सड़क पर वाहन चलाते समय रफ्तार थोड़ी धीमी रखें और सावधानी बरतें। और हाँ, बारिश के दौरान पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें।
0: बारिश की हर बूंद अपने साथ मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, बौछारों का संगीत और सुकून भरा एहसास लेकर आती है।
1: तो आइए इस सुहाने मौसम का आनंद लेते हैं, लेकिन सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए।

0: मनीष, बारिश की फुहारें मन को सुकून तो देती हैं, लेकिन बदलता मौसम शरीर की इम्यूनिटी की परीक्षा भी लेता है। ऐसे में कुछ आसान घरेलू नुस्खे हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएं तो बारिश के मजे भी बने रहेंगे और सेहत भी। क्या कहते हो?
1: अगर हल्की ठंड लग रही हो और गले में खराश महसूस हो रही हो तो अदरक, तुलसी और काली मिर्च की हल्की सी चाय आराम पहुंचाती है।
0: चाहे तो इसमें थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि शहद को बहुत गर्म पेय में ना मिलाएं। बारिश के मौसम में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसे में अगर खाने के बाद एक चम्मच भुना अजवाइन और भुना सौंफ मिलाकर खा लें तो ये पाचन में मदद करेगा।
1: भीग कर घर लौटे हों तो गुनगुने पानी से हाथ पैर धोकर सूखे कपड़े पहन लीजिए। इससे शरीर को गर्माहट मिलती है और संक्रमण का खतरा कम हो जाता है।
0: और मच्छरों से बचाव भी इस मौसम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, खिड़कियों पर जाली लगाएं और सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें।
1: और एक छोटी सी लेकिन बेहद काम की बात, बारिश में कटे हुए फल, खुले में बिकने वाले चाट पकौड़ी या लंबे समय से रखा हुआ भोजन खाने से बचें। याद रखिए, स्वाद कुछ मिनटों का होता है लेकिन सेहत लंबे समय तक साथ निभाती है।
0: बिल्कुल। और एक और बात है, घरेलू नुस्खे सामान्य देखभाल में मदद कर सकते हैं, लेकिन यदि तेज़ बुखार, सांस लेने में तकलीफ, लगातार उल्टी दस्त या कोई भी गंभीर लक्षण दिखाई दे तो फौरन डॉक्टर से सलाह लेना सही कदम होता है।
1: तो आइए इस मानसून अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें।

0: और चलते चलते आखिर में बस ये कहना चाहेंगे कि स्वयं को कभी भी माचिस की तिली ना बनाएं जो थोड़ा सा घर्षण लगते ही सुलग उठे, बल्कि खुद को वो शांत सरोवर बनाएं जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वो खुद ही बुझ जाए।
1: यानी छोटी छोटी बातों को अपने दिल दिमाग पर हावी ना होने दें, बल्कि शांत मन से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में ही समझदारी है।
0: इन्हीं सकारात्मक बातों के साथ वक्त हो चला है जोहार रांची के आज के पन्नों को यहीं समेटने का। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें।
1: और फिलहाल जोहार रांची के इस सफर में हमें देवीदा
0: जोहार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हो चुके हैं और ये वक्त है श्रोताओं के फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। आपकी पसंद कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं इनकी फरमाइश। ये हैं लेवई से गुलाबदास पानिकपुरी। इन्होंने सुनना चाहा है अलका याग्निक और सोनू निगम को बॉर्डर फिल्म में। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और धुन बनाई है अनु मलिक ने।

अगली फरमाइश हमने ली है लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश शर्मा और दतरेंगी से भागवत वर्मा की, और इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म मिस्टर एक्स से पलक मुच्छल को। गीत के बोल लिखे हैं रश्मि सिंह ने और संगीत जीत गांगुली का है।

आपकी पसंद कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है नीलेश मिश्रा का लिखा हुआ श्रेया घोषाल की आवाज में। इस गीत की धुन बनाई है एमएम करीम ने और फिल्म का नाम है जिस्म। और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा बासंती बनमाली बेसरा और सिद्ध कुमारी ने।

अगली फरमाइश हमने ली है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा की, और इन्होंने सुनना चाहा है टशन फिल्म से उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर को। गीत के बोल लिखे हैं कौसर मुनीर ने और धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

दबंग 2 यह फिल्म का नाम, और आइए सुनते हैं इस फिल्म से राहत फतेह अली खान, शादाब फरीदी और श्रेया घोषाल को। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर अंजान ने और धुन बनाई है साजिद वाजिद ने, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मिका बिरक ने।

आपकी पसंद कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। 12 बज चुके हैं और ये वक्त है बहनों के कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का। आज इस कार्यक्रम को लेकर हमारे साथ हैं सुमन तिवारी और लता।

0: बहनों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। इस खूबसूरत से सफर में आपकी हम सफर हैं, हम दो सखियां लता और सुमन। खुद पर विश्वास और आत्मविश्वास वास्तव में जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने की सबसे पहली सीढ़ी होती है और हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण भी है।
1: तो बहनों स्वीकार कीजिए लता का भी प्यार भरा नमस्कार। और जब आप खुद से सकारात्मक उम्मीद करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और हर मुश्किल काम जो हो वो आसान लगने लगता है। किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए बहनों उन्हें छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटे। जब आप छोटे लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, क्यों सुमन?
0: बिल्कुल सही कहा लता आपने।
1: हाँ,
0: जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो खुद को कभी भी कम ना समझें, है ना। और अपने जीवन में जो भी पिछली सफलता हासिल की है हमने, उसे याद रखें और जो नकारात्मक विचार हैं उन्हें दूर रखें। यदि कोई भी गलतियां होती है तो उससे हम हार मानने के बजाय सीखने का अवसर माने।
1: बिल्कुल सुमन, हाँ तुमने बहुत अच्छी बात कही कि खुद को कभी भी कम ना समझे बहनों। और जब भी हमें हमारे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं तो हमें उससे दूर रखना चाहिए और अपनी सफलताओं को याद करना चाहिए।
0: बिल्कुल, जब हम सफलताओं को याद करेंगे तो आगे बढ़ने का एक हौसला मिलता है हमें और हम जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं।
1: हाँ सुमन, जीवन में लक्ष्य और सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास अत्यंत आवश्यक है। सफलता पाने के लिए व्यक्ति में आत्मविश्वास जो है वो होना सबसे ज्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: जब हम खुद की क्षमता को समझते हैं तो आत्मविश्वास भीतर से आता है और यह लोगों को जो है वो सिखाता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है और अपने मंजिल को पाना है।
0: सही बात बोला। देखिए, जब हम स्वभाव से आशावादी, उत्साही और सकारात्मक सोच रखते हैं लता, तो एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीते हैं।
1: हाँ।
0: और जो ज्ञान है वह हमारे आत्मविश्वास की जो सबसे बड़ी पूंजी होती है।
1: बिल्कुल,
0: यह जो कि आपके अपनी क्षमताओं को समझने में भी मदद करता है। और जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, जब अपने आप पे विश्वास हो, भरोसा हो, तो हम एक जीवन में सटीक और जो त्वरित निर्णय होता है उसे लेने में भी सक्षम होते हैं।
1: हाँ, खुद से। बिल्कुल। और बहनों खुद पर विश्वास करने के लिए, आत्मविश्वास के लिए एक समग्र रणनीति भी आवश्यक है।
0: बिल्कुल,
1: जब आप कोई भी कार्य जिज्ञासा के साथ करते हैं ना, तो पूर्वाग्रह के साथ उसके परिणाम जो होते हैं वो अवश्य से संतोषजनक होगा। आपकी यह विश्वास बढ़ती जाएगी कि आप भविष्य में भी कोई भी कार्य सफलतापूर्वक संभाल सकते हैं, मजबूत बन सकते हैं। आपका आत्मविश्वास और आप खुद पर भरोसा करें और कभी भी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं करें,

0: पर विश्वास रखें।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम दूसरे पर निर्भर होते हैं ना तो उनके आदि हो जाते हैं, और जब अपने पे विश्वास करके हम किसी भी कार्य को करते हैं तो वो सफलतापूर्वक बिल्कुल आसानी से अपने भरोसे कर सकते हैं हम। और जब आपको खुद पर भरोसा होगा तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपके रास्ते की दीवार नहीं बनेगी। और जितने वाले जो लोग हैं कभी हार नहीं मानते हैं, और जो हार मानने वाले हैं वो कभी नहीं जीत सकते हैं, है ना। तो जब आपका अपने आप पर अटूट विश्वास होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत किसी भी परिस्थिति में हमें नहीं हरा सकती है।
0: हाँ सुमन, ये भी बड़ी अच्छी बात तुमने कही कि हमें कोई हरा नहीं सकता अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है।
1: बिल्कुल,
0: यदि आपको खुद पर पूर्ण विश्वास है बहनों, तो आप दुनिया की हर बाधा को पार कर सकती हैं, है ना।
1: बिल्कुल सही।
0: और असफलताएं और चुनौतियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन खुद पर भरोसा ही वह ताकत है जो आपको हर मुश्किल से निकाल कर जीने की जो है वो राह को आसान करता है।
1: बिल्कुल सही कहा लता आपने। और जब आप खुद से सकारात्मक उम्मीद करते हैं तो आपका मस्तिष्क उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ऊर्जा और कार्य योजना तैयार करने लगता है। और मैं यह भी कह सकता हूँ, या मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, खुद से उम्मीद भरोसा आपको आगे बढ़ाता है। और जब आप दूसरों की उम्मीदों का बोझ उतारकर अपनी खुशी, शांति और वर्तमान क्षण में जीना सीख जाते हैं तो जीवन वास्तव में आसान और सार्थक हो जाता है। जब आप खुद अपनी काबिलियत पर पूरा यकीन करने लगते हैं तभी दुनिया भी आप पर भरोसा करना शुरू कर देती है, है ना।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, बड़े अच्छे उदाहरण के साथ
1: बिल्कुल
0: बताया हमारी बहनों को कि खुद पर जब हम यकीन कर लेते हैं तो हमें कोई भी मुश्किल जो है वो रोक नहीं पाती।
1: बिल्कुल।
0: और सुमन, बिना स्वयं की योग्यताओं पर भरोसा किए कोई भी नई शुरुआत या बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता, है ना। तो बहनों, जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो यह आत्म संदेह को दूर करता है और किसी भी काम को करने का साहस प्रदान करता है। जब आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं तो सारी जो दुविधाएं हैं वो खत्म हो जाती है और आप बिना झिझक के निर्णय ले पाते हैं।
1: बिल्कुल सही, किसी भी तरह का ना कोई डर होता है ना झिझक होती है, हम अपने कार्य को बिल्कुल आराम से अपने तरीके से कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं जीवन।
0: और जब हम अपने बारे में जब सोचने लगते हैं तो अक्सर ये याद करते हैं।
1: बिल्कुल, तो चलिए हम मनोरंजन की दुनिया में चलते हैं।
0: हाँ
1: क्या है ना, तो पहले गीत सुन लेते हैं हम लोग टेम पर्वत से। इसके संगीतकार हैं जयदेव और गीत जाने निशार अख्तर, और गायक हैं लता मंगेशकर।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: तो मैनो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर, जहां हमें लेकर चलेंगी सुमन।
2: चलिए हम एक जानकारी कराते हैं आपको वेद वार्ता से। बच्चों के लिए जरूरी है शारीरिक गतिविधि, इसके बारे में हमें बता रही है उर्मिला सिंह और इनसे बातचीत की है हमारी सखी लता।
3: आज के समय में बच्चों का अधिकतर समय मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बीत रहा है। इसका असर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर साफ दिखाई देने लगा है। ऐसे में नियमित शारीरिक गतिविधियां, खेलकूद और व्यायाम बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गए हैं। बच्चों के लिए जरूरी है शारीरिक गतिविधि, आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। हमारे बीच है वरीय शिक्षिका उर्मिला सिंह जी, जो लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। उर्मिला मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद लता जी। सभी श्रोतागणों को नमस्कार। सबसे पहले लता जी और आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया।
3: जी मैम। मैम, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको शिक्षा जगत का एक अच्छा खासा लंबा अनुभव है और आप अपने शैक्षिक जीवन में बच्चों को देख भी रही हैं, तो मैम बच्चों के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि क्यों जरूरी है?
4: हम जैसा कि हम सब जानते हैं मैम कि नियमित फिजिकल एक्टिविटी किसी भी बच्चे के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाती है। इट इज नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रेन मैडम, इवन वी एडल्ट, हम लोग को भी जरूरी है कि हमारी बॉडी को जितना हम एक्टिव रखेंगे, बॉडी हमारा उतना ही पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसमें होता क्या है कि नियमित शारीरिक गतिविधियों से बच्चों की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मोटापे का खतरा कम होता है और उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास बेहतर होता है। तो शारीरिक गतिविधियां तो बहुत ही आवश्यक है आजकल के बिजी लाइफ के लिए मैडम।
3: बहुत खूबसूरत जवाब मैम। मैम, अलग अलग आयु में बच्चों के लिए प्रतिदिन कितनी शारीरिक गतिविधि की जरूरत होती है?
4: अगर मैं बात करती हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार
3: जी,
4: तो अलग अलग आयु के बच्चों का अलग अलग एक्टिविटी होता है। जैसे 1 साल से 4 साल के बच्चों के लिए कम से कम 3 घंटे खेल जरूरी है, और 5 साल से 17 साल के बच्चों के लिए 1 घंटा वो जरूर खेले, लेकिन उनकी शारीरिक गतियां इतनी तेज हो कि उनकी फुल बॉडी एक्सरसाइज विद इन 1 घंटे में ही हो जाए। उसके लिए वो साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज है जिनका फुल बॉडी एक्सरसाइज 1 घंटे में हो सकता है।
3: ये तो बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी मैम। मैम, आजकल बच्चे लगातार मोबाइल और टीवी में व्यस्त रहते हैं, लगातार मोबाइल और टीवी देखने का बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?
4: ये तो हम सब जाने मैम, हर घर में परेशानी है टीवी और मोबाइल का। अधिक स्क्रीन टाइम से तो आंखों का पर असर जरूर खराब होता है, और ये सच में कहीं ना कहीं हम भी इसके लिए योगदान है, समाज कहिएगा जो भी कहिए। इसका सबसे मेन एग्जांपल कोविड आया। जब कोविड आया तो बच्चों का आउटडोर गेम बंद हो गया, फुल्ली वो घर में इंडोर खेलने लगे। इंडोर का मतलब उनका हमेशा वो बॉडी मूवमेंट कम हो गया, मोबाइल और टीवी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुए। इवन स्कूल ने भी ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किया, तो उनको 6 घंटा तो उसमें इन्वॉल्व रहना ही रहना था, उनका टीचिंग होने लगा उससे, फिर एक्टिविटीज, होमवर्क, एवरीथिंग वाज थ्रू ऑनलाइन। तो यहाँ बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व हुए टीवी और मोबाइल में, उसका असर ये हुआ कि एक हैबिट हो गया उनको। अब ऐसा है कि बिना मोबाइल के उनको रहना मुश्किल है, तो इसका कहीं ना कहीं हम ही रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे को इससे कैसे हटाएं, इससे दूर कैसे करें, उनकी फिजिकल मूवमेंट कम होता है तो उनको कैसे हम प्रेरित करें कि भाई आप आउटडोर गेम भी खेलो, और इससे क्या बैड इफेक्ट उनके आईसाइट पे, उनके बॉडी पे, उनका डे टू डे लाइफ पे पड़ेगा, उनको बताना हमें बहुत जरूरी है। उन्हें हमें बताना होगा कि एक जगह बैठकर जो मोबाइल में देखते हो, टीवी देखते हो, उससे तो फिंगर पे जो खराब असर होता ही है, रे जो निकलता है मोबाइल से वो बॉडी के लिए बहुत खराब है, उसे मोटापा बढ़ता है, साउंड स्लीप भी प्रभावित होता है मैडम। अगर कोई बच्चा एक घंटा नहीं सो पाएगा तो लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी है, उनका बिहेवियर से दिख जाता है कि ये मोबाइल एडिक्ट बच्चा है।
5: ये तो बहुत अच्छी बात आपने हमारी बहनों को बताया मैम। मैम, शारीरिक गतिविधियां बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास में कैसे मदद करती है?
4: देखिए, क्रिएशन एक वर्ड है मनोरंजन
5: जी,
4: तो मनोरंजन बहुत तरह के होते हैं। कुछ लोग मूवी देख के मनोरंजन करते हैं, कुछ टीवी देख के करते हैं, कुछ अपने आप को एंटरटेन करते हैं पार्टी में जाके, लेकिन बच्चों के लिए खेल कूद ही बहुत बड़ा मनोरंजन है
5: जी।
4: जिससे वो अपने तनाव को, टेंशन को, स्ट्रेस को रिलीज करते हैं। उससे उनका क्या होता है, खेलते हैं तो अपने ग्रुप में मिलते हैं, उससे उनका टीम वर्क स्ट्रांग होता है, डिसिप्लिन सीखते हैं वो, उनकी आत्मविश्वास बनती है, बढ़ती है, आपस में बात करके अपनी भावनाओं को भी वो एक्सप्रेस करते हैं, और उससे होता है कि बहुत कुछ वो खेल खेल में बहुत कुछ दूसरे बच्चों से भी सीखते हैं, तो उससे उनका कॉन्सेंट्रेशन क्लास प्लस घर की एक्टिविटीज में भी ज्यादा बढ़ जाता है मैडम।
5: बहुत खूब मैम, ये तो बहुत सटीक जानकारी है। मैम, पढ़ाई और खेल दोनों जरूरी है, तो पढ़ाई और खेल के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है?
4: सबसे पहले मैम, हम पेरेंट्स को डेली रूटीन बनाना चाहिए बच्चों के लिए आफ्टर स्कूल, स्कूल से आने के बाद
5: जी,
4: जिसमें स्टडीज के साथ साथ रोज कम से कम एक घंटा खेल का भी होना चाहिए, खेल हो या फिर कोई एक्सरसाइज हो, वो मस्ट है। तो उस अकॉर्डिंग टू एज उसमें होना चाहिए, ऐसे नहीं कि 4 साल के बच्चों के लिए हम 1 घंटा पढ़ा रहे हैं या फिर 10 साल के बच्चों को हम आधा घंटा पढ़ा रहे हैं, वैसा नहीं। अकॉर्डिंग टू एज हमको रूटीन बनाना होगा, और कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है कि कभी कभी बच्चों का मूड नहीं हो, मूड स्विंग कर रहा है, तो थोड़ा सा उसमें हम लोग को थोड़ा लचीलापन लाना पड़ेगा। लेकिन है कि टाइम मैनेजमेंट, कहा जाता है टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस, बहुत जरूरी है। तो खेल और स्टडीज में दोनों को बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है, जैसे बैलेंस शेड्यूल से बच्चों का एकेडमिक और ओवरऑल डेवलपमेंट होता ही है। तो कभी कभी होता है ना कि बच्चों का मूड चेंज किया, तो तब हमें अपने रूटीन के अकॉर्डिंग उनको देखना पड़ता है, और फिक्स नहीं, कभी थोड़ा सा फिक्स नहीं होना चाहिए मैडम।
5: बिल्कुल मैम, जिन बच्चों के पास खेलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, चूंकि आज हम लोग सब अपार्टमेंट कल्चर में जी रहे हैं, तो उनके लिए क्या विकल्प हो सकते हैं मैम, बताएं?
4: हाँ मैम, आजकल ज्यादा लोग 75% अपार्टमेंट में ही रहते हैं।
5: हाँ।
4: तो जहाँ बच्चों को खेलने के लिए इनफ स्पेस नहीं है,
5: हाँ।
4: ज्यादा तो उनका इंडोर गेम ही होता है, तो इसमें हम पेरेंट्स को चाहिए कि इंडोर को इतना इंटरेस्टिंग बनाए, ऐसा अरेंजमेंट करे घर में ही, ताकि बच्चों को आउटडोर वाला गेम के लिए फील नहीं हो कि मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा लाइफस्टाइल बहुत बोरिंग हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए उनको लूडो, कैरम, स्किपिंग, एक्सरसाइज, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज है जो कि घर में किए जा सकते हैं। हाँ, टाइम टू टाइम करके बच्चों को वंस इन अ वीक पार्क मिले गए, कहीं आउटडोर लेकर गए, लेकिन ज्यादातर देखिए आजकल है कि पेरेंट्स, मदर फादर दोनों वर्किंग हैं, तो वे अपने बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी पेरेंट्स से कि व्हेनेवर यू आर फ्री, जब भी आप खाली हैं, अपने बच्चे को वो क्वालिटी टाइम दीजिए, ताकि बच्चा भी रियलाइज करे आई एम मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर माय पेरेंट्स, उनको अपना वैल्यू पता चलेगा, और हम ही हैं, हम पेरेंट्स ही हैं जो कि अपने बच्चों को सेफ एनवायरमेंट

0: धन्यवाद लता जी।
1: अभी आप सुन रहे थे बच्चों के लिए जरूरी है शारीरिक गतिविधि, इस बारे में हमें जानकारी करा रही थी उर्मिला सिंह और इनसे बातचीत कर रही थी हमारी सखी लता।
2: हाँ सुमन, बहुत ही उम्दा जानकारी। और अब जानकारी कुछ और भी हो जाए, जैसा कि मौसम है बारिश का, तो बरसात में पौधों की देखभाल की बातें हो जाए।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है क्योंकि हर कोई के पास पौधे हैं और टेरेस गार्डनिंग भी लोग आज कर रहे हैं, सब चीज चल रहा है। तो इसमें जरूरी होते है ना कि हम अपने पौधे की देखभाल किस तरह से करें। तो बरसात में पौधों की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है ताकि वे सड़ने और फंगस से बचे रहे। और इसमें सबसे जो जरूरी काम है वह है कि गमलों में पानी को जमा ना होने दें, और गमले में पानी जो रुकता है ना उससे पौधे का खराब होने का कारण बनता है।
2: हाँ बहनो, इस मौसम में जो खरपतवार है वो बहुत जल्दी हो जाते हैं बारिश की वजह से।
1: बिल्कुल,
2: तो खरपतवार घास आदि को आप हटाएं और बारिश के दौरान अतिरिक्त खाद न डालें। ये हम भूल कर बैठते हैं, हर मौसम की तरह ही खाद इसमें डालते रहते हैं, बट बारिश में इतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो हर 10-15 दिन में हल्की सी गुड़ाई जरूर करें और इससे जड़ों तक हवा जो है वो पहुंचती है और पानी जल्दी सूखता है। और ध्यान रखें बहनों की जो भी आप गुड़ाई करते हैं उस करते वक्त पौधों की जो मुख्य जड़ है उसको नुकसान न पहुंचे।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए कि साथ में बरसात में जो पौधे हैं बहुत तेजी से बढ़ते हैं।
2: हाँ।
1: अगर पौधे में कोई भी सूखी या बीमारी वाली टहनी हो तो उसे साफ और धारदार कटर से काट दें, और नमी के कारण पौधों में कीड़े और फंगस लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके बचाव के लिए हम नीम की खली या नीम के तेल के स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी तुमने दी सुमन, लेकिन क्या किया जाए, जो स्टूडियो की घड़ी है वो कुछ इशारा कर रही है कि अब समय हो चला है बहनों से विदा लेने का। लेकिन बहनों को बता दे चलते चलते कि आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की थी
1: जी।
2: तो अब लेते हैं
3: और साथ ही

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:45 हो चुके हैं और ये वक्त है कार्यक्रम लोक रंग का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं खड़िया लोकगीत। कलाकार हैं इग्नासियो स्केरगेट्टा और साथी।

मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है, आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं जहां से आप सुन सकेंगे समाचार। समाचार हम क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सुनेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के 3रे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने ले मिन हुन ने फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी के तहत विभिन्न नदियों और नहरों में 16 जगहों पर माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाने का लिया निर्णय। ऊर्जा विभाग ने तैयारी शुरू की। झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन विवाद मामले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीओ के प्रशासनिक आदेश पर हस्तक्षेप करने से किया इनकार। साइबर अपराध के पीड़ित आम लोगों और व्यापारियों को निजात दिलाने के लिए झारखंड पुलिस ने शुरू किया जीआरएम पोर्टल। पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर मंडल से होकर 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का लिया निर्णय। और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य में अच्छी बारिश होने के दिए संकेत। राज्य में अब तक कम बारिश की भरपाई होने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी के तहत राज्य के 16 जगहों पर माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर ऊर्जा विभाग विभिन्न जिलों में स्मॉल मिनी और माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाने की योजना तैयार कर रहा है। ये प्रोजेक्ट रांची, सिमडेगा, गुमला, लातेहार और पश्चिम सिंहभूम जिलों के नदियों और नहरों के लिए किनारे लगाए जाएंगे। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने के संकेत दिए हैं। रांची में अपने निजी आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि अब तक उन्होंने राजनीतिक जीवन का लंबा सफर तय किया है, ऐसे में राजनीति में भी पड़ाव जरूर आना चाहिए, आपको स्वतः अवकाश ले लेना चाहिए। वित्त मंत्री ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र की राजनीति का उन्हें कोई लालसा नहीं है। उन्होंने धर्म कर्म, सामाजिक उत्थान, लेखन कार्य और देशाटन करने की इच्छा जताई है।
1: राजनीति में एक पड़ाव आना चाहिए कि आपको स्वतः अवकाश ले लेना चाहिए राजनीति से। तो 2029 में जब चुनाव होगा तो राजनीतिक उम्र हमारी 50 वर्ष की हो जाएगी। तो मेरे मन की इच्छा यही है, जो मैं साफ साफ आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो 2029 के चुनाव में मैंने अभी तक मन बनाया है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं।
0: झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन विवाद के एक मामले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीओ द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमीन के अतिक्रमण और उसकी पहचान से जुड़े विवादित सवालों का फैसला रिट याचिका के माध्यम से नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में साक्ष्यों की आवश्यकता होती है, जिनका निपटारा दीवानी अदालत ही कर सकती है। प्रदेश भाजपा ने किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रविनाथ किशोर ने आरोप लगाया कि कृषि क्षेत्र से जुड़े कई सरकारी दावे जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो रहे हैं। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की मांग की।
2: राज्य सरकारों किसानों के हित से कोई मतलब नहीं है। उनको समय पर खाद बीज भी नहीं मिल रहा है, सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिल रही है, धानों का जो मूल्य होना मिलना चाहिए वो भी उनको समय पर नहीं मिल रहा है, और ऋण माफी की जो बात किसानों के लिए उन्होंने की थी पिछले बार वो भी सब छलावा साबित हुआ है। तो यह सरकार जो चल रही है पूर्णतः किसान विरोधी है और किसानों के हित के लिए कोई काम नहीं कर रही।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 350 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने पर 5 लाख रुपये का ऋण मंजूर होने का दावा करने वाले एक फर्जी स्वीकृति पत्र का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने इस पत्र को पूरी तरह फर्जी बताया है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी सीधे सूक्ष्म उद्यमियों या व्यक्तियों को ऋण नहीं देती। साइबर अपराधों की जांच के दौरान फ्रीज या होल्ड किए गए बैंक खातों की समस्याओं से आम जनता और अब व्यापारियों को निजात दिलाने के लिए झारखंड पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत जीआरएम पोर्टल शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रभावित निर्दोष खाता धारकों को पारदर्शी, ऑनलाइन और समयबद्ध शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने विशेष रेल परिचालन करने का निर्णय लिया है। रेलवे ने रथ यात्रा 2026 के दौरान पूरी आने जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए चक्रधरपुर मंडल से होकर गुजरने वाली 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इन विशेष ट्रेनों के चलने से झारखंड, ओडिशा तथा आसपास के क्षेत्रों के हजारों श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। पलामू पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत मेदिनीनगर सदर और पांकी थाना क्षेत्र में 5 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 1 किलोग्राम अफीम, 50 किलो डोडा, 15,450 रुपए नकद, कार, मोटरसाइकिल बरामद किया गया है।
3: ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसके तहत NDPS के अभियुक्तों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। सदर थाना अंतर्गत जो अभियुक्त थे उनके पास से लगभग 750 ग्राम अफीम जब्त हुआ। पाकी थाना क्षेत्र में जांच करने के क्रम में 50 किलोग्राम डोडा की रिकवरी हुई और उसके साथ साथ लगभग 250 ग्राम अफीम भी जब्त, जो इस तस्करी में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हुई।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपये प्रति किलो है। दुमका जिले में वर्षा का पैटर्न बदल गया है, जिससे खरीफ की खेती का जोखिम बढ़ गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के दुमका क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉ. कुमार शैलेंद्र मोहन ने बताया है कि पिछले 35 सालों में दुमका जिले में वर्षा की कुल मात्रा में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन वर्षा के समय और वितरण में बदलाव आया है। इससे खरीफ के मौसम में पानी की कमी हो रही है। उधर जामताड़ा जिले में अब तक अपेक्षाकृत कम बारिश होने से कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने बताया कि कम बारिश को देखते हुए मोटे अनाजों की खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है।
4: जिले में 50% से कम बारिश हुई है, बाकी जगहों पे अभी रोपा नहीं हो पा रही। इसी को देखते हुए जिला में कंटीजेंट प्लांट के तहत अरहर का और मूंग का वितरण बीज का किया जा रहा है 100% सब्सिडी में और लेंस पैक्स के द्वारा 50% सीड एक्सचेंज, और अभी मिलेट मिशन का प्रचार प्रसार जोरों से किया जा रहा है। उसके द्वारा किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपया करके मिलता है, किसान 5 एकड़ तक 15,000 रुपया ले सकते हैं।
0: मौसम विभाग ने देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। विभाग के अनुसार 14 जुलाई से राज्य के अधिकांश भागों में भारी बारिश के संकेत हैं, जिससे राज्य में अब तक कम बारिश की भरपाई होने की उम्मीद है। रांची में आयोजित नगड़ी प्रीमियर लीग मुकाबले में कल रॉयल्स की टीम ने टाइटंस को 43 रनों से हरा दिया। रॉयल्स ने 20 ओवरों में 128 रन बनाए, जबकि टाइटंस की पूरी टीम 19 ओवर और 4 गेंद पर 85 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी के तहत विभिन्न नदियों और नहरों में 16 जगहों पर माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाने का लिया निर्णय। ऊर्जा विभाग ने तैयारी शुरू की। झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन विवाद मामले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए SDO के प्रशासनिक आदेश पर हस्तक्षेप करने से किया इनकार। साइबर अपराध के पीड़ित आम लोगों और व्यापारियों को निजात दिलाने के लिए झारखंड पुलिस ने शुरू किया GRM पोर्टल। पूरी स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर मंडल से होकर 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का लिया निर्णय। और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य में अच्छी बारिश होने के दिए संकेत। राज्य में अब तक कम बारिश की भरपाई होने की उम्मीद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:20 हो रहे हैं और ये वक्त है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं टप्पा। कलाकार हैं डॉक्टर अनीता सेन।

0: अनुरंजनी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 1:45 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम सुगम संगीत का।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं चंद गजलें। आइए सबसे पहले सुनते हैं कतील राजस्थानी की लिखी गजल। यादों के उजालों को सीने से लगा रखना तन्हाई के मौसम में सायों की हुकूमत है। राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना। फनकार हैं भूपेंद्र और मिताली सिंह।

जिनको दुनिया की निगाहों से छुपाए रखा, जिनको एक उम्र कलेजे से लगाए रखा, तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे। आइए सुनते हैं रजिंद्रनाथ रहबर की लिखी गजल, फनकार हैं जगजीत सिंह।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 2 बजने को है, आइए एक बार फिर आपको दिल्ली लिए चलते हैं मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार के लिए।

0: This is Akashwani, and I'm Sunil Verma with the Midday News. The headlines. India condemns attack on commercial vessel GFS Galaxy off coast of Oman. 10 Indians rescued, one reported missing. New Delhi expresses concern over continuing attacks on commercial shipping in the region. Prime Minister Narendra Modi returns to New Delhi after concluding several agreements during his visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones of several development projects in Ahmedabad. Employees Provident Fund Organization introduces a 6-month amnesty scheme for establishments operating private Provident Fund Trust to regularize their status. In Wimbledon, Jannik Sinner to lock horns with Alexander Zverev for men's singles title this evening. And in FIFA World Cup, England and Argentina enter semi-finals. India has condemned the attack on the commercial vessel GFS Galaxy off the coast of Oman today. The External Affairs Ministry informed in a statement that of the 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one Indian national is reportedly missing. It said the Indian Embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. India has thanked the Omani authorities for their support. New Delhi has expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It reiterated the call for immediate de-escalation of tensions and the conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The External Affairs Ministry said the targeting of commercial shipping and civilian infrastructure in the region must end, and free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways in the region, in keeping with international law, must be restored at the earliest. The United States launched fresh airstrikes on Iran this morning. The airstrikes came after Tehran attacked a commercial vessel in the Strait of Hormuz, setting it ablaze and forcing its crew to abandon ship. U.S. Central Command said it targeted around 140 Iranian military sites, including missile, drone and communications facilities. Iran retaliated with missile and drone attacks targeting Bahrain, Kuwait, Qatar and the United Arab Emirates. Qatar and Kuwait said they intercepted the incoming projectiles, while Bahrain also activated missile alerts. Iran also claimed to have carried out strikes on a U.S. military base in Jordan. Iran's Revolutionary Guard said it has closed the Strait of Hormuz until further notice and warned of further action if U.S. strikes continue. Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after concluding several agreements during a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand, a report by our correspondent.
1: In the first leg of his three-nation tour, Mr. Modi visited Indonesia. During the visit, the Prime Minister held bilateral discussions with the Indonesian President and reviewed the progress. The two nations exchanged MOUs and agreements in the fields of defense, critical and rare earth minerals, agriculture, maritime security, and space. During his visit, Prime Minister Modi was conferred the highest civilian medal of honor, Bintang Adipurna, of the Republic of Indonesia. In the second leg of his tour, Prime Minister Modi traveled to Melbourne, Australia, where he participated in the third India-Australia annual summit with Australian Prime Minister. The visit also enabled the supply of uranium from Australia to India. During the visit, Australian Super announced to invest $500 million to India's National Investment and Infrastructure Fund. On the final leg of his three-nation visit, the Prime Minister visited Auckland. During the visit, Prime Ministers of India and New Zealand announced the creation of the India-New Zealand Strategic Partnership and set a target to double bilateral trade by 2030. With Dipendra Kumar, Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
0: BJP has said that India has emerged as a stabilizing force in the Indian Ocean and Indo-Pacific region. Addressing a press conference in New Delhi, party spokesperson Sambit Patra said, Prime Minister Narendra Modi recently visited Seychelles and Indonesia to further strengthen these strategic ties. He said the free trade agreement between India and New Zealand is a significant achievement. Mr. Patra highlighted 10 important outcomes from his visit to Indonesia, Australia and New Zealand. This concludes the Indian Ocean Indo-Pacific Strategic Alliance, Defence and Maritime Cooperation, Critical Mineral Cooperation, Energy Security, Economic and Investment Outcomes, Digital Public Infrastructure and Educational Partnership. Mr. Patra also highlighted that India and Australia have issued a joint declaration on defence and security cooperation.
2: At the profound contribution of our great nation of more than 1 million Australians who trace their roots proudly back to India, your generosity of spirit shines through in every way. Over generations, your commitment to Australian aspiration and your love of this country has made it better, stronger and more vibrant. Australians of all backgrounds have been enriched by you bringing your culture here and adding it to our multicultural character. We are a better nation because we have you in it. You are a living bridge between Australia and India.
0: Former Qatar Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, who transformed the Gulf nation into a major global player in diplomacy, media and investment, has died at the age of 74. He ruled Qatar for 18 years before voluntarily handing over power to his son in 2013, breaking with regional tradition. Under his leadership, Qatar emerged as a global energy powerhouse, launched the Al Jazeera News Network, expanded its international investments, and successfully hosted the 2022 FIFA World Cup. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the demise of Father Emir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. In a social media post, Mr. Modi said that he was a visionary leader who led Qatar to great levels of development and prosperity. The Prime Minister added that India remembers him as a true friend. Mr. Modi conveyed his condolences to the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and the entire royal family and people of Qatar. The Indian Embassy in Vietnam today informed that the mortal remains of the 15 Indian nationals who lost their lives in yesterday's boat capsize near Phu Quoc Island in Vietnam are being transported to Ho Chi Minh City, Vietnam. In a social media post, the embassy said that after the completion of necessary formalities there, the mortal remains will be transported to India at the earliest. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on IX handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Home Minister Amit Shah today inaugurated and laid the foundation stones for a series of development projects of the Ahmedabad Municipal Corporation worth 405 crore rupees in Ahmedabad. On this occasion, he launched a massive tree plantation drive under the Ek Ped Makinam campaign, which saw the planting of over 1 crore 25 lakh saplings across his Lok Sabha constituency, Gandhinagar, today. Addressing the gathering, Mr. Shah highlighted a long-term environmental roadmap to increase the green cover of the constituency to 20% by the 2029 elections. We have a report from our correspondent.
3: The Home Minister stressed that planting indigenous species like banyan, peepal, jambu and arjun will help lower city's temperature by 5% and ensure a livable environment for future generations. The Minister also issued a strong call to action for universal adoption of solar rooftops, urging every household and residential society to contribute to environmental sustainability. As part of this environmental push, 101 new oxygen parks were inaugurated and a dedicated e-book mapping their details was also released. In a major boost to public transport, 333 new electric buses were inducted into AMTS and BRTS fleets, making the Ahmedabad BRTS the first in the country to operate 100% electric and zero pollution fleet. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
0: Union Minister Shivraj Singh Chauhan has emphasized that planting trees is extremely important for protecting the environment and ensuring a sustainable future. Addressing the Vriksh Mitra program and Paryavaran Sanrakshan Sankalp event in New Delhi, Mr. Chauhan said today the entire world is concerned about climate change and global warming. He noted that since 1880, rising ocean temperatures and melting glaciers have led to an increase in global sea levels by about 20 to 23 centimeters. He added that the Earth's average temperature has risen by nearly 1.5 degrees Celsius compared to 1900, which is a serious warning sign of climate change. The Employees Provident Fund organizations have introduced the Amnesty Scheme 2026, providing a one-time opportunity for establishments operating exempted provident fund to regularize their status. Labor and Employment Ministry said that the scheme will remain open for a period of 6 months. This scheme applies to establishments that have been operating a provident fund trust recognized under the Income Tax Act 1961. The ministry said eligible establishments shall submit a formal application through email to the concerned regional office. An exempted provident fund is an employer-managed PF scheme that handles its own provident fund contributions internally through a private trust rather than depositing them directly into the employee's provident fund organization. We have a report.
4: The EPFO's introduced Amnesty scheme provides a one-time opportunity for eligible establishments that have been operating recognized PF trusts to regularize their status retrospectively. It is intended to bring such trusts within a uniform statutory framework while ensuring compliance with the applicable legal provisions. For employees, the scheme is expected to provide a greater certainty regarding the legal status of the employer's provident fund trust. It also requires that member accounts should have received contributions and interest at par with or better than the statutory EPFO rates for the prescribed relief to apply. By regularizing exempted PF trusts, the scheme is also expected to make the administration of provident fund benefits more streamlined and legally compliant. With Devendra Kumar, this is Vishnu PS for Akashwani News, Delhi.
0: In tennis, two Wimbledon titles will be decided today as the men's singles and women's doubles finals are played. World number one Jannik Sinner will face Germany's Alexander Zverev in the men's singles final at 8:30 p.m. Indian Standard Time. Sinner booked his place in the title clash with a straight sets victory over Novak Djokovic, while Zverev entered his first Wimbledon final after defeating British wildcard Arthur Fairey. The women's doubles final will begin at 5:30 p.m. IST. In the FIFA World Cup, England booked their semi-final berth with a 2-1 extra time win over Norway, while Argentina entered the semi-final defeating Switzerland 3-1 this morning. In the first semi-final, France and Spain will face off on Wednesday. The match will kick off at 12:30 a.m. Indian Standard Time. France reached the semi-finals after defeating Morocco 2-0 in the quarter-finals, while Spain advanced with a hard-fought 2-1 victory over Belgium. The second semi-final will be played on Thursday between England and Argentina at 12:30 a.m. Indian time. The winners of the two semi-finals will meet in the FIFA World Cup final on July the 20th at New York, New Jersey Stadium. The losing teams will play the third place playoff on July the 19th in Miami. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. It has predicted heavy rainfall conditions at isolated places over Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, East Uttar Pradesh, Gangetic West Bengal and Himachal Pradesh today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India condemns attack on commercial vessel GFS Galaxy off coast of Oman. 10 Indians rescued, one reported missing. New Delhi expresses concern over continuing attacks on commercial shipping in the region. Prime Minister Narendra Modi returns to New Delhi after concluding several agreements during his visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones of several development projects in Ahmedabad. Employees Provident Fund Organization introduces a six-month amnesty scheme for establishments operating Private Provident Fund Trust to regularize their status. In Wimbledon, Yannick Sinner to lock horns with Alexander Zverev for men's singles title this evening. And in FIFA World Cup, England and Argentina enter the semi-finals. And with that, we end the midday news.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
5: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
7: ईपीएफओ की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
8: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
5: गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में

0: 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू कोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थी।
2: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है, जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हनयू और फ्रांस की क्रिस्टिना मुलादेनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की रेबिएला ड्रोवास्की और ब्राजील की

0: लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों के कार्यक्रम जय भारती का। जय भारती कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने और धुन बनाई है अजय अतुल ने।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती। और जय भारती कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं रुस्तम फिल्म से आतिफ असलम को। गीत के बोल लिखे हैं।

जब वी मेट, यह है फिल्म का नाम। और आइए सुनते हैं इस फिल्म से इरशाद कामिल का लिखा गीत मोहित चौहान की आवाज में। गीत संगीत प्रीतम का है।

आइए अब सुनते हैं अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत वरुण जैन और शिल्पा राव की आवाजों में। इस गीत की धुन बनाई है सचिन जिगर ने और फिल्म का नाम है स्त्री 2।

अगला गीत हमने लिया है महाराज फिल्म से मोनाली ठाकुर की आवाज में। इस गीत के बोल लिखे हैं कौसर मुनीर ने और धुन बनाई है सुहेल सेन ने।

0: करके हैं।
1: मोनाली ठाकुर के गाए इस गीत के साथ ही फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 2:55 होने को है, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। श्री चौहान ने पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान और मिशन लाइफ जैसी पहलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने आज पंडरा थाना के सामने स्थित खाली सरकारी भूमि का निरीक्षण किया। श्री सेठ ने बताया कि इस स्थान को विकसित कर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सम्मानजनक और स्थायी व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ओटीसी मैदान से पंडरा फ्रेंड्स कॉलोनी तक बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स प्रतिदिन अपनी दुकान लगाकर आजीविका अर्जित करते हैं, लेकिन उन्हें वर्षों से स्थायी स्थान के अभाव सहित कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री के साथ रांची की मेयर रोशनी खलको भी मौजूद थी। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा बस स्टैंड के पास से पुलिस ने करीब 1 किलो 95 ग्राम बेशकीमती पन्ना बरामद करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शुभम खंडेलवाल ने बताया कि बरामद पन्ना की अनुमानित कीमत करीब 1,50,00,000 रुपए के आसपास है।
3: पन्ना की अवैध तस्करी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने बहरागोड़ा बस स्टैंड के पास से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया और कुल 1 kg 95 ग्राम पन्ना के साथ और 2 मोटरसाइकिल और इनके 3 फोन और कुल 2300 रुपए नकद के साथ इनको गिरफ्तार किया गया।
2: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 350 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने पर 5,00,000 रुपये का ऋण मंजूर होने का दावा करने वाले एक फर्जी स्वीकृति पत्र का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने इस पत्र को पूरी तरह फर्जी बताया है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा सीधे सूक्ष्म उद्यमियों या व्यक्तियों को ऋण नहीं देती। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया जाएगा। यह योजना उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगी जो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित घाघरा गांव से उत्पाद विभाग ने एक अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए 350 पेटी नकली विदेशी शराब, हजारों नकली लेबल और भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद किया है। उत्पाद अधीक्षक शिव कुमार साहू ने बताया कि यहां अंग्रेजी शराब के कई ब्रांड के नाम पर नकली शराब तैयार की जा रही थी।
4: टीम के द्वारा विधिवत रूप से जब परिसर की तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में शराब बनाने का उपकरण, कैरामेल, स्पिरिट, ढक्कन, रेपर, विभिन्न ब्रांड का ड्रम जब्त किया गया। 35 लीटर स्पिरिट जब्त किए, तो कुल मिला के लगभग 350 पेटी निर्मित विदेशी शराब और लगभग 4000 लीटर स्पिरिट, भारी मात्रा में नकली होलोग्राम, खाली बोतल 60 बोरा, कार्टून 1000 पीस, नकली ढक्कन 25000 पीस जब्त किए।
2: पूर्वी सिंहभूम जिले के उलीडीह थाना क्षेत्र स्थित राजस्थान भवन के समीप चोरों ने लगातार दो रातों में करीब 10 दुकानों से चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर इन दुकानों के ताले तोड़कर नकदी, कीमती सामान और अन्य सामग्री लेकर फरार हो गए, जबकि कुछ दुकानों में ताले तोड़े जाने के बावजूद चोरी नहीं हो सकी। पुलिस ने बताया कि चोरों ने अधिकतर किराना, मेडिकल, हार्डवेयर और अन्य प्रतिष्ठानों को अपना निशाना बनाया। पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। रांची के मोरहाबादी में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से छात्र मैराथन का आयोजन किया गया। बापू वाटिका से शुरू हुए इस मैराथन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। मैराथन के समापन पर महिला और पुरुष वर्ग के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में सुनेंगे हम फिल्म संगीत।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: ಸ್ವಯಂ ಹಿ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: आंखियों के झरोखों से आइए सुनते हैं इस फिल्म से हेमलता को. गीत और संगीत रविंद्र जैन का है.

फिल्म संगीत में फिलहाल इतना ही। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, 3:10 होने को है। आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के लिए।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं महाराष्ट्र में मनोरंजन की पारंपरिक विधा तमाशा के लिए अपना योगदान देने वाले श्री रघुवीर खेड़कर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है अंकिता आपटे।
1: नमस्कार, मैं अंकिता आपटे और आज हमारे साथ है विख्यात तमाशा कलाकार रघुवीर खेड़कर। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी।
2: रघुवीर जी, तमाशा की विरासत जो है आपकी, वो अपने परिवार से आपको मिली है। अपने माता पिता दोनों ही तमाशा कलाकार थे, तो इस परंपरा के बारे में हमें बताइए और आपके बचपन के बारे में भी बताइए।
3: वैसे तो मेरा जन्म तमाशा में ही हुआ है। बम्बई का न्यू हनुमान थिएटर लालबाग, यहाँ 1961 में मेरा जन्म हुआ और दूसरे दिन मेरे को थिएटर में लाया गया। तो पांचवा दिन जो था वो हमारे मराठी में उसको पांचवी बोलते, बाळाची पांचवी, वो मेरा पांचवा दिन था। और उसी दिन मेरे पिताजी के दोस्त माधवराव नगरकर, इनका तमाशा था, उनका वगनाट्य नाग प्रसन्न रघुवीर, इसका ओपनिंग था। तो ओपनिंग में उन्होंने वो जो बच्चा बनाते थे डॉल का, वो बच्चा लिए बगैर मेरे को जो लेके गए स्टेज पे। जन्म के पांचवी दिन मैं स्टेज पे गया, ये मेरा बचपन का पहला एंट्री था। बाद में 1964 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद माँ अकेली गिर गई। हम चार बच्चे थे, उसके माँ बाप थे, उसका भाई था, उसकी बहन थी, इनको सबको पोसना उसको बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने तमाशा निकाला, जो मेरे शिक्षण के लिए मेरे पिताजी ने पैसे रखे थे 10,000 रुपए, वो 10,000 निकाल के तुकाराम खेड़कर यांची चिरंजीव रघुवीर खेड़कर सर कांताबाई सातारकर तमाशा मंडल संगमनेर में ये तमाशे का उद्घाटन हुआ और मैं 9 साल का लड़का पे आया। वो मेरी दूसरी और पहली एंट्री।
2: तो आपकी पहली एंट्री के बारे में तो आपने बताया कि जन्म के बाद पांचवे दिन आप स्टेज पे थे, और जो दूसरी एंट्री थी जब आपने स्टेज पे पहली बार कदम रखा, तो वो अनुभव आपको याद है?
3: मेरी हाल बहुत बड़ी बात है। तो माँ ने एक साल दूसरे तमाशे में नौकरी की, वो आनंद लोकनाट्य करके है वो तमाशे में, और फिर पैसे मिलने के बाद ये तमाशा निकाला। तो हमने सोचा, हम चारों बहन, कि माँ को साथ देना चाहिए। तो मेरी बड़ी बहन अनिता ताई ये स्टेज पे नाचने लगी, दूसरी बहन अलका ताई ये स्टेज पे गाने लगी, फिर मैं भी स्टेज पे नाचने लगा। और हमारी छोटी बहन थी मंदा, वो बहुत ही छोटी थी, 4 साल की थी, वो कुछ कर नहीं पाती थी, तो उसको लेके हम साथ में घूमने। और पहले ऐसा था सब कुटुंब साथ में रहने का तमाशे में, पहले ऐसे घर भीर नहीं थे हमारे, सिखाने पढ़ाने को जगह नहीं थी, तो हम सब साथ में, हमारे सबकी चौथी चौथी एकता हो गई है।
2: रघुवीर जी, आपने सोंगाड़िया ये पात्र अपने खुद के लिए क्यों चुना, आपकी इसके पीछे क्या सोच थी?
3: इसके पीछे ऐसे सोच थी, सोंगाड़िया तो मेरे पिताजी थे वो हीरो थे, मेरी माँ हीरोइन, और उनका जो एक लगातार उनके जो प्रोग्राम होते थे, तो दर्शक जब प्रोग्राम छूटने के बाद उनको मिलने को आते थे, वाह बेहतरीन काम किया आज आपने, बहुत बेहतरीन हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो मैं सुनने का। तो मैंने बड़ा होके मैं अगर हीरो का काम करूं तो भी लोग बोलेंगे करता है काम अच्छा, मगर बाप के सरीका नहीं। इसलिए मैंने वो काम छोड़ के एक कॉमेडी पसंद की और मैं सोंगाड़िया बन गया।
2: रघुवीर जी, ये जो आप सारे पात्रों के बारे में हमें बता रहे हैं, सोंगाड़िया, हीरो, हीरोइन, ये सब तमाशा में कैसा दिखता है ये हमें बताइए ना।
3: बहुत भारी तमाशा में वगनाट्य होता है, वगनाट्य बोले तो नाटक, नाटक में संगीत नहीं रहता, गाने नहीं रहते, और वगनाट्य में संगीत गाने रहते हैं, ये फर्क है नाटक में और वगनाट्य में। तो वगनाट्य में ऐसी स्टोरी होने की, पहली छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरी होने की, राजा हरिचंद्र की स्टोरी होने की, नवनाथ महाराज की स्टोरी होने की, सत्यवान सावित्री वो स्टोरी होने की, आईच काळी बोले तो माँ का कलेजा ये स्टोरी होने की, तो बहुत भारी था वो। और वो अभिनय ऐसे थे पुराने जमाने के लोगों की, सिनेमा में जैसे लोग देखते वैसा ही अभिनय स्टेज पे होता था, और मैं खुद वो देख के रोता था, ऐसा उनका अभिनय था।
2: रघुवीर जी, आपने अपना पूरा जीवन एक तमाशा कलाकार के रूप में रंगमंच पे बिताया है, तो ये सफर कैसा रहा बचपन से लेके अब तक सोंगाड़िया के पात्र को निभाना भी, और उसके इर्द गिर्द जो तमाशा आपने देखा रंगमंच से देखा, वो कैसा है?
3: रंगमंच में मैंने तो तमाशे के चार रूप बदलते हुए देखे। पहला तमाशा जो पौराणिक वगनाट्य पे चलता था, दूसरा तमाशा ऐतिहासिक वगनाट्य पे चला, तीसरा तमाशा राजवाड़ी वगनाट्य पे चला, चौथा तमाशा सामाजिक वगनाट्य पे चला। तो ऐसे चार रूप मैंने तमाशे के देखे। मेरा जो दौर रहा तमाशे का वो बहुत अच्छा दौर था। मुझे बचपन से ही पब्लिक ने चुना था, मेरे कॉमेडी को बहुत पब्लिक हंसती थी। अगर मैं गंभीर भूमिका करूं फिर भी लोग हंसते थे, तो दौर बहुत अच्छा था।
2: रघुवीर जी, अभी आपने जिक्र किया कि सामाजिक कथाएं, सामाजिक मुद्दे तमाशा के रंगमंच से उठाना, ये भी एक दौर आपने देखा। और हाँ, ये आपने भी किया कि जो मुद्दे, सामाजिक मुद्दे आपको लगा कि इनकी बातें होनी चाहिए, वो आपने आपके तमाशे के माध्यम से भी दिखाई। तो ये क्यों लगा आपको कि तमाशा जैसे माध्यम का उपयोग इन मुद्दों को उठाने के लिए किया जा सकता है और किया जाना चाहिए?
3: तमाशा बोले तो प्रबोधन का काम है। जब शिवाजी महाराज गली में कावा करते थे, उसमें शायरी होती थी और शायर के पेट में से ही तमाशा निकला। तो पहले से ही, यानी कि स्वतंत्र पूर्व काल से ही तमाशा प्रबोधन करते आया है। तमाशा ने सिखाया है ऐसी बात मत करो जो तुम्हारे जान पे उठेगी, ऐसी बात करो कि जो दस जाने बचाएंगी। ये तमाशे का उद्देश्य था। तमाशा पढ़ाने वाला था, अनपढ़ लोगों को तमाचा सिखाने का। तुम सीखो, प्रौढ़ शिक्षण चालू है, प्रौढ़ शिक्षण सीखो तो अक्षर तुमको आने चाहिए, ऐसा तमाशा ने सिखा है। और ये सामाजिक मुद्दे इसलिए तेज पे आए कि भाई ये लोगों ने जैसे गलत बात करी है, ये गलत बात तुमसे ना होना, क्योंकि तुम समाज के घटक हो, समाज सुधारक हो, तो समाज सुधारने होना और पूरे पृथ्वी पे महाराष्ट्र का और भारत का नाम रोशन होने होना, इसलिए हम सामाजिक वगनाट्य करते थे।
2: और रघुवीर जी, ये जो सामाजिक वगनाट्य के प्रयोग आपने किए, तो लोगों की प्रतिक्रिया कैसे होती थी? क्योंकि तमाशा का हमारे मन में जो चित्र होता है उससे ये थोड़ा सा हटके है, तो लोगों ने इसे कैसे लिया?
3: तमाशा लोगों की जान था। जब सिनेमा नहीं था, जब नाटक नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, जब टीवी नहीं था, जब तमाशा ही तमाशा था, तो लोग जिस दिन तमाशा आने वाला है उस दिन से दिन भर तमाशा का रास्ता देखते वो ग्राउंड पे खड़े रहते थे। तमाशा कब आएगा, तमाशा कब आएगा। और उनकी कर्मणु कोई थी, वो किसान लोग जो थे, जो अपन किसान बोलते हैं, किसानों का कला का जो चाहता प्रकार है वो तमाशा है।
2: तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो ये सामाजिक वगनाट्य के प्रयोग भी थे, वो भी लोगों ने उतने ही अप्रिशिएट किए जितना वो और तरीके के तमाशा वगनाट्य को करते थे।
3: हाँ।
2: आपने अभी जिक्र किया रघुवीर जी कि इंटरनेट है, टीवी है, ओटीटी है, और ये दौर ही इन सभी चीजों का है। और हम देखते हैं कि तमाशा जैसी लोक कलाएं जो है उनका महत्व कम हो रहा है, तो आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, आपको क्या लगता है?
3: देखिए, अभी शहरों के जो लोग हैं उनको ग्रामीण में क्या हो रहा है ये मालूम नहीं है, क्योंकि टीवी और मोबाइल में वो पूरे जा चुके हैं अंदर, और टीवी में जा चुके हैं, मोबाइल में जा चुके हैं, उनको बाहर देखने को टाइम नहीं है। तो आज भी तमाशे को पब्लिक उतना ही चाहती है जो 50 साल पहले चाहती, धूप रहती है उसमें भी लोग 9 से दोपहर 12 बजे तक लोग तमाचा देते हैं। गाय इसी नहीं होता, फैन नहीं होता, खाली तंबू लगाया होता है छाव के लिए, और उस छाव में बैठकर लोग आज भी इनको तमाचा देखते हैं।
2: तमाशा का भविष्य आपको कैसे दिखता है?
3: तमाशा का भविष्य जो है, जैसे नाटक सुधर गया, जैसे सिनेमा सुधर गया है, वैसा तमाशा भी सुधरने लगा है। जब तक महाराष्ट्रीयन पब्लिक है, जब तक तमाशा जिंदा रहेगा, ये तो बात सूर्य नारायण जब तक है जब तक चलती ही रहेगी, खाली उसमें बदलाव आए।
2: कैसे बदलाव की आप बात कर रहे हैं रघुवीर जी, किस तरह के बदलाव?
3: इंटरनेट पे तमाशा जाएगा और आधुनिक यंत्र तमाशे में आएगी, आधुनिक वाद्य तमाशे में आएगा, आधुनिक गाना आएगा, ये सब जो अभी चल रहा है ये तमाशे में अभी आ चुका है। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं, पहले इंस्ट्रूमेंट हाथ से बजाते थे, अब इंस्ट्रूमेंट बटन से ये बजाए जाते हैं, ऐसा सब बदलाव आ चुका है और आगे भी ऐसा बदलाव आएगा।
2: रघुवीर जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि तमाशा कलाकार को पहली बार पद्मश्री से सम्मानित किया जाने वाला है, तो इस पहल से कौन कौन से सकारात्मक बदलाव तमाशा के क्षेत्र में आपको लगता है कि हो सकते हैं?
3: जब से ये अपुकार हुई है 25 जनवरी को ये रघुवीर खेड़कर को पद्मश्री मिला है, जब से तमाशे में जो लोग आते हैं वो बहुत शांति से तमाशा सुन रहे हैं। मेरा तमाशा तो दो रोज लोग आते हैं तो बहुत शांति से सुन रहे हैं, बहुत शांति से देख रहे हैं, तालियां सिट्टियां बजाते हैं, जाते टाइम हाथवारे करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, हमारी वीडियो निकालते हैं, हमारे साथ फोटो निकालते हैं, हमको धन्यवाद करते हैं। ये सब बदलाव आ चुका है 25 जनवरी के बाद।
2: रघुवीर जी, आपके इस लंबी यात्रा को जब आप अब इस मकाम से पीछे मुड़ के देखते हैं, जो जिंदगी आपने जी, जो सोंगाया के इतने सारे पात्र आपने निभाए इतने सारे वगनाट्यों में, तो क्या लगता है कैसी रही है ये जर्नी अब तक?
3: बहुत बेहतरीन रही है।
2: रघुवीर जी, तमाशा कलाकारों को देखने का एक नजरिया थोड़ा सा अलग होता है।
3: आज अपन फिल्म देखते हैं, अपन रील देखते हैं, तो बच्चों के आंख पे पूरा बदन झका हुआ नहीं होता है, फिर भी उनको लोग अभिनेत्री बोलते हैं। और ये जो तमाचे की नर्तिका रहती है, ये नौवारी साड़ी में पूरी ढके रहती है, पूरी सजी रहती है, उसको लोग तमाचे वाली बोलते हैं। ये समाज है, अभी वो समाज जैसा चलेगा उसके पीछे जाना पड़ेगा।
2: तो इस फ्रंट पे भी आप कुछ बदलाव देख रहे हैं रघुवीर जी, कि अगर कुछ नजरिया बदल रहा है लोगों का या वो वही है?
3: नहीं नहीं, बदला है, एक महीने में पूरा नजरिया बदला है। मैंने हमारे सारे लोग जो है हमारे साथी तमाशे वाले, उनको भी पूछा, भाई अपना ये पुरस्कार जाहिर होने के बाद तुम्हारे में क्या बदलाव आया, तुम्हारा प्रेक्षक क्या कर रहा है? तो बोल रहे बहुत अच्छे तमाशा देख रहे हैं, पहले सर के धींगाना भींगाना बहुत करते नहीं, और भीड़ होती थी, भीड़ में मारामारी होती थी और कुछ होता था, वैसा कुछ करते नहीं, अभी बहुत अच्छा तमाशा देख रहे हैं। इतना बदलाव तो जरूर आया है ये पद्मश्री से।
2: रघुवीर जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आपके क्षेत्र में आना चाहती है या आप ही के क्षेत्र से उनके माँ बाप है और वो बच्चे हैं, वो बाहर निकलना चाहते हैं, ये भी कभी कभी होता है, तो इस क्षेत्र में आना जो चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
3: जरूर आई, क्योंकि ये अभी इसमें पद्मश्री मिल रहा है, अगर वो यहाँ आके करियर करे तो कुछ हो सकता है। अभी तमाशा कुछ ग्रामीण रहा नहीं, तमाशा भी बदल चुका है, पूरा तमाशा बदला हुआ है, तमाशे में रोजगार भी अच्छे मिलते हैं, ऐसा रोजगार तमाशे में मिल रहा है और कला मिल रही है, सबसे ज्यादा तो कला मिल रही है। कला एक ऐसी चीज है, मरे हुए आदमी को जिंदा रखती है, ऐसी कला है। कला के साथ अपनी उपजीविका भी वो याद कर सकते हैं और अपना नाम भी बहुत कर सकती है। यही मैं आने वाली नई जनरेशन को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जरूर तमाशे में भाग ले, इसका सुने ना, आप जरूर तमाशे में भाग ले, आप बड़े कलाकार हो जाए, बड़े बड़े पुरस्कारों के माननीय बन जाए, ऐसा मुझे लगता है।
2: रघुवीर जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी महाराष्ट्र में मनोरंजन की पारंपरिक विधा तमाशा के लिए अपना योगदान देने वाले श्री रघुवीर खेड़कर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अंकिता आप्टे। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
4: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 3:23 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रोग्राम रांची मेलोडीज।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए, देश पर मिटे।

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: आकाशवाणी रांची पर वक्त हो चला है उस खूबसूरत सफर का जिसे हम रांची मेलोडीज कहते हैं, और आज के इस मेलोडीज गीतों का सफर एक बार फिर आपकी दोस्त शिल्पी के साथ। आज की मेलोडीज हमने डेडिकेट की है फिल्म जगत के उस वर्सेटाइल एक्टर को जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा और जिन्हें फिल्म जगत में एक शानदार नाम मिला। चलिए आज एक बार फिर उस दौर में चलते हैं जब सिनेमाघरों के बाहर टिकटों के लिए लंबी कतारें लगती थी, जब किसी फिल्म के पोस्टर पर सिर्फ एक नाम सफलता की गारंटी माना जाता था, जब लगातार सिल्वर जुबली मनाना किसी सपने जैसा लगता था। लेकिन एक अभिनेता ने सपने को हकीकत बना दिया, और वो सितारा जिसकी सादगी ने दिल जीते, जिसकी आंखों ने बिना शब्दों के मोहब्बत बयां की, जिसकी मुस्कान ने हर किरदार को अपना बना लिया, उन्हें नाम मिला जुबली कुमार। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये थे राजेंद्र कुमार। आइए आज यादों की रील को फिर से चलाते हैं और लौट चलते हैं उस सुनहरे दौर में जब मोहब्बत गीतों में महकती थी और राजेंद्र कुमार की अदाकारी उसे अमर बना देती थी।

कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि उन्हें सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। मेरे महबूब फिल्म ने राजेंद्र कुमार को रोमांटिक नायक के रूप में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उनकी सादगी, उनकी नजाकत और आंखों से अभिनय करने की कला ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। लेकिन ये शोहरत एक दिन में हासिल नहीं

नहीं हुई। फिल्मी दुनिया में प्रवेश पाना इतना आसान भी नहीं था। कभी सहायक निर्देशक के रूप में काम किया तो कभी छोटे छोटे किरदार निभाए। संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन मेहनत, धैर्य और लगन ने उन्हें सफलता के उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां उन्हें बेहद सम्मान मिला। 60 के दशक में उन्होंने लगातार कई हिट फिल्में दीं।

राजेंद्र कुमार ने केवल रोमांस ही नहीं बल्कि भावनात्मक भूमिकाओं में भी अपनी अलग पहचान बनाई। दिल एक मंदिर, आरजू, सूरज, तलाश, झुक गया आसमान जैसी फिल्मों ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया। कुछ चेहरे समय की धूल से कभी धुंधले नहीं पड़ते, कुछ

दुकानें पीढ़ियां बदल जाने के बाद भी दिलों में उसी गर्मजोशी से बसती हैं। और कुछ कलाकार सिर्फ फिल्मों के नायक नहीं होते, बल्कि करोड़ों लोगों की यादों का हिस्सा बन जाते हैं। और इन्हीं यादों के सुनहरे पर्दे फिर से खोलते हैं और महसूस करते हैं उस अभिनेता की जादुई दुनिया जिसकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा और जिनके गीत आज भी दिलों की धड़कनों में बसे हैं। तो एक ऐसा ही सदाबहार नगमा जिसने मोहब्बत को शब्दों से नहीं, एहसासों से सजाया।

60 का दशक राजेंद्र कुमार के नाम रहा। उस दशक का शायद ही कोई ऐसा वर्ष रहा हो जब राजेंद्र कुमार की कोई बड़ी हिट फिल्म ना आई हो। निर्माता उनके साथ फिल्म बनाने को उत्सुक रहते थे क्योंकि उनके

फिल्मों की सफलता लगभग तय ही मानी जाती थी, लेकिन सफलता के बावजूद भी उनका स्वभाव बेहद विनम्र रहा। यही वजह थी कि शोहरत के साथ साथ फिल्म जगत में उन्हें उतना ही सम्मान भी मिला। उन्होंने केवल सफल फिल्में ही नहीं दी, बल्कि एक ऐसा दौर रचा जिसे हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम अध्याय कहा जाता है।

रोमांस हो, दर्द हो, पारिवारिक संवेदनाएं हो या त्याग की मिसाल, हर किरदार में राजेंद्र कुमार ने सच्ची भावनाओं का रंग भरा। राजेंद्र कुमार की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सहज अदाकारी। वे अभिनय नहीं करते थे बल्कि अपने किरदार को जीते थे। उनकी आंखों की मासूमियत और संवादों की सादगी दर्शकों के दिलों तक सीधा पहुंचती थी।

शान, उनका सौम्य व्यक्तित्व और उनकी यादगार फिल्में आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जीवित है। उनकी अभिनय यात्रा हमें ये सिखाती है कि प्रतिभा के साथ अगर विनम्रता और मेहनत हो तो सफलता खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेती है। इसी एहसास के साथ आज के मेलोडीज को यहीं समेटते हैं, लेकिन यादों की ये रील चलती रहेगी हर उस दिल में जहां अच्छी फिल्म और मधुर संगीत के लिए जगह है।

आज के मेलोडियस सफर में बस इतना ही। अगली रांची मेलोडीज में कुछ और दिलकश नगमों और खूबसूरत किस्सों के साथ मुखातिब होंगे। अब इस सफर से अपनी दोस्त शिल्पी को दीजिए इजाजत।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान और मिशन लाइफ जैसी पहलों का उल्लेख किया। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने आज पंडरा थाना के सामने स्थित खाली सरकारी भूमि का निरीक्षण किया। श्री सेठ ने बताया कि इस स्थान को विकसित कर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सम्मानजनक और स्थायी व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने की कोशिश की जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। यह योजना उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगी जो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा बस स्टैंड के पास से पुलिस ने करीब 1 किलो 95 ग्राम बेशकीमती पन्ना बरामद करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शुभम खंडेलवाल ने बताया कि बरामद पन्ना की अनुमानित कीमत करीब 1,50,00,000 रुपए के आसपास है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित घाघरा गांव से उत्पाद विभाग ने एक अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए 350 पेटी नकली विदेशी शराब, हजारों नकली लेबल और भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद किया है। रांची के मुरहबादी में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से छात्र मैराथन का आयोजन किया गया। बापू वाटिका से शुरू हुए इस मैराथन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। मैराथन के समापन पर महिला और पुरुष वर्ग के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 4:02 हो चुके हैं और ये वक्त है बाल श्रोताओं के कार्यक्रम बाल सभा का।

0: बीज धरा में दब जाता है तब सुंदर पौधा बनता है। मेहनत और धैर्य का साथी हो तो हर सपना पूरा होता है।
1: हार नहीं है अंत सफर का, ये तो नई शुरुआत है। गिरकर फिर जो उठ जाए वही सच्ची सौगात है।
0: हाँ बच्चों, जीवन में जीत मिले तो खुशियों के दीप जलाओ, लेकिन यदि हार मिले तो उससे भी सीख जाओ, क्योंकि जीवन एक यात्रा है बच्चों, और इस सफर में बहुत खुशियों की धूप मिलती है तो कभी कठिनाइयां भी मिलती है।
1: हाँ बच्चों, लेकिन हमेशा याद रखिए, वही बच्चे आगे बढ़ते हैं जो मुश्किलों से घबराते नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करते हैं, क्योंकि चुनौतियां आपकी दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वो आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं, वो सच्ची मार्गदर्शक और शिक्षक है।
0: हाँ बच्चों, इसलिए चुनौतियों से डरना नहीं है, बल्कि डरने के बजाय उससे कुछ न कुछ सीखना चाहिए। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और आगे बढ़ने का अवसर भी देती है।
1: बिल्कुल बच्चों, जरूरी नहीं है कि हर बार सफल हो, कभी असफलता मिले तो अपनी गलती से सीखें, दोबारा मेहनत करें और विश्वास रखें कि अगली बार सफलता अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि असफलता अंत नहीं होती।
0: बच्चों सही कहा भैया ने, इसलिए कठिन समय में भी आत्मविश्वास बनाए रखें, हमेशा सकारात्मक सोचें और अपने माता पिता, शिक्षकों, दोस्तों से सलाह लें, नियमित अभ्यास भी करते रहें। देखिएगा, खुद पर विश्वास होगा तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी।
1: बच्चों, आप किसी भी महान व्यक्ति की जीवनी पढ़कर देखिए, उनके जीवन में भी कई चुनौतियां आई, पर उन्होंने उसका सामना किया, बिना डरे डटकर सामना किया, मेहनत की और सत्य की राह अपनाई, फिर उन्हें अपनी मंजिल मिली।
0: जी हाँ बच्चों, दुनिया का लगभग हर सफल व्यक्ति कभी न कभी कठिनाइयों से गुजरा है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार निरंतर प्रयास करते रहे।
1: दीदी ने बिल्कुल सही कहा बच्चों, मुश्किलें हमें रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जो बच्चा गिरकर फिर उठना सीख जाता है वही जीवन में बड़ी सफलता हासिल करता है। इसलिए हमेशा साहसी बनिए, मेहनत करिए और अपने सपनों पर विश्वास रखिए।
0: बच्चों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का प्रसिद्ध वाक्य हमेशा दोहराइए और उसे याद रखिए कि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
1: तो बच्चों, हमने बात की सपनों की, विश्वास की, आशा की, और आपको पता ही होगा कि 12 जुलाई को हम लोग मनाते हैं विश्व अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, और आशा दिवस मनाने का मतलब ही है कि हम अपने जीवन से आशा को बाहर न करें, निराश न हो और आशा का हाथ थाम कर ही चलें, एक न एक दिन सफलता हमें अवश्य मिलेगी। और कहा भी जाता है बच्चों, आशा से आकाश थमा है।
0: बच्चों आपको पता ही होगा कि 16 जुलाई को रथ यात्रा भी है, इसमें भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की यात्रा निकलती है, जिसे उड़ीसा पुरी में धूमधाम से मनाया जाता है।
1: हाँ बच्चों, आज हम आपको एक ऐसी यात्रा की कहानी सुनाने जा रहे हैं, यानी रथ यात्रा की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें लाखों लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ शामिल होते हैं, और वो है भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा, जिसे हमारे शहर रांची के धुरवा में भी निकाली जाती है।
0: हाँ बच्चों, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने रथ यात्रा देखा है? अरे वाह भैया, इतने सारे बच्चों ने रथ यात्रा देखा है, बहुत अच्छा लगा होगा, है ना? क्योंकि बड़े बड़े रथ और खूब सारी भीड़ भी होती है।
1: बच्चों, भारत के ओडिशा राज्य के पूरी शहर में हर साल एक अद्भुत रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीन विशाल सुंदर रथों में विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलती हैं। तीनों रथों के अलग अलग नाम होते हैं, नंदी घोष, ताल ध्वज, दर्प दलन।
0: हाँ भैया, और कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाने के लिए यह यात्रा करते हैं। हजारों लाखों श्रद्धालु मिलकर इन विशाल रथों को मोटी रस्सियों से खींचते हैं, और मान्यता है कि रथ खींचना सेवा, प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है।
1: बच्चों, इस रथ यात्रा की सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हर व्यक्ति मिलजुल कर भगवान के रथ को खींचता है, और यही हमें प्रेम, एकता, समानता और भाईचारे का संदेश भी देती है।
0: बच्चों, भगवान जगन्नाथ नाम का अर्थ भी बहुत प्यारा है। पता है क्या है? उनके नाम का अर्थ है पूरे जगत के नाथ, यानी सभी के भगवान।
1: इस यात्रा की सबसे सुंदर बात यह है बच्चों कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं, क्योंकि मंदिर के भीतर जाने का अवसर सभी को नहीं मिलता। इसलिए इस दिन भगवान सभी के दर्शन के लिए स्वयं नगर भ्रमण के लिए बाहर आते हैं।
0: और बच्चों, क्या अमीर गरीब छोटे बड़े सभी मिलकर रथ की रस्सी को खींचते हैं, और यह दृश्य हमें सिखाता है कि भगवान की नजर में सब एक समान है।
1: हाँ बच्चों, तीनों रथ भी बहुत विशेष होते हैं। हर वर्ष नए रथ बनाए जाते हैं, कुशल कारीगर महीनों की मेहनत से इन्हें तैयार करते हैं। रंग बिरंगे कपड़ों, सुंदर नक्काशी और ध्वजों से सजे ये रथ बड़े ही मनमोहक लगते हैं।
0: बच्चों, इन रथों को बनाने में किसी लोहे का किल, कांटे या मशीन का उपयोग नहीं होता, बल्कि पारंपरिक जोड़ यानी कि लकड़ी की खुटियों से बनाया जाता है भगवान का यह रथ।
1: हाँ बच्चों, जब लाखों श्रद्धालु जय जगन्नाथ का जय घोष करते हुए रथ खींचते हैं तो पूरा वातावरण भक्ति और उत्साह से भर जाता है। ये दृश्य हमें एकता, सहयोग और सेवा को समझाता है।
0: बच्चों, हमारे शहर में ध्रुवा स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी खूब धूमधाम से मेला लगता है, जहां झूले, खिलौने, मिठाइयां और स्थानीय लोग बाजार में अपने सामान भी बनाते हैं और उसे सजाते हैं। और अगर मौका मिले तो इस बार रथ यात्रा को देखने आप जरूर जाइएगा और वहां से कुछ खरीदारी भी करिएगा, क्योंकि स्थानीय जो हमारे कलाकार होते हैं बहुत सारे सामान को बनाते हैं और अपनी मेहनत से वहां तक लाते भी हैं।
1: यानी कि वोकल फॉर लोकल को भी हमें आगे बढ़ाना है बच्चों, लेकिन कुछ सावधानियां भी साथ में हमें बरतनी है, क्योंकि रथ यात्रा के दौरान काफी भीड़ होती है। इसलिए अपने माता पिता के साथ जाएं, ज्यादा भीड़ वाले स्थान पर ना जाएं और अपने परिवार के साथ रहें या अपने परिवार के सदस्यों का मोबाइल नंबर अपने पास जरूर रखें।
0: बिल्कुल, और बड़ों के साथ रहें बच्चों। जैसा कि भैया ने कहा, मेले का आनंद लें पर किसी के साथ भेदभाव न करें, दूसरों की भी सहायता करें, साथ ही अपनी संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों का सम्मान करें। अच्छी बातों को जीवन में आत्मसात करना सीखें बच्चों।
1: तो बच्चों, हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें आपसे की और अब वक्त हो चला है आपको बाल गीत सुनवाने का, यानी कुछ मनोरंजन करवाने का। तो चलिए सुनते हैं ये बाल गीत।

0: वाह, गीत सुनकर सभी के चेहरे खिल उठे भैया। और अब बच्चों आपकी बारी है, आज आप सब क्या क्या सुनाएंगे हमें?
1: आज हमारे बच्चे तैयार होकर आए हैं दीदी, और वो तो कुछ न कुछ हमें जरूर सुनाएंगे, तो चलिए सुनते हैं उनके मुख से।
0: तो रेहान जी, आप सबसे पहले क्या सुनाएंगी?
2: मैं आनंद विश्वास द्वारा रचित गई पीछे मुड़कर कभी न देखो कविता सुनाने वाली हूँ।
0: सुनाइए।
2: पीछे मुड़कर कभी न देखो, आगे ही तुम बढ़ते जाना, उज्जवल कल है तुम्हें बनाना, वर्तमान ना व्यर्थ गवाना, संघर्ष आज तुमको करना है, मेहनत में तुमको खपना है, दिन और रात तुम्हारे अपने, कठिन परिश्रम में तपना है, फौलादी आशाएं लेकर तुम लक्ष्य प्राप्त करते जाना, पीछे मुड़कर कभी न देखो, आगे ही तुम बढ़ते जाना, आगे ही तुम बढ़ते जाना, झंझावाती प्रबल पवन हो तुमको कहीं नहीं रुकना है, बाधाएं हो सिर पर हावी फिर भी तुम्हें नहीं झुकना है, मन में दृढ़ विश्वास लिए संकल्प सिद्ध करते जाना, पीछे मुड़कर कभी न देखो, आगे ही तुम बढ़ते जाना, आगे ही तुम बढ़ते जाना, नदी

0: हैं, कल कल करती आगे बढ़ती, समय चक्र आगे ही बढ़ता, घड़ी कहाँ कब उल्टी चलती, पल पल बदल रहा है सब कुछ, संग समय के चलते जाना, पीछे मुड़कर कभी न देखो, आगे ही तुम बढ़ते जाना, आगे ही तुम बढ़ते जाना।
1: वाह, बहुत अच्छी कविता, आगे ही तुम बढ़ते जाना। आपका नाम क्या है बेटा?
2: मेरा नाम वंशिका है।
1: वंशिका, आप किस क्लास में पढ़ती हैं?
2: सातवीं कक्षा में।
1: सातवीं में, तो आज अपने दोस्तों को क्या सुनाएंगी?
2: आज मैं आप सभी को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत पराक्रमी और बहादुर है, वो है कर्ण। तो आइए सुनते हैं कहानी कर्ण की।
1: गुड।
2: पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ से, पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ से, तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीर में, सूरज का अंश होके फिर भी हूँ अछूत में, आर्यवर्त को जीत ले ऐसा हूँ सूतपूत में, कुंती पुत्र हूँ मगर न हूँ उसी को प्रिय मैं, कुंती पुत्र हूँ मगर न हूँ उसी को प्रिय मैं, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूँ क्षत्रिय मैं। आओ मैं बताऊं महाभारत के सारे पात्र ये, आओ मैं बताऊं महाभारत के सारे पात्र ये, भोले की सारी लीला थी, कृष्ण के हाथ सूत्र थे, बलशाली बताया जिसे सारे वो राजपुत्र थे, काबिल दिखाया बस लोगों को ऊंची गोत्र के, सोने को पिघला कर डाला सोन तेरी कंठ में, नीची जाति होके किया वेद का पठन तूने, यही था गुना तेरा, तू सारथी का अंश था, तू क्यों छिपे मेरे पीछे, मैं भी उसी का वंश था, ऊंच नीच किए जर व अहंकारी द्रोण था, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था, रथ पे सजाया कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को, ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जाति का, खुद से ही अनजान मैं ना घर का ना घाट का, इतिहास साक्ष्य है योद्धा में निपुण था, बस एक मजबूरी थी मैं वचनों का शौकीन था, अगर ना दिया होता वो वचन मैंने कुंती माता को, तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथों को, साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला मैं खाम खा बदनाम था, कौरवों से होके भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख बस कर्ण कर्ण ही बोलेगा, जाना जिसने मेरा दुख बस कर्ण कर्ण ही बोलेगा।
1: वाह, बहुत सुंदर कविता, और आपने बहुत ही सुंदर ढंग से उसको प्रस्तुत भी किया है। आपको पता है कर्ण कौन था?
2: हाँ, कर्ण कुंती माता और सूर्य देव का पुत्र था।
1: और कर्ण के और कौन से भाई, कौन कौन भाई थे?
2: कर्ण के भाई थे कौरव, पांडव।
1: और उनके पांच भाई, पांडव पांच भाई थे ना?
2: हाँ।
1: पांच भाई पांडव कौन कौन थे पता है?
2: हाँ।
1: बताइए।
2: अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर।
1: युधिष्ठिर सबसे बड़े थे।
2: हाँ।
1: लेकिन उनसे भी बड़े कौन थे? कर्ण। कर्ण बड़े थे ना?
2: हाँ।
1: तो आपकी कविता बहुत अच्छी थी। और कर्ण की कहानी जो है वो किस महाकाव्य में मिलती है?
2: महाभारत में।
1: महाभारत में, और महाभारत के रचनाकार कौन है? आपको तो पता है। कौन? वेदव्यास।
2: हाँ।
1: वेदव्यास थे। चलिए, तो आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई और बच्चों को ये कविता जरूर पसंद आई होगी। रेहांशी, आप कुछ और सुनाएंगी कविता? चलिए सुनाइए।
0: यह कविता समय के ऊपर है और इसका विषय समय है। समय का सबसे कहना है जीवन चलते रहना है, इसको मत बर्बाद करो, सदा काम की बात करो, फूल सदा मुस्काते हैं, हमको यह समझाते हैं, जीवन हंसते रहना है, दुख सुख भी सहना है, कर्म ही जिसकी रीत है, सत्य से जिसको प्रीत है, अंत में उसकी जीत है, समय ही उसका मीत है। धन्यवाद।
3: वाह, बहुत सुंदर कविता, और तुम क्या सुनाना चाहोगी?
2: आप सबको मैं एक कविता रथ यात्रा के ऊपर सुनाना चाहूंगी।
3: अपना नाम बताओ।
2: मेरा नाम वंशिका शांडिल्या है।
3: आज किस क्लास में पढ़ती हो?
2: मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ।
3: सुनाओ।
2: रथ यात्रा। रथ यात्रा का आया त्योहार, खुशियाँ लाया है अपार। जगन्नाथ जी का सुंदर रथ चल पड़ा पावन पथ। बलभद्र और सुभद्रा संग, गूंजे भक्ति के मधुर रंग। भक्त खींचे रथ की डोर, गूंजे जय जय चारों ओर। फूलों से सजा हर द्वार, गूंजे भक्ति का सत्कार। प्रेम शांति का दे संदेश, रथ यात्रा मिटाए हर कलेश।
3: अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: और चलिए, आपके एक और दोस्त हमारे साथ उपस्थित हैं, तो चलिए सुनते हैं उनकी कविता।
4: नमस्कार, मैं वेदांत राज। शब्दों की दुनिया में आज कुछ ऐसे एहसास लेकर आया हूँ जो सब सुने नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। प्रस्तुत है मेरी लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ। ख्वाब ऊंचे हैं तो उड़ान भी ऊंची रख, राह में मुश्किलें हैं तो मुस्कान भी ऊंची रख। मंजिल खुद कदम चूमेगी एक दिन, बस अपने हौसले की पहचान भी ऊंची रख। हम वो नहीं जो हालातों से हार जाएं, हम वो हैं जो तूफानों में भी राह बनाएं। मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, हम हर कदम पर अपने सपनों को सजाएं। दिए की तरह जलना सीखा है मैंने, अंधेरे से लड़ना सीखा है मैंने। लोग कहते हैं मंजिल बहुत दूर है, पर हर रोज थोड़ा थोड़ा चलना सीखा है मैंने। नजरों में मंजिल और दिल में जुनून रख, मुश्किलें लाख आए फिर भी सुकून रख। उड़ना है अगर आसमान की ऊंचाइयों तक, तो अपने हौसले पर यकीन रख। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा, धन्यवाद।
3: बच्चों के मुख से इतने मधुर मधुर बोली में कविताएं सुनकर भैया मन एकदम आनंदित हो गया। क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना भैया, बहुत होशियार हैं और होनहार हैं। मधुर शब्दों, सुंदर भावों और प्यारे संदेशों से हमारे दिल को इन्होंने जीत लिया।
1: बिल्कुल, और हमारे चेहरे पर भी मुस्कान इन्होंने बिखेर दी अपनी कविता सुना करके।
3: हाँ भैया, क्योंकि अच्छी कविता केवल सुनाई नहीं देती, बल्कि मन में लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ देती है। और आज की कविता भी कुछ ऐसी ही थी।
1: तो चलिए, बच्चों से कविता भी हमने सुन ली और बच्चों को हमने कुछ जानकारी भी दी है। लेकिन अभी हमारे पास और भी जानकारियां हैं, तो अगली जानकारी हम बच्चों को क्या देने वाले हैं दीदी?
3: बच्चों, हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है। जो बच्चे सपने देखते हैं और उसे पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, वही आगे चलकर दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा दीदी। बच्चों, आपने भी सपने देखे होंगे या देखते होंगे। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, वैज्ञानिक बनना चाहता है, और इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कलाकार भी बनना चाहते होंगे। तो बच्चों, सपने जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो आपके जीवन को दिशा देते हैं और आगे बढ़ने, सीखने और कुछ नया करने की प्रेरणा भी देते हैं।
3: बहुत सुंदर बात कही भैया ने बच्चों, क्योंकि बड़ा सपना देखने वाला ही बड़ी मंजिल तक पहुँचता है। इसलिए सपने देखने से कभी मत डरिए। चाहे आपका सपना बड़ा हो या छोटा, वह आपके जीवन को नई ऊर्जा देता है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने भी कभी न कभी एक सपना जरूर देखा था।
1: हाँ बच्चों, लेकिन केवल सपना ही नहीं देखा, बल्कि उसे पूरा करने के लिए लगातार मेहनत भी की। यदि रास्ते में कठिनाइयां आई तो उससे हार नहीं मानी, वे गिरकर भी उठे और आगे बढ़ते गए। यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है।
3: बच्चों याद रखिए, सपनों की राह में कभी कभी असफलता भी मिलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि सपना खत्म हो गया। असफलता आपको अपनी गलतियों से सीखने और पहले से बेहतर बनने का अवसर देती है।
1: हाँ बच्चों, एक बात और, सपनों को पूरा करने के लिए कुछ अच्छी आदतें भी जरूरी है। जैसे समय पर उठना, मन लगाकर पढ़ना, खेलना, अच्छी किताबें पढ़ना, शिक्षक और माता पिता का सम्मान करना तथा हमेशा सकारात्मक सोच रखना। ये छोटी छोटी आदतें हैं ना बच्चों, जो भविष्य की बड़ी सफलताओं की नींव बनती है।
3: बच्चों, अपने सपनों की तुलना किसी और के सपनों से मत कीजिए। सपने सबके अलग अलग होते हैं और सबकी प्रतिभाएं भी अलग अलग होती है। कोई बच्चा चित्रकला में अच्छा होता है तो कोई संगीत में, कोई खेल में तो कोई पढ़ाई में। सबकी बौद्धिक क्षमता भी एक समान नहीं होती, इसलिए अपने अंदर की विशेषता और रुचि को पहचानिए, फिर उसी दिशा में आगे बढ़िए बच्चों।
1: देखा ना बच्चों, बड़े सपने देखेंगे, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेंगे, असफलता से कभी नहीं डरेंगे
3: और सत्य का साथ देंगे
1: तो सपने जरूर पूरे होंगे। फिर आपका नाम पूरे परिवार में, समाज में, देश में और आपके विद्यालय में तो रोशन होगा ही।
3: बिल्कुल भैया, और हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। देखिएगा, वो हमारी बातों को मन लगाकर सुन रहे हैं। क्यों बच्चों, हमारी बात मानेंगे ना?

0: तो बच्चों सपने देखिए और उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत भी करना है। अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोना है, असफलता से नहीं डरना है और एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और दीदी कुछ और जानकारी की बातें हैं हमारे पास बच्चों के लिए?
1: हाँ हाँ भैया, क्योंकि हम हर सप्ताह बच्चों को कोई ना कोई प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, तो आज के हमारे प्रेरक व्यक्तित्व हैं अरुणा ए आसिफ अली।
0: बच्चों आज हम भारत की एक ऐसी वीरांगना के बारे में जानेंगे जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की वीरांगना और स्वतंत्रता आंदोलन की महान महिला कहा जाता है और उनका नाम था अरुणा आसिफ अली।
1: अरुणा आसिफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को कालका यानी कि जो वर्तमान में हरियाणा है उसमें हुआ था। उनका बचपन का नाम अरुणा गांगुली था। वे बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज, साहसी और देशभक्त थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक अध्यापिका के रूप में काम भी किया।
0: बच्चों जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था तब अरुणा जी ने देश को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया और कई बार जेल भी गईं। जेल में उन्होंने कैदियों के साथ हो रहे अन्याय का विरोध किया और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई।
1: बच्चों सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। उस समय अंग्रेज सरकार ने बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे कठिन समय में अरुणा आसिफ अली ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर पूरे देश में आजादी की नई उम्मीद जगा दी। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा याद की जाती है। इसके बाद वे कई वर्षों तक भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व भी करती रहीं और अंग्रेजों से कभी नहीं डरी।
0: बच्चों देश आजाद होने के बाद भी उन्होंने समाज सेवा का कार्य जारी रखा। वे महिलाओं की शिक्षा, बच्चों के विकास और समाज में समानता के लिए काम करती रहीं। वे दिल्ली की प्रथम महापौर यानी मेयर भी बनी। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और उनके निधन के बाद भारत सरकार ने उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी प्रदान किया।
1: बच्चों 29 जुलाई 1996 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनका साहस, देशभक्ति और त्याग आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है।
0: तो बच्चों उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि देश प्रेम सबसे बड़ा धर्म है।
1: बिल्कुल, और अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए।
0: कठिन परिस्थितियों में भी साहस और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए।
1: हाँ बच्चों, शिक्षा, ईमानदारी और सेवा का मार्ग जीवन को महान बनाता है। वीरों की गाथा याद रखें, देश का सदा सम्मान करें। अरुणा जी से सीख यही, साहस से हर काम करें।
0: तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अरुणा आसिफ अली के जीवन से प्रेरणा लेते हुए अपने देश, अपने राज्य और अपने समाज की सेवा में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और दीदी अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है तो बच्चों से हमें विदा लेनी होगी, लेकिन चलते चलते हम बच्चों को बता दें कि इस कार्यक्रम की जो प्रस्तुति थी वो गौरव कुमार पांडे की थी। तो बच्चों अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ कहानियों के साथ, कुछ कविताओं के साथ और कुछ अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति।
2: जय हिंद बच्चों।
3: हमारे बाल श्रोताओं को समर्पित कार्यक्रम बाल सभा यहीं संपन्न हुआ। प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की।

यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है और अब हाजिर है आज हमारी तीसरी सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी के साथ। दोस्तों, इस कार्यक्रम उपरांत के बाद 4:35 पर आप सुन सकेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ सरगम। 5:02 पर हम हाजिर होंगे युवाओं को समर्पित हमारे कार्यक्रम युवाणी के साथ। आज चर्चा

30 मिनट पर आज हम चर्चा करेंगे छोटा परिवार सुखी परिवार, और साथ ही साथ खोटा वार्ता में बातें होंगी खोटा गीतों में प्रकृति और पर्यावरण पर। प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की।

हिंदी साहित्यिक पत्रिका शद्दल का वक्त होगा शाम के 7:15। आज आप कविताएं सुनेंगे डॉक्टर माया प्रसाद से और कहानी होगी स्मिता की, प्रस्तुति स्वर प्रणव कुमार का और प्रस्तुति प्रभु शरण की होगी। 7:45 पर वक्त रहेगा संथाली समाचार पत्रिका का। और रात के 8 बजे से हम हाजिर होंगे 1 से 1 सुपरहिट नगमों के साथ कार्यक्रम रजनीगंधा के अंतर्गत। और 8:15 पर आप सुन सकेंगे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। रात्रि के 8:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा सुर्खियों में। और रात्रि के 9:30 पर आप सुनेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम अंग्रेजी में हमारे दिल्ली केंद्र से।

रात्रि के 10 बजे आप सुनेंगे रवि वार्षिक अखिल भारतीय संगीत सभा धारवाड़ के ए श्रेणी के कलाकार कुमार मकदूर का गायन आज आप सुनेंगे और रात्रि 11:10 पर हमारी मीडियम वेव पर आज की सभा समाप्त हो जाएगी।

दोस्तों, ये थे आज हमारी तीसरी सभा में प्रसारित किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में हम हाजिर होंगे फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सांझ सरगम के साथ।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आप सभी आवाज की दुनिया के दोस्तों का स्वागत है। सुपरहिट नगमों के कार्यक्रम सांझ सरगम में स्वीकार करें अपनी रेडियो हम सफर मौनिता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम का आगाज इस प्यारे से गीत के साथ।

दोस्तों, इसी प्यारे से गीत के साथ फिल्मी गीतियों का सफ़र यहीं समाप्त होता है। अतः आप अपनी रेडियो हम सफ़र मौनिता को आज्ञा दीजिए। दोस्तों, चलते चलते बस आपसे यही कहेंगे कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। अतः आप अपने समय का हर एक क्षण बहुत सोच समझ कर उपयोग करें। नमस्कार।

मीडियम वेव 546 5 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

0: यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने आज पंडरा थाना क्षेत्र के सामने स्थित खाली सरकारी भूमि का निरीक्षण किया। श्री सेठ ने बताया कि इस स्थान को विकसित कर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सम्मानजनक और स्थायी व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने की कोशिश की जा रही है। रांची विश्वविद्यालय के 67वें स्थापना दिवस समारोह का समापन प्रशासनिक भवन परिसर में हरित विधिका के तहत पौधारोपण के साथ हुआ। कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों और कर्मियों ने पौधारोपण किया। पाकुड़ जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न मतदाता केंद्रों पर डिजिटाइजेशन कैंप लगाए गए। कैंपों में गणना प्रपत्रों का वितरण, संग्रह और ऑनलाइन डिजिटाइजेशन किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अरविंद कुमार लाल सहित अन्य अधिकारियों ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया। खूंटी जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के एक हार्डकोर उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर एक देसी पिस्तल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा बस स्टैंड के पास से पुलिस ने करीब 1 किलो 95 ग्राम बेशकीमती पन्ना बरामद करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शुभम खंडेलवाल ने बताया कि बरामद पन्ना की अनुमानित कीमत करीब 1,50,00,000 रुपए के आसपास है। रांची के मुराहबादी में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से छात्र मैराथन का आयोजन किया गया। बापू वाटिका से शुरू हुए इस मैराथन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। मैराथन के समापन पर महिला और पुरुष वर्ग के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? हम उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही हमारे कार्यक्रम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आपके इंतज़ार की घड़ी समाप्त होती है क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।
1: जी हाँ दोस्तों, तो आप अपने चाय के कप के साथ रेडियो के करीब आ जाइए और हमारे कार्यक्रम का आनंद उठाइए। हम आपके साथ ढेरों सारी जानकारियां शेयर करेंगे और कुछ मज़ेदार गीतों का भी लुत्फ उठाएंगे।
0: बिल्कुल दोस्तों, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी अपनी दोस्त सना
1: और मैं हूं आपका दोस्त अस्मित।
0: हम दोनों की ओर से आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अगर हम आपसे एक सवाल पूछे कि सप्ताह का सबसे पसंदीदा दिन कौन सा है, तो शायद 10 में से 9 लोग बिना सोचे कहेंगे रविवार।
1: बिल्कुल, क्योंकि रविवार सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं होता, बल्कि यह दिन होता है थोड़ा सा आराम करने का, परिवार के साथ बैठने का, दोस्तों से मिलने का और सबसे ज़रूरी अपनी प्यारी यादों को फिर से जीने का।
0: बिल्कुल अस्मित। दोस्तों, आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में सोमवार से शनिवार तक हम सब अपने अपने काम, पढ़ाई, ऑफिस और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कई बार घर में रहते हुए भी अपने लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाते।
1: बिल्कुल, लेकिन रविवार जैसे कहता है बस अब थोड़ा रुकिए, अपने लोगों के साथ समय बिताइए। वैसे दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आपको भी बचपन वाले रविवार याद आते हैं?
0: अरे बिल्कुल याद आते होंगे। सुबह देर तक सोना, फिर घर में बनने वाला खास नाश्ता करना, टीवी पर कार्टून या फिल्म और शाम को दोस्तों के साथ गली में खेलना।
1: सही कहा, तब तस्वीरें कम खींची जाती थी लेकिन यादें हमेशा के लिए बस जाती थी।
0: और आज हर पल कैमरे में कैद हो जाता है, लेकिन कई बार हम उस पल को जीना ही भूल जाते हैं।
1: दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रविवार की, लेकिन जरा सोचिए, अगर रविवार भी सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल करते करते ही निकल जाए
0: तो क्या? फिर सोमवार आते आते लगता है कि छुट्टी तो मिली ही थी लेकिन जी नहीं पाए। इसलिए आज अपने मोबाइल को साइड करके अपनों को वक्त दीजिए। आपको पता है, परिवार के साथ वक्त गुजारने से तनाव कम होता है और मन भी खुश रहता है।
1: उम्मीद है कि इस रविवार आप सिर्फ आराम नहीं करेंगे बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और उन यादों से भी ज़रूर मिलेंगे जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा अस्मित। दोस्तों, अपनों के साथ बिताया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाता और जब कभी ज़िंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है तो यही यादें चेहरे पर मुस्कान ले आती है। इसीलिए इस रविवार कोशिश कीजिए कि मोबाइल पर कम और अपनों के साथ ज़्यादा वक्त बिताइए, क्योंकि आने वाले समय में यही छोटी छोटी यादें आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। दोस्तों, आज इंटरनेशनल डे ऑफ होप है जो हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है। लाइफ में होप का मतलब है अत्यंत गहरा और प्रेरणादायक। इसे अक्सर जीवन का ईंधन माना जाता है।
1: बिल्कुल सना, तो आज हम ऐसे ही एक नॉर्मल इंसान की बात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन के मुश्किल वक्त में आशा नहीं छोड़ी और लगे रहे यह सोचकर कि कड़ी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा।
0: कभी कभी लगता है ना अस्मित, बाकी लोगों को देखकर कि अब लाइफ में बहुत देर हो चुकी है और मैं बहुत पिछड़ गया हूँ, मेरे साथ वाले बहुत आगे निकल गए हैं, मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसा लगता है क्या?
1: हाँ सना, ऐसा तो ऑलमोस्ट 70% लोगों को लगता होगा। मगर अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है ना, तो दोस्तों ये कहानी आपके लिए है।
0: दोस्तों, जेमी वार्डी नाम के एक इंग्लिश फुटबॉलर एक मेडिकल सप्लाईज बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। 12 से 14 घंटे वहाँ काम करते थे, उसके बाद फुटबॉल खेलते थे क्योंकि जुनून था, खेलना था, उम्मीद थी। दुनिया उसको कहती थी, तुम मेडिकल सप्लाईज बनाते हो यार, क्यों सपने देख रहे हो, कैसे पहुँचोगे उस लेवल पर?
1: पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर ना एक टीम थी, लेस्टर सिटी, उन्होंने उसे साइन कर लिया। पर यह भी कोई बड़ी टीम नहीं थी, टॉप 20 टीम्स में भी नहीं आती थी, तो प्रीमियर लीग नहीं खेल रहे थे, उससे नीचे वाली एक लीग होती है वो खेल रहे थे।
0: दोस्तों, ही वॉज 29 जब पहली बार प्रीमियर लीग में खेलने का मौका मिला, पर वहाँ भी उनकी टीम अच्छी नहीं थी। पता है, प्रोबेबिलिटी लेस देन 1% थी उनकी टीम के प्रीमियर लीग जीतने की।
1: पर पता है क्या हुआ, जेमी वार्डी ने उस सीजन 11 मैचेस में लगातार गोल्स स्कोर किए और ये प्रीमियर लीग रिकॉर्ड है। किसी भी प्लेयर ने, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स खेले, किसी ने भी लगातार 11 मैचेस में स्कोर नहीं किया है।
0: और उस सीजन लेस्टर वॉन द प्रीमियर लीग और वो जो प्रोबेबिलिटी थी ना वो किसी इंसान की भूख उम्मीद और स्ट्रगल को फैक्टर इन नहीं कर पाए। जेमी वर्डी एक फैक्ट्री से निकलकर प्रीमियर लीग विनर बने, क्यों? क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। दोस्तों अब वक्त है एक ऐसे गीत का जो सालों बीत जाने के बाद भी लोगों के दिलों में उसी ताजगी के साथ बसा हुआ है। हम बात कर रहे हैं फिल्म रोज़ा जो 1992 में रिलीज़ हुआ था। इस फिल्म के मशहूर गीत दिल है छोटा सा की।
1: दोस्तों इस गीत को अपनी मधुर आवाज़ से सजाया है मिनमिनी ने, इसके खूबसूरत बोल लिखे हैं जाने माने गीतकार पीके मिश्रा ने और इसे अपनी यादगार धुनों से अमर बनाया है संगीत के जादूगर एआर रहमान ने।
0: और ख़ास बात यह है कि फिल्म एआर रहमान की पहली फिल्म थी बतौर संगीतकार और इसी फिल्म के संगीत ने उन्हें देश भर में एक अलग पहचान दिलाई।
1: इस गीत में एक ऐसे मन की बात है जो छोटी छोटी खुशियों में अपनी दुनिया देखता है लेकिन उसके सपने आसमान जितने बड़े हैं। यही वजह है कि यह गीत आज भी उम्मीद हौसले और नई शुरुआत की पहचान माना जाता है।
0: तो आइए अपनी छोटी सी आशाओं को एक नई उड़ान देते हैं और सुनते हैं फिल्म रोज़ा का ये सदाबहार गीत दिल है छोटा सा।

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
0: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
0: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: वाह, क्या ही खूबसूरत रचना है। यही तो एक अच्छे गीत की पहचान होती है कि वह समय के साथ पुराना नहीं पड़ता, बल्कि हर पीढ़ी को कुछ नया एहसास देता है।
2: बिल्कुल दोस्तों, यह सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि उम्मीद और सपनों का संदेश है। यह हमें बताता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है अपने सपनों पर विश्वास और मन में सकारात्मक सोच रखने की।
1: तो दोस्तों, अपनी छोटी सी आशाओं को कभी छोटा मत समझिए। यही छोटी उम्मीदें एक दिन बड़ी कामयाबियों का आधार बनती हैं।
2: बिल्कुल दोस्तों, अब बात करेंगे एक ऐसे गीत की जो अपनी सादगी और गहराई से सीधे दिल को छू जाता है।
1: हम बात कर रहे हैं फिल्म मासूम के बेहद खूबसूरत गीत दो नैना और एक कहानी की। इस गीत को अपने मधुर आवाज से सजाया है आरती मुखर्जी ने, इसके भावपूर्ण बोल लिखे हैं गुलजार साहब ने और इसकी मधुर धुन तैयार की है मशहूर संगीतकार आरडी बर्मन ने।
2: दोस्तों, इस गीत में दो आंखों के जरिए जिंदगी का एहसास, मासूमियत और अनकही भावनाओं को बहुत खूबसूरती से पिराया है। शायद यही वजह है कि इतने वर्षों बाद भी यह गीत लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए है।
1: तो आइए सुनते हैं फिल्म मासूम का ये बेहद ही खूबसूरत गीत।

0: वाह, कितनी खूबसूरती से ये गीत हमें ये एहसास दिलाता है कि कई बार आंखें वो बातें कह देती है जिन्हें शब्द भी नहीं कह पाते।
1: यही तो अच्छे संगीत की खासियत है ना, वह दिल को छू जाए और अपने पीछे ही खूबसूरत एहसास छोड़ जाए।
0: बिल्कुल दोस्तों, ज़िंदगी का सफ़र तब और भी खूबसूरत हो जाता है जब हमारे साथ चलने वाले लोग हमारे कदमों से कदम मिलाकर चले। साथ हो परिवार का, दोस्तों का या अपने किसी खास का, हर सफ़र आसान और यादगार बन जाता है।
1: और इसी खूबसूरत एहसास को बड़े ही सरल और मधुर अंदाज में बयां करता है हमारा अगला गीत। यह गीत है फिल्म बातों बातों में का उठे सबके कदम। इसे प्रेरणादायक बोल लिखे हैं अमित खन्ना ने, संगीत दिया है राजेश रोशन ने और अपनी मधुर आवाज़ों से इसे सजाया है लता मंगेशकर, अमित कुमार और पर्ल पद्मसी ने।
0: दोस्तों, इस गीत का संदेश बहुत प्यारा है। जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, खुशियां बांटते हैं और मुस्कुराते हैं तो हर मंजिल थोड़ी और आसान लगने लगती है। यही भावना इस गीत को आज भी हर उम्र के श्रोताओं के लिए दिल के करीब रखती है।
1: दिलचस्प बात यह है कि इस गीत के बोल

0: सिर्फ साथ चलने की बात नहीं करते, बल्कि ये भरोसा, अपनापन और एक दूसरे का संदेश भी देते हैं। आज के दौर में जब हर कोई अपनी अपनी भागदौड़ में व्यस्त है, ऐसे गीत हमें याद दिलाते हैं कि असली खुशी साथ चलने और साथ मुस्कुराने में है। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये सदाबहार गीत।
1: उठ सबके कदम, देखो रम पम पम, उठ सबके कदम, देखो रम पम।

0: दोस्तों, अक्सर हम पास्ट में किए गए गलत फैसलों के लिए खुद को कोसते हैं। हमें लगता है कि क्या हम में इतनी सी भी समझ नहीं थी।
1: लेकिन सच तो ये है कि उस वक्त हमारे पास जो जानकारी थी, जो अनुभव था, हमने उसी के आधार पर निर्णय लिया था। अब अगर आज हमें वह फैसला गलत लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आज हमारे पास बेहतर समझ है और जिसे हम गलती कह रहे हैं वह असल में हमारे सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा था।
0: वो कहते हैं ना दोस्तों कि ग्रोथ इज इनएविटेबल। तो जब हमें अपने पुराने फैसलों पर शर्म महसूस होती है तो यह संकेत है कि आपने ग्रो किया है।
1: हम दूसरों को माफ करना तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन खुद के प्रति कठोर हो जाते हैं। हो सकता है कि आप गलत नहीं थे, बस आप दुनिया को देख रहे थे और समझ रहे थे। वह अनुभव, वह एक्सपीरियंस चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, आज आपकी मैच्योरिटी का आधार है।
0: बिल्कुल ठीक कहा तुमने सना। तो आप अपने पास्ट सेल्फ को एक छोटे बच्चे की तरह देखें जो अभी चलना सीख रहा है। अगर वह बच्चा गिर जाता है तो क्या आप उसे डांटेंगे? नहीं, आप उसे उठने में मदद करेंगे।
1: और ये याद रखिए दोस्तों कि आप तब भी अपना बेस्ट दे रहे थे और आज भी दे रहे हैं।
0: दोस्तों, जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अक्सर अपने बीते कल की गलतियों के बोझ को अपने कंधों पर ढोते हैं, लेकिन यह याद रखिए कि जो बीत गया वह केवल एक सबक था। आज आप जो भी है उस पर गर्व कीजिए, क्योंकि आपने हर मुश्किल से सीखा है और हर अनुभव से निखरे हैं।
1: तो दोस्तों, मुस्कुराते रहिए और खुद के प्रति दयालु बनिए, क्योंकि ये जीवन सीखने और संवरने का एक खूबसूरत सिलसिला है। इसी विचार के साथ दीजिए अपनी दोस्त सना
0: और अस्मित
1: को इजाजत। नमस्कार।

0: जिसके बदले हमें ऑक्सीजन मिलती है और श्वास संबंधी जो बीमारियां होती है उसे बचाव भी होता है।
1: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। और पर्यावरण पृथ्वी के सभी जीवों की रक्षा करती है, सिर्फ मनुष्य के नहीं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं
0: बिल्कुल
1: उनकी भी रक्षा करती है। प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है।
0: महिमा, आप जानती हैं कि तापमान नियंत्रित करने, प्राकृतिक आपदा से सूखा, बाढ़, गर्मी जैसी समस्याओं को कम भी करती है। सबसे बड़ी बात है कि जैव विविधता का संरक्षण भी करती है।
1: इसके लिए ही तो कहा जाता है कि पर्यावरण हमारी सुरक्षा कवच है।
0: बिल्कुल, और सुरक्षा कवच को मजबूत बनाने के लिए हमें उसको बचाना भी जरूरी है।
1: बहुत बड़ी बात कही आपने कि सुरक्षा कवच को मजबूत बनाने के लिए उसको बचाना भी जरूरी है। साथियों, जिस तरह पर्यावरण की सुरक्षा करने से हमें हमारी सुरक्षा होती है, उसी तरह जब आप आर्थिक रूप से सुरक्षित होंगे तभी तो अपने परिवार के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर पाएंगे।
0: महिमा, हमारे जो श्रमिक साथी है ना, वो आर्थिक प्रगति की धुरी हैं।
1: बिल्कुल,
0: वे अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार भी हैं। उनकी मेहनत, हिम्मत और दृढ़ इच्छा शक्ति से उत्पादकता में वृद्धि होती है। उनके श्रम बल से देश की जीडीपी में उन्नति भी होती है।
1: हमारे साथी तो रात दिन मेहनत करते हैं। अभी बारिश का समय है, बारिश में भी हमारे जो साथी वो मेहनत करते हैं, खून पसीने से ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, विनिर्माण करते हैं, जिसके कारण भारत की आर्थिक उन्नति होती है।
0: जब स्मार्ट सिटीज का निर्माण होता है तो उसमें भी हमारे साथी अपनी मेहनत के बल पर विकास को आगे बढ़ाते हैं। श्रमिकों को जब कार्य मिलता है और उसकी उचित मजदूरी भी मिलती है तो उनकी क्रय शक्ति ही बढ़ती है। इससे बाजार में वस्तुओं की मांग उत्पन्न होती है जो पूरी अर्थव्यवस्था को गति देती है।
1: और हमारे देश में श्रमिकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना, वो असंगठित क्षेत्र से जुड़ा होता
0: बिल्कुल
1: है।
0: सही,
1: वे भी हर दिन मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं।
0: श्रमिक देश के मजबूत आधार हैं। उनके रुक जाने से उत्पादन रुक जाता है, विकास भी रुक जाता है। इसीलिए ही तो सरकार भी इनके लिए कई योजनाओं को बनाती है। उनके लिए ई श्रम पोर्टल भी बनाया गया है। इनके कौशल विकास को और अपग्रेड करने के लिए कई प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, हमारे साथी आर्थिक पहिए को घुमाने वाले साथी होते हैं। वे एक तरफ अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं तो दूसरी ओर देश के निर्माण में अपना योगदान भी देते हैं। देश की समृद्धि की वे एक कहानी लिखते हैं, मजबूत कहानी लिखते हैं। इसलिए तो उनका सम्मान बिल्कुल जरूरी है।
0: बिल्कुल, और सम्मान के साथ उनका मनोरंजन भी जरूरी है। इसीलिए तो यह कार्यक्रम हमारे साथियों का पसंदीदा भी है, क्योंकि यह जानकारी के साथ मनोरंजन भी करता है। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: पता है महिमा, आज के बदलते दौर में रोजगार केवल नौकरी तक सीमित नहीं रह गया है। लोग अपनी योग्यता, कौशल, संसाधनों का उपयोग करके खुद का और परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, और जो हमारे साथी होते हैं ना, वो अपने जीवन की आवश्यकता को पूरी तो करते ही है, परिवार के भी भरण पोषण को करते हैं। और आप सोच सकते हैं कि आज के समय में अपने परिवार का भरण पोषण करना बहुत ही मुश्किल होता है, एकदम चुनौती भरा होता है।
0: बिल्कुल महिमा, हमारे श्रमिक साथी जो है परिवार के भरण पोषण के लिए मौसम किसी भी तरह का हो, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, निश्चित समय पर घर से निकलते हैं कार्य को करने के लिए, और वहाँ पर यानी कार्यस्थल पर जैसा भी माहौल हो, जैसा भी वातावरण हो, वे कार्य को करते हैं। चाहे वो गर्मी में पसीना बहाने की बातें हो, बरसात में भींग कर काम करने की बातें हो, या फिर ठंड के मौसम में कांपते हुए काम करते हैं। काम तो करना है, जो श्रम नहीं करेंगे तो फिर आमदनी कैसे होगी, और आमदनी नहीं होगी तो घर परिवार को कैसे चलाएंगे।
1: और बहुत बार तो हमारे साथी ऐसे होते हैं जो वो भूखे पेट घर से निकलते हैं और कार्यस्थल में काम करते हैं, और वो अपने साथ में जो वो दिन भर कमाते हैं उसको अपने साथ घर में लेके जाते हैं कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को कुछ तो दे दे। इतने मेहनती होते हैं हमारे श्रमिक साथी,
0: यही तो स्वावलंबन है। और आज के समय में तो लोग खुद का रोजगार करके अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं और दूसरों को रोजगार भी दे रहे हैं और भारत की आर्थिक उन्नति भी कर रहे हैं। महिमा, कहते हैं ना कि जब रोजगार को हम शुरू करते हैं ना, तो खुद आत्मनिर्भर नहीं बनते हैं बल्कि कई लोगों को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाते हैं। चूँकि कार्य जब हम शुरू करते हैं तो सिर्फ अपना ही नहीं होता है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी होता है। जो बच्चे होते हैं, जो देखते हैं, सीखते हैं, उस कार्य से जुड़ते भी हैं और उसको संभालते भी आगे ले भी जाते हैं। और कई लोग जो इस कार्य को मिलकर के आगे बढ़ाते हैं, उन्हें भी सीख मिलती है, वे मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, और कुछ दिनों के

0: बाद जब ये इस कार्य में निपुण हो जाते हैं तो कई लोग तो अपना कार्य भी शुरू कर देते हैं और
1: बिल्कुल
0: फिर वे आगे बढ़ते हैं, कई लोगों को प्रशिक्षित करते हैं।
1: जी। मेरी जान पहचान में ऐसी एक दीदी है जो पहले कुछ नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने अंदर की जो योग्यता है, कौशल, उसको पहचाना, तो उन्होंने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। और आज मैं देख पा रही हूँ कि वो खुद अपने पैरों में खड़ी है और दूसरों को भी वो रोजगार दे रही है।
0: बिल्कुल, जब कोई भी व्यक्ति छोटा व्यवसाय करता है, कुटीर उद्योग, कृषि आधारित कार्य, चाहे वह हस्तशिल्प हो
1: जी
0: या सेवा क्षेत्र में हो, अपना कार्य शुरू करता है ना, तो वह न केवल अपनी आजीविका कमाता है पर इसके माध्यम
1: माध्यम
0: भी
1: बनता
0: बनता
1: है
0: है
1: जी।
0: और दूसरों को रोजगार देता है। ये तो कार्य कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, जिस कार्य में रुचि हो और थोड़ा अनुभव हो उस कार्य को शुरू करनी चाहिए और
1: बिल्कुल
0: कोशिश होनी चाहिए उस कार्य को अपनी पूंजी या पारिवारिक सहयोग से कार्य को छोटे पैमाने पर शुरू करें। और जब कार्य आगे बढ़ता है तो फिर कई वित्तीय संस्थान हैं, बैंक है, जहाँ से कि हम ऋण लेकर कार्य को आगे बढ़ाते हैं। महिमा, कहते हैं ना कि शुरू में आप देखते हैं कि एक बीज होता है और बीज को
1: बिल्कुल
0: हम बोते हैं, फिर धीरे धीरे पौधा बनता है
1: जी
0: और फिर एक विशाल वृक्ष में परिणत हो जाता है। तो कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, वक्त छोटा होता है,
1: जी
0: समय के साथ कार्य को शुरू करना चाहिए और मेहनत लगन से इसे आगे बढ़ाना चाहिए। निश्चित सफलता मिलती है और आगे बढ़ता है कार्य में।
1: बिल्कुल। और सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है कि जो अपने अंदर के आत्मविश्वास है उसको बनाए रखने के लिए, और जो आत्मविश्वास होता है वह स्वरोजगार के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि विपरीत परिस्थिति आ जाती है, लोग रोजगार करते हैं, लोग अपना उद्योग शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही हानि उठानी पड़ती है। वैसे समय में लोग अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, मेहनत करते रहे, तो उन्हें सफलता भी मिलेगी और वो एक मिसाल के रूप में, हमारे समाज में मिसाल के रूप में वो काम करेंगे।
0: महिमा, जीवन में तो उतार चढ़ाव आता ही रहता है और कार्य जब शुरू करते हैं तो यह कोई जरूरी नहीं है कि सफलता तुरंत मिल ही
1: जी
0: जाए। कई बार परीक्षाएं भी होती हैं और उस परीक्षा में सफल भी होना है और उसके लिए लगे रहना जरूरी होता है। और जब हम लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं ना, तो फिर सफलता निश्चित मिलती है।
1: बिल्कुल। और स्वरोजगार से स्वावलंबन तो होता ही है, क्योंकि भारत जो देश है वह स्वरोजगार, वहाँ पर स्वरोजगार की बहुत संभावना है। जो हमारे युवा है, महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, वो खुद का रोजगार शुरू करते हैं, और छोटी उद्योग और पारंपरिक कला कौशल का क्षेत्र भी साथियों को बहुत रोजगार देता है। हमारे भारत की जो पारंपरिक कला है वो तो पूरे विश्व में ही श्रेष्ठ है।
0: बिल्कुल, जो हमारे क्षेत्र की जो संस्कृति है, पारंपरिक जो कला है, उसे तो कुटीर और लघु उद्योग ही जीवित रख पाए हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं वो कुटीर और लघु उद्योग को शुरू करके अपनी संस्कृति को, परंपरा को वो बचाते भी हैं और अपना जीविका भी चलाते हैं।
1: बिल्कुल। आज के समय में तो डिजिटल युग में
0: बिल्कुल
1: जो हमारे साथी हैं वो स्वरोजगार कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपना जो कला है या फिर जो वो उद्योग है उनको वो मार्केटिंग भी कर रहे हैं, और ना सिर्फ हमारे लोकल क्षेत्र तक, भारत तक ही, पूरे विदेश में
0: बिल्कुल
1: पूरा
0: बिल्कुल
1: जी।
0: बिल्कुल
1: और इसी विषय पर जैसे हम लोगों ने बात किया स्वावलंबन के बारे में, स्वरोजगार के बारे में, तो ऐसे ही आप लोगों को सुनाते हैं एक भेंट वार्ता। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, जिसमें भेंट वार्ताकार है मोहम्मद साजिद परवेज और भेंट करता है योगेश्वर राम।
2: आज हमारे साथ हैं उद्योग विभाग के डीआरपी, जिला संसाधन व्यक्ति सह प्रखंड उद्यमी समन्वयक मोहम्मद साजिद परवेज जी। आज हम इनसे जानेंगे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के बारे में। साजिद सर, आपको मेरा नमस्कार।
3: शुक्रिया आपका।
2: साजिद सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना जो चलाई जा रही है,
3: जी।
2: इस योजना का उद्देश्य क्या है और इस योजना में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, किन के लिए यह योजना है?
3: यह योजना भारत सरकार की ही योजना है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना।
2: जी।
3: इस योजना का उद्देश्य मेन उद्देश्य है की फूडिंग रिलेटेड यूनिट्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना।
2: जी।
3: इस योजना में ऐसे ही युवक युवतियाँ जो अनएम्प्लॉयड है और अपने कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, तो चाहे वो फूडिंग में आपका अचार पापड़ तेल मिल दाल मिल घी उद्योग मसाला उद्योग इस तरह का जो भी फूडिंग रिलेटेड यूनिट्स वो अगर लगा

0: करना चाहते हैं ना
1: जी,
0: तो इस स्कीम के में वो अप्लाई कर सकते हैं
1: जी जी।
0: इस स्कीम का मेन मकसद है कि लोगों को ज्यादा ज्यादा जोड़ना, उनको इसमें 35% सब्सिडी भी मशीन में मिल जाएगा
1: जी जी। तो ये भारत सरकार की जो योजना है ये कब शुरू की गई थी और क्या अभी इसका आप सफलता देख पाए हैं?
0: ये स्कीम में 1 ईयर बैक में इसको स्टार्टिंग किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा
1: जी।
0: एक आईएल योजना धीरे धीरे दरअसल कर भी किया है और ये एक्सपैंड भी कर रहा है, लोगों का रुझान भी है, इंटरेस्टेड भी है। अगर किसी को पूंजी का अभाव है, कैपिटल नहीं है, तो वो इसमें आराम से अप्लाई करके अपना उद्यमी चला सकते हैं, वो उद्योग लगा सकते हैं। जैसे आप छोटे यूनिट से लेकर के आप 30,000 से मशीन से लेकर के आप 1 करोड़ तक भी इसमें मशीन ले सकते हैं आप इसमें
1: जी,
0: ठीक है। और इसमें ये सब्सिडी जो है 35% ये फॉर ऑल है, ये एसटी एससी ओबीसी जनरल कोई भी रहे तो
1: अच्छा,
0: इसमें 35% सब्सिडी मिल जाएगा।
1: नहीं, सामान्य वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको भी इस अनुदान का लाभ मिलेगा?
0: हाँ, इसमें मिल जाएगा। रूरल एरिया के हैं या फिर अर्बन एरिया के
1: जी,
0: तो उनको भी ये 35% सब्सिडी मिल जाएगा। वो टर्म लोन में मिलेगा। टर्म लोन में 5 दिए जाते हैं,
1: जैसे
0: किसी का लैंड है और वो खुला छत है, शेड नहीं है तो वो शेड भी लगा सकते हैं, उसमें भी 35% सब्सिडी है। फर्नीचर चाहिए रेकुक लगाने के लिए तो वो उसमें भी 35% सब्सिडी हो जाएगा। मशीन चाहिए तो मशीन में 35% सब्सिडी। प्री ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी 35% सब्सिडी में जाएगा। और कंटीजेंसी कॉस्ट है उसमें भी 35% सब्सिडी। ये सारा मिलाकर के टर्म लोन कहलाता है ये,
1: बिल्कुल।
0: और इसमें 35% सब्सिडी वो हो जाएगा
1: जी जी।
0: और उनका जहाँ खाता है, जहाँ उनका बैंक अकाउंट है, वहीं
1: हाँ,
0: उनका अप्लाई किया जाएगा
1: जी। तो इसमें आवेदन करने की प्रक्रिया में क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है और ये कहाँ जाएंगे?
0: ये आवेदन के लिए सिंपल है, सभी के लिए मुझे उम्मीद है कि सबके पास ही ये रहता होगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड। राशन कार्ड अगर नहीं है तो वो गैस बिल दे सकते हैं, गैस बिल नहीं तो फिर टेलीफोन बिल भी दे सकते हैं, ठीक है
1: जी।
0: इसके अलावा वो मशीन का कोटेशन देना होगा, उनको अनिवार्य है। और अगर इंडिया से कहीं भी वो कोटेशन बना सकते हैं, जहाँ उन्हें मशीन पसंद है वहाँ से आप कोटेशन ले लीजिए। और 2 बैंक का पासबुक चाहिए, क्योंकि अगर पहला बैंक में हम लोग अप्लाई करते हैं और अप्लाई अगर वो कर दिए, अगर वो अगर रिजेक्ट कर दिए किसी कारण बैंक की तरफ से, वो ऑटोमेटिक फिर वो क्या सेकंड बैंक को चल जाता है
1: जी।
0: इसमें 2 ऑप्शन हो जाता है, या तो पहला बैंक करते हैं या फिर दूसरा बैंक उसका प्रपोजल को, प्रस्ताव को पारित कर
1: जी जी जी।
0: तो ये 5 चीज हम लोग को चाहिए मिनिमम
1: जी।
0: और उसको अप्लाई करने के लिए वो मुझे उसको मेरे ही पास आना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही उनको अप्लाई करूंगा। वो जहाँ पर लोकेशन वो यूनिट लगाना चाह रहे हैं, मैं वहाँ पर जाऊंगा, उनके लोकेशन को जियो टैग करूंगा और अप्लाई भी कर दूंगा, सारा कुछ उनका सहयोग भी कर दूंगा।
1: कि अगर
0: और इसके लिए कोई भी खर्च करने की जरूरत नहीं है उनको
1: जी।
0: अप्लाई करना, DPR बनाना, बैंक में कुछ प्रॉब्लम हो रहा तो बैंक में जाना, ये सारा कुछ हम लोग के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि उनको हेल्प करना एप्लीकेंट को
1: जी। साजी सर, योजना तो बहुत अच्छी है और बहुत से युवा है जो कि बेरोजगार है और इस योजना का लाभ लेकर के ये स्वरोजगार करेंगे और आत्मनिर्भर बन सकेंगे, लेकिन अभी भी जागरूकता का काफी अभाव है, तो लोग जागरूक हों इसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं?
0: इसके लिए सर हम लोग ब्लॉक लेवल पे भी कैंप लगा रहे हैं, ब्लॉक लेवल में, पंचायत लेवल में, गाँव के लेवल में भी मुखिया से शुरू मीटिंग करके कैंप लगा रहे हैं
1: जी।
0: और शहरी क्षेत्र में जैसे अभी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा जो अभी चल रही है रिसेंटली
1: जी, हाँ जी हाँ,
0: इसमें भी हम लोग कैंप लगा करके लोगों को जागरूकता कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि आप कैसे योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। शहरी क्षेत्र में वार्ड एरिया आते हैं नगर निगम के, हम लोग वहाँ भी कैंप लगा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप उसका फायदा कैसे उठाएं। तो अगर बेरोजगार है, चाहे वो SHG ग्रुप रहे, इंडिविजुअल है, या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ये सभी को हम लोग बता रहे हैं कि आप कैसे इनका फायदा उठा सकते हैं। तो अवेयर आराम से हो जा रहे हैं उनको, और ये हम लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, सेंसनिंग भी हो रहा है और वो अपना यूनिट को सेटअप भी कर रहे हैं आराम से
1: जी।
0: अभी प्रॉब्लम नहीं आ रहा
1: जी। तो अभी सबसे ज्यादा रुझान क्या देख रहे हैं, कि जो युवा बेरोजगार हैं वे इससे और आ रहे हैं, या जो समूह के ग्रुप की महिलाएं वे आ रही हैं?
0: मैक्सिमम जो अगर देखा जा रहा है तो SHG भी आ रहे हैं, लेकिन अगर कंपेयर करें तो इंडिविजुअल ज्यादा ही आ रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें है कि जो अगर फ्रेश यूनिट लगाना चाह रहे हैं, न्यू यूनिट एकदम, जिनको अगर नया तरह से करना चाह रहे हैं वो भी अप्लाई कर रहे हैं, जिनका पहले से ऑलरेडी उनका फूडिंग रिलेटेड यूनिट चल रहा है
1: तो
0: वो भी अपने बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से दोनों यूनिट मैक्सिमम आ रहे हैं। SHG भी आ रहे हैं, SHG में महिलाएं बहुत सारी हैं जो सक्षम काम कर रही है, वो जैसे मुढ़ी का उत्पादन कर रही है, बहुत सारी महिलाएं जो ब्लॉक जबर नामकुम में भी आटा का काम कर रही है, कुछ जेल का निर्माण काम कर रही है, तो उन लोगों को भी हम बता रहे हैं। और इस तरह से वो बात भी रही है, बात हो रही है।
1: अरे नए कोई उद्योग स्थापित करना

0: चाहते हैं या कोई अन्य उद्योग संचालित है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं तो उसके लिए भी लाभ उठा सकते हैं
1: जी। वो अगर पहले से भी एग्जिस्टिंग है, न्यू यूनिट लगाना चाह रही है फिर एग्जिस्टिंग है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं
0: जी।
1: इसमें मैक्सिमम अप टू 1 करोड़ तक का इसमें लोन है इंडिविजुअल के लिए
0: जी,
1: और 35% सब्सिडी है
0: जी।
1: तो इसमें जब उनको और अपने उसको भी 10% अपना भी ऑन कंट्रीब्यूशन होता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही गाइडलाइंस है कि 10% मिनिमम लाभुक को भी अपना लगाना पड़ता है। जब उसका लोन पास हो जाएगा ना तो जब मशीन लेने से पहले भी 10% उसको भी अपना अपने बैंक खाते में देना हो तो इधर उधर नहीं जाना है, अपने ही बैंक खाते में 90% फाइनेंस करती है बैंक
0: जी।
1: ठीक है, तो इस तरह से वो काम कर सकते हैं
0: जी। अभी तक जो जागरूकता अभियान चलाए गए हैं उसके हम सफलता की बात करें तो क्या आप देख रहे हैं कितने परसेंट लोग जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं?
1: सबसे ज्यादा तो ये दोनों ही रूरल एरिया में भी लोग आ रहे हैं, जैसे भी रूरल एरिया में जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि आटा चक्की में ज्यादा लोग रुझान करते हैं, आटा चक्की, धान का भी सीजन है तो धान मिल के राइस मिल का भी खोलना चाह रहे हैं लोग, उसमें भी लोग इंटरेस्टेड है। अर्बन एरिया में कोई मसाला उद्योग में भी जा रहे हैं, कोई ऑयल मिल के लिए भी जा रहे हैं, तो एक मिला जुला है जो फूडिंग में सब लोग अभी मोटा मोटी जा रहे हैं इस काम को करने के लिए। आटा चक्की, तेल मिल, दाल मिल में भी मैंने अप्लाई करवाया है, उसमें भी बहुत सारे इंटरेस्टेड है उसे दिखला रहे हैं। तो मिला जुला असर है, बहुत सारे कैंडिडेट है जो पशु आहार जो गाय के चोकर कर बनते हैं ना
0: जी जी
1: उसमें भी अप्लाई करवाए हैं। तो ये मोटा मोटी काम करके करना चाह रहे हैं, युवक हो या फिर युवतियां हो, बहुत सारे लोग हैं जो अचार में भी अपना योगदान देना चाह रहे हैं, अचार में हो गया, पापड़ बनाना चाह रहे हैं, मूंग पापड़, तो देखने को मिल रहा है।
0: तो प्रखंड समन्वयक होने के नाते लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा युवा जो बेरोजगार हैं इस क्षेत्र में आए?
1: मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सारे जो युवक जो अनएम्प्लॉयड है तो इस क्षेत्र में आइए, सरकार का बहुत ही सुनहरा मौसम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है कि इसका लाभ उठाए, क्योंकि इसमें सब्सिडी है 35% और ये चीजें मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा ही जो दिया जा रहा है। इसमें पूंजी का अभाव है तो आप पूंजी के लिए आप इसमें क्षेत्र में आए और अप्लाई करने के लिए आपको इधर उधर नहीं जाना है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और सारा अप्लाई करना, सारा कुछ बैंक में सहयोग करना, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सारा वो हम लोग हेल्प करते हैं, इसलिए कोई उनको चार्जेस नहीं लगेगा। तो आप घर में भी यूनिट लगा सकते हैं, कहीं अगर रेंटेड है तो रेंटेड में ही आप अपना यूनिट लगा सकते हैं, अपना घर है तो अपना लैंड में भी लगा सकते हैं, कहीं भी आप लगा सकते हैं
0: जी।
1: इसके लिए आपको कहीं भी इधर भटकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर नहीं जाना, किसी बिचौलिया के भी पीछे नहीं पड़ना है, डायरेक्ट आप रातू रोड उद्योग विभाग में आप आ सकते हैं
0: जी। मोहम्मद साजिद परवेज जी, आपने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से संबंधित बहुत ही अच्छी जानकारी दी और मुझे उम्मीद है कि जो युवा बेरोजगार है इस योजना का लाभ उठाएंगे जी। इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के बारे में और जानकारी दे रहे थे मोहम्मद साजिद परवेज और उनसे बातें की थी योगेश्वर राम ने।
3: साथियों, जब आप में कुछ करने का जज्बा होता है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, इसके लिए आपको सकारात्मक सोच को जीवन में शामिल करना जरूरी है।
2: बिल्कुल, और इसके साथ साथ आशा भी रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप आशा करते हैं तो आनंदित होते हैं और उसी आनंद से भर कर अपने कार्यों को करते हैं। और आज तो अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस भी है, इस दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए बस यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी में सकारात्मक सोच और आशा की किरण के साथ आगे बढ़े, सफलता जरूर मिलेगी।
3: बिल्कुल, और इसी संदेश के साथ हम सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: श्रेय मित्रों, इसी गीत के साथ वक्त हो चला है आप सभी से आज्ञा लेने का। इसी कार्यक्रम में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए अपने मित्र योगेश्वर
1: और महिमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुने प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दावा किया है कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालु मंदिर की व्यवस्थाओं और पूजा पद्धति से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि संभावित सीईओ की भूमिका और अधिकार तय करना ट्रस्ट का विषय है। वहीं कथित चढ़ावा गबन के आरोपों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रांची के पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय ने ट्रस्ट की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने आज पंडरा थाना के सामने स्थित खाली सरकारी भूमि का निरीक्षण किया। श्री सेठ ने बताया कि इस स्थान को विकसित कर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सम्मानजनक और स्थायी व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने की कोशिश की जा रही है। झारखंड में स्वर्ण व्यवसायियों के खिलाफ बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चिंता जताई है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर श्री मरांडी ने गोड्डा और गुमला जिले में हाल की लूट की घटनाओं का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार पर सुरक्षा देने में विफल रहने का आरोप लगाया है। रांची विश्वविद्यालय के 67वें स्थापना दिवस समारोह का समापन प्रशासनिक भवन परिसर में हरित विधिका के तहत पौधारोपण के साथ हुआ। कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों और कर्मियों ने पौधारोपण किया। खूंटी जिले से पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के एक हार्डकोर उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर एक देशी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में आज जापान कराटे एसोसिएशन JKA इंडिया झारखंड की ओर से कराटे प्रशिक्षण शिविर सह ब्लैक बेल्ट डिप्लोमा परीक्षा का आयोजन किया गया। शिविर में चाईबासा सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लगभग 150 कराटे खिलाड़ियों ने भाग लेकर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त किया और ब्लैक बेल्ट डिप्लोमा परीक्षा में हिस्सा लिया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जय जवान जय किसान खेती बाड़ी कार्यक्रम सुनो या सो भाई बहन मन के सुषमा बहन बटले जोहार और निशिते रौर के हूँ जोहार
1: जोहार जोहार बहन और सुनवाइया सो भाई बहन के रौर मनक रेडियो संगी बहन निशि कर भी बहुत जोहार है। और बहन देखो आसरा करीला की सबक हाल खबर एकदम नगद नगद होवी है नहीं?
0: हाँ बहन एकदम नगद होवे के भी चाहिए। और देखो बहन एखन सबका हाल खबर नगद नहीं होवी तो देखो हमरे किसान भाई बहन मन की और एखन रोपा डोभा कर बेरा भी आ जाए है बरसात कर मौसम चले के लागे और ऐसे में सबका जीव सवांग भी बेस होवे बहुत जरूरी
1: बहुत जरूरी है। और देखो बहन बेस रहब हमरे तो कामों में मन लगी है नहीं? और मेहनत बेरा यदि हमरे कर जीव सवांग खराब रही तले कामों नहीं हमरे बढ़िया से करे पारब सेले हमरे सब गृहिणी मनक जिम्मेदारी होवेला हमरे जे भी घर परिवार संभड़ाइला से मनक बहुत बड़का जिम्मेवारी है कि ई बरसात कर बेरा में छवा मनक ध्यान रखूँ और बड़ बुजुर्ग मनक भी बहुत बढ़िया से ध्यान रखूँ और देखूँ कि संगे संगे अपन जीव सवांग कर भी ध्यान रखो तबे तो हमरे सब काम के बढ़िया तरी कर सकब है नहीं?
0: हाँ बहन देखो ये तो रहे हमरे अपन घर परिवार कर और अपन जीव सवांग कर ख्याल रखे कर और इकर सत्य देखो हमरे खेती बाड़ी करवाइया भाई बहन मन है कि तो हमरे के अपन फसल कर भी अपन जीव सवांग तरी ख्याल रखे कर
1: बिल्कुल
0: काले की बेरा बिन बेरा हमरे मने हर घड़ी अपन खेती पर निर्भर करीला उकर से अपन भरण पोषण करीला चाहे और भी अपन घर परिवार के चलाए कर भी उपरे पर निर्भर रहेला तो ऐसन में अगर हमरे मन कोनो फसल लगा ही और वो फसल में के कोनो नुकसान हो जाते तो हमरे के उकर से बहुत बड़का
1: नुकसान
0: हो सकेला।
1: हाँ, बिल्कुल तो ये खातिर हमरे के जरूरी है कि जे भी फसल हमरे लगा थी वो फसल कर हमरे के बीमा कराए बहुत जरूरी
0: हाँ,
1: है।
0: बहन हाँ। तो अगर हमरे मने अपन फसल कर बीमा करा थी कहब तो हमरे फसल बीमा योजना से जुड़ के हमरे मन जे भी अपन फसल में होवे वाला बर्बादी कर हमरे मन मुनाफा कमा सकेला।
1: बिल्कुल बिल्कुल और रौरे बहुत बढ़िया बात कहली बहन और इकर ले देखो कि हमरे के फसल बीमा योजना से जुड़ी हुई और फसल बीमा योजना भारत सरकार बटले किसान मनकर प्राकृतिक आपदा चाहे कीड़ा और बीमारी से यदि फसल खराब हो जाए तो उनकर से सुरक्षा हमरे के भेटायला बीमा से है नी?
0: तो इ लखे हमरे मने कोनो भी खेती चाहे

0: अपन फसल उपजायला तो हमरे के फसल बीमा योजना से जुड़े के चाहिए। एकर से हमरे आज के होवे वाला कोनो भी अपन फसल में बर्बादी कर जितने भी हमरे के घाटा होएला ओके हमरे कर फसल बीमा योजना बट से हमरे के उनकर मुनाफा मिल सकेला
1: भरपाई
0: मिल सकेला। हाँ बहन,
1: हाँ तो देखो किसान भाई बहन मन, रौरे फसल बीमा योजना कर लाभ जरूर उठाओ और ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक मन में जाके पता करो।
0: हाँ बहन, और सबसे मेन बात है कि ये योजना से जुड़े के लिए हमरे के बगरा परेशानी भी नहीं होवेला।
1: बिल्कुल,
0: काले कि अपन मोबाइले संगे आजकल तो घर घर में सबकर जगह मोबाइल भी रहेला, तो इकर से भी एगो ऐप भी बनल है। वो ऐप में अपन रजिस्ट्रेशन आदमी करवा सके ना और अपन फसल में होवे वाला जे भी नुकसान है ओकर जानकारी दे के योजना से जुड़ सके ना।
1: बिल्कुल, जागरूक किसान बनू भाई रौरे और अपन भी बढ़िया से देखभाल करू, संगे फसल कर भी बढ़िया से देखभाल करू बहन हमरे।
0: हाँ, आगे जानकारी करो मुदा ओकर से आगे हमरे मने कुछ रिझ रंग भी करीला और सुनीला नागपुरी लोकगीत चिके गा है शहबुद्दीन अंसारी और संगी मन।
1: आओ
2: हाय बिरे।

0: बड़ा नगद गीत रहलक बहिन, एकदम गोटा मन रिझाए गेलक।
1: हाँ बहिन, और ये गीत के गाय रहे शहबुद्दीन अंसारी और संगीमन, तो लगे हमरे और भी कोनो जानकारी करब बहिन।
0: बिल्कुल, और आज हमरे जानकारी करब जैव कीट नाशक द्वारा सब्जी एवं फल कर कीट प्रबंधन से संबंधित जानकारी, और इनकर बारे में बताते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति प्रिया, और इनकर से भेंट कर हैं कृष्ण जीवन पौराणिक।
2: किसान साथियों नमस्कार। लगातार अंधाधुंध रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग से कई समस्याएं सामने आ रही हैं। कीटों में प्रतिरोधकता विकसित हो रही है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, मित्र कीट नष्ट हो रहे हैं, तथा फलों और सब्जियों में कीटनाशकों के अवशेष भी पाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यकता है ऐसे विकल्पों की जो प्रभावी होने के साथ साथ सुरक्षित, सस्ते और पर्यावरण के भी अनुकूल हों। प्राकृतिक रूप से तैयार जैव कीटनाशक इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण विकल्प है। जैसे नीम है, करंज है, धुथरा है, गोमूत्र तथा अन्य स्थानीय संसाधनों से तैयार कीटनाशक न केवल कीटों का प्रभावी प्रबंधन करते हैं बल्कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज हम इसी प्राकृतिक रूप से तैयार जैव कीटनाशकों के द्वारा सब्जी एवं फल फसलों में कीट प्रबंधन किस प्रकार की जाए, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीति प्रिया, सहायक प्राध्यापक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। डॉक्टर प्रीति, आपको नमस्कार है।
3: जी नमस्कार।
2: आप हमारे श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि जैव कीटनाशक क्या है।
3: जी सबसे पहले सभी किसान भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। देखिए, जो जैव कीटनाशक होते हैं वो जीवित सूक्ष्म जीव, पौधों या प्राकृतिक पदार्थों से बनाए जाते हैं।
2: जी।
3: ये हानिकारक कीट को नियंत्रित करते हैं, लेकिन जो हमारे मित्र कीट होते हैं उनको और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, फल एवं सब्जी फसलों किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन इन फसलों में विभिन्न प्रकार के कीट जैसे माहू, सफेद मक्खी, थ्रिप्स, फल मक्खी तथा फल एवं तना छेदक कीट किसानों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन कीटों के नियंत्रण के लिए हम अक्सर क्या करते हैं, रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, जिससे कि कीटों में प्रतिरोधकता विकसित हो रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहे हैं, हमारे मित्र कीट नष्ट हो रहे हैं तथा फलों और सब्जियों में कीटनाशकों के अवशेष भी पाए जा रहे हैं।
2: जी, तो इन कीटों की समस्या क्यों बढ़ रही है?
3: देखिए, कीटों की समस्या बढ़ने के कोई एक कारण नहीं है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे बहुत अधिक रासायनिक खेती करना, एक ही फसल को बार बार उगाना जिसे कि हम मोनोक्रॉपिंग भी कहते हैं, प्राकृतिक जो शत्रु कीट हैं उनकी

0: कमी होना, मौसम में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है तो इसका एक रीज़न यह भी है। इन सभी रीज़न से क्या होते हैं कि कीट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और उससे दवाओं का असर भी कम हो जाता है।
1: जी डॉक्टर प्रीति, आपने जैव कीटनाशकों के महत्व के बारे में तो बताया, हमारे किसान श्रोता यह जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाने वाले प्रमुख जैव कीटनाशक कौन कौन से हैं तथा किसान उन्हें अपने घर या खेत पर किस प्रकार तैयार कर सकते
0: हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्राकृतिक रूप से तैयार जो जैविक कीटनाशक होते हैं उनमें बीजामृत जिसे कि सीड ट्रीटमेंट सॉल्यूशन कहते हैं, जीवामृत जिसे कि लिक्विड माइक्रोबियल बूस्टर भी कहते हैं, इसके अलावा घन जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, दसपर्णी अर्क तथा नीम आधारित उत्पाद जैसे नीमामृत प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म जीवों पर आधारित जैव कीटनाशकों में बैसिलस थुरिंजेंसिस जिसे बीटी कहते हैं, ब्यूवेरिया बेसियाना, मेटारिजियम एनिसोपोल तथा वर्टिसिलियम लेकानी जैसे जैव एजेंट भी महत्वपूर्ण हैं। और ये जो जीवामृत और बीजामृत की मैंने जो बात की तो ये पौधे को मजबूत भी बनाते हैं, कीटों को तो नियंत्रित करते ही हैं और साथ ही पौधों को भी मजबूत बनाते हैं।
1: जी तो अभी आपने बीजामृत की चर्चा की तो यह बीजामृत कैसे बनता है वे हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: देखिए किसान भाइयों और बहनों, बीजामृत को आप बीज का पहला टीका या सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं।
1: जी
0: जैसे हम देखते हैं ना कि माता पिता अपने बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए क्या करते हैं, समय पर टीका लगवाते हैं, तो वैसे ही बीज को खेत में बोने से पहले बीजामृत से उपचार किया जाता है। तो इससे भी क्या होता है कि बीज को शुरुआती रोग कीट जो होते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, उनसे बचाव मिलता है और अंकुरण भी अच्छा होता है। तो मैं आपको इसे बनाने का तरीका बताती हूँ कि इसके लिए हमें क्या करना है कि 5 किलोग्राम गाय का ताज़ा गोबर लेना है, साथ ही 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम चूना और 1 मुट्ठी खेत की मिट्टी ले लें, फिर साथ ही 20 लीटर पानी भी ले लें। सबसे पहले पानी को किसी प्लास्टिक के ड्रम या बाल्टी में लें। अब उसमें गोबर को अच्छी तरह घोल दें ताकि गुठली ना रहे। इसके बाद गौमूत्र मिलाएं और साथ ही उसमें थोड़ा चूना भी डालें। अंत में खेत की मिट्टी डालकर पूरे घोल को लकड़ी की डंडी से अच्छी तरह से मिला लें। फिर इसे छाया में 24 घंटे ढक कर रख दें और बुआई से पहले बीज को इस घोल में 10 मिनट तक डुबो कर रखें। इसकी मात्रा है 5 से 10 लीटर प्रति क्विंटल बीज। इसी हिसाब से आप सीड को ट्रीट करें, फिर बीज को छाया में सुखाकर उसके बाद इसकी बुआई करें और इससे आपको बहुत तरह के फायदे मिलेंगे। जैसे सब्जी फसलों में जैसे कि टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी और गोभी की बुआई या नर्सरी तैयार करते समय बीजामृत से आप बीज उपचार करें, इससे आपको अंकुरण अच्छा मिलेगा और शुरुआती जो फफूंद रोग होते हैं, कीट लगते हैं, वो भी कम होते हैं। साथ ही पौधे मजबूत बनते हैं और आगे चलकर कीट रोग का प्रकोप भी कम दिखाई देगा। फलदार फसलों में जब नर्सरी के पौधे तैयार किए जाते हैं या पौधरोपण किया जाता है तब बीजामृत या उसके घोल से जड़ों का उपचार करने पर पौधे जल्दी स्थापित होते हैं और जड़ सड़न जैसी समस्याएं कम होती है।
1: जी तो अभी आपने बीजामृत के बारे में बताया, अब आगे हमारे किसान भाइयों को जीवामृत के बारे में बताएं कि वे कैसे बनता है।
0: जी किसान भाइयों और बहनों, देखिए जीवामृत को लिक्विड माइक्रोबियल बूस्टर भी कहते हैं और आप जीवामृत को मिट्टी का पौष्टिक सूप या टॉनिक कह सकते हैं। जैसे हम ताकत बढ़ाने के लिए पौष्टिक भोजन खाते हैं, वैसे ही मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीव जीवामृत से सक्रिय होकर पौधों को पोषण उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। इसके लिए आप 10 किलोग्राम गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलोग्राम गुड़, 2 किलोग्राम बेसन या दाल का आटा, साथ ही 1 मुट्ठी खेत की मिट्टी, 200 लीटर पानी, ड्रम में पानी लें और उसमें गोबर अच्छी तरह से घोल दें। अब गौमूत्र मिलाएं, इसके बाद गुड़ और बेसन डालकर अच्छे से मिलाएं ताकि सब अच्छी तरह घुल जाएं। अंत में मिट्टी डालें और लकड़ी से घोलें। ड्रम को ढककर छाया में 48 घंटे तक रखें तथा दिन में 2 से 3 बार लकड़ी की डंडी से अच्छी तरह हिलाएं। इसकी प्रयोग की मैं मात्रा बता देती हूँ, 10 से 20 लीटर जीवामृत को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ प्रयोग करें। इसे सिंचाई के पानी के साथ दिया जा सकता है अथवा पौधों की जड़ों के पास ड्रेंचिंग के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रयोग प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर करने पर इसका लाभ आपको अवश्य दिखाई देगा। सब्जी फसलों में नियमित रूप से जीवामृत के उपयोग से मिट्टी में जो लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी सक्रियता

0: बढ़ती है, जिससे पौधों की वृद्धि तेज होती है, फूल एवं फल अधिक बनते हैं तथा पौधों की कीट एवं रोग सहन करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। फलदार वृक्षों जैसे आम, अमरूद एवं नींबू में जीवामृत को सिंचाई के साथ जड़ों के पास देने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, नई जड़ों का विकास बेहतर होता है तथा फल धारण में भी सुधार होता है।
1: जी, तो अभी आपने बात की जीवामृत कैसे बनता है इसके बारे में, अब हमारे किसान भाइयों को बताएं कि नीमामृत क्या है और ये कैसे बनता है।
0: जी देखिए, जो मैंने अभी चर्चा की बीजामृत और जीवामृत की, तो ये पौधों को मजबूत बनाने में ज़्यादा सहायक होते हैं, और अगर पौधे हमारे मजबूत होंगे तो स्वाभाविक है कि कीट की समस्या कम आएगी। और ये जो नीमामृत है और इसके अलावा ब्रह्मास्त्र है, नीमामृत, ब्रह्मास्त्र, दसपर्णी अर्क, ये सभी खासकर कीट की समस्या को कम करते हैं, ये कीटों पे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नीमामृत को हम कैसे बनाएं। तो इसके लिए 5 किलोग्राम नीम की पत्ती या बीज, 5 लीटर गौमूत्र, 50 लीटर पानी तथा नीम की पत्तियों को कूटकर पानी में डालें। अब गौमूत्र मिलाएं और 24 से 48 घंटे छाया में सड़ने दें, फिर कपड़े से छान लें, पानी में मिलाकर 7 से 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। सब्जी फसलों में माहू, जिसे हम लोग एफिड बोलते हैं, सफ़ेद मक्की, थ्रिप्स और इल्ली जैसे कीट बहुत कम नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। नीमामृत का नियमित छिड़काव इन कीटों की संख्या कम करता है और अंडा देने की क्षमता भी घटाता है, पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। फलदार फसलों में भी नीमामृत का उपयोग चूसक कीटों और कुछ रोगों को कम करने में सहायक होता है, जिससे फल स्वस्थ रहते हैं और रासायनिक दवाओं की जरूरत भी घटती है।
1: जी, तो अभी आपने नीमामृत के साथ साथ ब्रह्मास्त्र की भी चर्चा की, तो ये ब्रह्मास्त्र कैसे बनता है?
0: ब्रह्मास्त्र को बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे नीम, धतूरा, करंज, अरंडी, आक आदि की पत्तियाँ, सब मिलाकर आप 5 किलोग्राम का कर लें। उसके बाद आप 10 लीटर गौमूत्र, 10 लीटर पानी ले लें, सभी पत्तियों को पीस लें, इन्हें गौमूत्र और पानी में डालकर उबालें, ठंडा होने पर छानकर बोतल में भर लें, पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करें। जब सब्जी फसलों में फल छेदक या तना छेदक जैसे कीट अधिक बढ़ जाते हैं, तब ब्रह्मास्त्र का छिड़काव प्रभावी नियंत्रण देता है। यह एक मजबूत देसी कीटनाशक है जो विभिन्न प्रकार की इल्ली और चूसक कीटों पर असर करता है। फलदार फसलों में भी गंभीर कीट प्रकोप होने पर इसका उपयोग सुरक्षित विकल्प के रूप में किया जा सकता है। किसान भाइयों और बहनों, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये सभी बहुत ही कारगर होते हैं।
1: तो अभी आपने ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया, अब थोड़ा सा किसान भाइयों को दसपर्णी अर्क कैसे बनता है इसके बारे में बता दें।
0: जी देखिए, नाम से ही है दसपर्णी अर्क, मतलब कि यहाँ पे हम 10 प्रकार की पत्तियों को लेते हैं।
1: जी।
0: 10 प्रकार की पत्तियों में आप नीम, करंज, अरंडी, धतूरा, आक, पपीता, अमरूद आदि की पत्तियाँ आप ले लें, 10 प्रकार की पत्तियाँ होती हैं, और इसके साथ ही आप गौमूत्र और पानी ले लें। सभी पत्तियाँ को काटकर ड्रम में डाला जाता है, गौमूत्र और पानी मिलाकर 15 से 20 दिन तक सड़ने दिया जाता है, फिर छानकर उपयोग करें। सब्जी फसलों में नियमित रूप से दसपर्णी अर्क का छिड़काव करने से कीट दूर रहते हैं और रोगों का प्रकोप भी कम होता है, यह रोकथाम के लिए बहुत अच्छा घोल माना जाता है। फलदार फसलों में इसका छिड़काव पौधों की समग्र सुरक्षा बढ़ाता है और पर्यावरण के अनुकूल संरक्षण देता है। पौधों को मजबूत बनाने वाले में से जीवामृत, बीजामृत तथा कीट भगाने वाले नीमामृत, ब्रह्मास्त्र और दसपर्णी अर्क हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया।
1: जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रीति प्रिया, आपने हमारे किसान भाइयों को प्राकृतिक रूप से तैयार जैव कीटनाशकों द्वारा सब्जी एवं फल फसलों में कीट प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नमस्कार।
0: जी नमस्कार,
2: बहुत बेस जानकारी रहे, एखन हमारे मन जानकारी करत रही जैव कीटनाशक बटले सब्जी और फल में कीट प्रबंधन,
3: और बड़ा नगद जानकारी रहे बहिन, काले कि आजकल देखो हमरे खाली रासायनिक खाद कर व्यवहार कर चलते मिट्टी कर उर्वरा शक्ति खत्म होते जाते हैं, नहीं तो इस जानकारी बड़ा नगद रहे, काले कि जैव तरीका से, जैविक तरीका से बीज मनक उपचार और माटी कर गुणवत्ता काले के हमरे बढ़ाव से कर बारे में जानकारी दिले, तो ये बड़ा नगद जानकारी रहे और आगे रोरे भी कोनो लगत है बहुत बढ़िया जोगाड़ी लाइन ही।
2: हाँ बहन तो चलो हमरे मने सुने के लाए गो नगपुरी गीत जेके गाहे मेघनाथ मातो और संगीवन।

0: बड़ा नगद गीत रहे इकरे साथे खेती बारी कर कार्यक्रम ही सिरायला और शुरू होवेला हमारी दुनिया कार्यक्रम।
1: तो सुन भैया सब हमारे भाई बहन के एक था फिर से हमरे करीला
0: जोहार।
1: तो देखो भाई बहन आज देखो कि हमरे बहुत नगद दिन बिताली है नी।
0: हाँ
1: और देखो हमर माझे हमर बहुत संगी साथी मन आए हैं तो हमरे के तो बहुत बढ़िया बुझाते है नी।
0: हाँ बहन और ऐसन सब कर साथे मिलजुल के बड़ा नगद लगेला और मन में और का फुर्तीला बढ़ जाएला।
1: बिल्कुल बहुत देखो बहन अब
0: तो बहन हमरे देखो हमरे देश में चाहे हमरे गांव घर में सबकर घरे एगो परिवार रहेला।
1: बिल्कुल
0: तो हमरे परिवार में अगर सब भाई बहन मने रहिला साथे अगर छोट परिवार हमरे कर होवी तो और बड़ा नगद होवी बहन।
1: बिल्कुल
0: कहली कि छोट परिवार एगो ऐसन परिवार होवेला जे कि हर तरह से ओके बेस खान पान मिलेला साथे पढ़ाई लिखाई ले या और भी चीज में बढ़िया सब चीज कर साधन मिलेला।
1: देखो बहन हमरे शुरू से हमरे जानीला और ई एगो मानल बात भी है के कि छोट परिवार सुखी परिवार
0: हाँ
1: होवेला। काले कि छोट परिवार में संसाधन बगरा भेटायला माय बाप के जोगाड़ी बढ़िया मिलेला कि कातिर अपन छुआ पुता के परवरिश कर माध्यम से बेहतर तरीका से सब चीज हमरे देवेक पारब से बहुत बढ़िया तरीका
0: हाँ
1: से माय बाप मन करेना उनकर शिक्षा दीक्षा कर ध्यान रखेना उमनक जे भी खाए पिए चीज रही से के बहुत बढ़िया तरीका से देवेक सकेना। काले कि अगर बड़का परिवार रही तो बड़का परिवार में देखो सब चीज विभाजित हो जाएला।
0: हाँ बहन नगद खाली रहे।
1: हाँ।
0: और देखो ऐसा भी होवेला कि माय बाप जे बगरा छुआ मन रहे ना तो बगरा आदमी के मन बगरा बेरा भी नहीं दे सके ना।
1: बिल्कुल
0: अगर छोट परिवार है और एक से दो इगो छुआ है तो उनके माय बाप भी उमन से बढ़िया समय बिता सके ना साथे बढ़िया बेरा भी दे सके ना। ऐसा में उमन कर मन में भावनात्मक सहायता भी मिलेला
1: भावनात्मक लगाव
0: भी जुड़ेल
1: है नी। और गुणवत्ता सब चीज गुणवत्ता कर भेटाला छोट परिवार में है नी। तो हमरे आगे और भी गोटिया बहिन और करीला चलू तब नागपुरी गीत बटले।
0: हाँ
1: और रौरे काजो गाड़ी लाइन ही तब
0: तो हमरे मन सुनब नागपुरी लोकगीत चिके गा है देवदास विश्वकर्मा और संगी मन
1: चलो।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हाँ तो वहीन देखो, एखन बरसात कर मौसम है और बरसात में तो देखबे करेला हर घड़ी पानी आते रहेला।
2: बिल्कुल।
1: मुदा पानी आए के जाने तने ने उन्हें बोहाक लाई घे बिना वजह कर पानी, तो ये सब पानी के हमरे मने बोहाक नहीं दे के हमरे मन सोखता गढ़ा मन में रखब, तो हमरे ले बहुत बढ़िया बरखा कर पानी कर बचाए कर एगो सहूलियत हो जाए और वर्षा जल संरक्षण का है ना जे हो जाए।
2: बिल्कुल। और यह जे जल संरक्षित हुए लानी बहिन से हमरे कर जल स्तर के बढ़ाए के लिए बहुत बड़का काम करेला, से के हमरे कहिला कि एक तरह से हमरे रिचार्ज करे करती इके। हाँ तो ई पानी जे जल स्तर के बनाए के रखेला, ई जब भी हमरे
1: कुआं चाहे बोरिंग कोड़ीला तो हमरे के पानी बढ़िया भेटा जाएला,
2: बढ़िया भेटाएला।
1: और देखो हमरे मन ने बरसात में जे पानी होवेला वो एने उने बोहाए जाले, जेकर से आदमी मन के भी दिक्कत होवेला, साथे डहर चलवाइया और भी मवेशी मने हैं सभी के कहब तो परेशानी होवेला। और देखल जाए बहिन की एखन हमरे देखिला कि एखनो ऐसन बहुत जगह गांव घर है जहां आदमी मन एखनो बूंद बूंद पानी ले तरस जाए।
2: बिल्कुल।
1: ऐसन में हमरे के बरखा कर पानी कर बचाए के रखे बहुत जरूरी है,
2: मतलब उचित तौर तरीका से वर्षा जल के संरक्षित करे बहुत जरूरी है, ताकि आवे वाला समय में भी जब हमरे कोनो परेशानी से गुजरब तो वो परेशानी में हमरे के ई बहुत बड़का सहायता करे।
1: जरूर बहन।
2: बिल्कुल।
1: तो देखो हमरे तो बातचीत करब तो बात तो कहियो नहीं सिराई बहिन, ढेर दिन बाद भेटाइयो जाएला
2: एकदम,
1: मुदा हमरे मन के और भी जानकारी करे है, तो चलो सुनीला खोरठा वार्ता जेके जन

0: कार्य जे है खोरठा गीत और प्राकृतिक पर्यावरण जे के जानकारी दे हैं महेंद्रनाथ गोस्वामी।
1: तो चलू
0: चलू
1: सुनील।
2: जखन ई धरती में भेल तखनी से लोकें चांद सूरज बद्री पानी नदी पहाड़क संगे सब गाछ वृक्ष के प्राकृतिक रूपे शक्ति मान के उ सब के पूजा पासा आराधना प्रार्थना शुरू करला। तकरे संगे पर्यावरण के धरती संगे जबर नाता गोता बुझ के एगो रिश्ता डोराए जकरा सत्ताई के बांध रखला उ सब लगथिन धरती के गाछ वृक्ष लता पते सब। हमनिक गोटे देशक लोकें पर्यावरण के लेता रहे आदिकाल से ही गाछ पात मोनबदार के महत्म जानल हत और कोनो न कोनो रूपे उ सब के ऊपर अपन श्रद्धा भाव रखल हत। बोर पीपर जामुन बेल नीम आरो हेन तेन गाछक ऊपर सावित्री ब्रह्मा गणेश भोलानाथ दुर्गा लखेक ढेर देवी देवताक निवास मान के उखनिक पूजा करेक रिवाजो देखा है। कर्मा पर में कर्म गाछक मानदान तो बिहाक नेगे और सभी पूजा पासक समय आम गाछक महत्म देखा है। ऋतुराज बसंत के अगवानी रूप में परास और सरे फूलक मान देखा है। खास करके झारखंड ने तो सरे के बोन हिंक संस्कृति के संगे जुटल है और उ सबसे बड़ चिन्ह लगे। तकरे संगे भारतीय संस्कृति के मुख्य आधार गंवैया संस्कृति लगे और हियाँ गांव सभी नाम के विश्लेषण कर लें बेसी करके गाछ पालक नाम के जोर मार देखा है। पर्यावरण विज्ञानी सभी मत से धरती से गाछ पात बोन झार उजारे कामे ग्लोबल वार्मिंग के जोरन दे है और इटा ग्रीन हाउस गैस हरित गृह प्रभाव के बढ़वे के एगो विशेष कारक लगे। एखन उष्ण कटिबंधीय वन उन्मूलन दुनिया के 20% ग्रीन हाउस गैस पसारे के खातिर जिम्मेवार लगे और हवा पानी में बदलाव माने फेर बदल खातिर इंट्रो गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के हिसाब से खास करके उष्ण कटिबंधीय इलाका सब में बोन उजारे से एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े के तेसरा और बोर्ड भाग के जिम्मेवार लगे। हियाँ मानुसें ढेर समय से ही जाने हैं जे गाछ पात काट लें बोन बदार उजार लें पर्यावरण के नाश होवे है और ई ढेर लखे मानुष समाज के गिरावट केरो कारण लगे। कहे ने गाछ वृक्ष वातावरण में पसरल खराब हवा के साफ करके पर्यावरण के बेस रखे है। बरसा के समय बरसा हवा के अटकवे है टेके है जकर चलते बेसी पानी बरसक आशा रहे है। माने गाछ वृक्ष सब समय सूधे मानुष्यक नहीं मैंने सब जीव जंतु के सब समय उपकार करल है करते है आर करते रहते। हमनिक देश मौसम और ऋतु के लता रहे ढेर समृद्ध है। हियाँ पैत बच्छर पारी पारी से छः गो ऋतु अपन विशेषता के संगे आवे है और मानुषिक जनजीवन ऊपर अपन खास खास असर छोड़ के फिर घूर जाए। कई बेर तो ई ऋतु सबके ढेर माने अपन प्रति अपन अति प्रभाव से मानुषिक खातिर झंझट देखाए लगे है और लोकें कोनो बेर गर्मी के लहरल ताप से तो कोनो बेर ढेर बेर बरसाए नाम्भल बाढ़ के हड़पा से ओकरा गरीबों करत। लेकिन प्रकृति अपन एगो नियम बनाए रखल है काहे ने यह सब मौसम के चरित्र धरती के जिये लायक सभे के बचाए रखे जुकुर बनवे है। यदि ऐसा ना हतल चाहे ना हवे तो पर्यावरण के संतुलन बनाए जीते। स्वास्थ्य जनरल लेसेंट के एगो सर्वे रिपोर्ट के हिसाब है प्रदूषण के पर्यावरण बेड़ा चलते आज 2 बच्छर आगू माने 2015 में सुधे भारत में 25 लाख लोग बीमारी से मरल हत जटा गोटे दुनिया में पर्यावरण बेड़ा चलते प्रदूषण से मरे वाला कुल 90 लाख लोग 28% लगे। ई रिपोर्ट के हिसाब में ई देश में 18,10,000 लोग सुधे वायु प्रदूषण से और 6,40,000 लोग पानी के प्रदूषण से पर्यावरण बेड़ा चलते ही भेल है। झारखंड में प्रकृति अपन सभी रंग के खोल के देखवे है। प्रकृति अपन बीचे सभी कुछ हवेटा अपन विधायन तय कर रखल है ठान रखल है से ले मानुषक ओकर संगे कूचा कूची कभू ना करे चाहिए। कहे ने यदि प्रकृति राय रुस जीते तो मानुषक अस्तित्व के खतरा भई जीते। से लेल पर्यावरण के बचाए रखे के लेल संकल्प ले।

क्या प्रकृति के बचवेक चेठा करे चाहिए। झारखंड एक प्रकृति और पर्यावरण से जुटल ढेर ढेर पर्व त्यौहार सब ऐसा देखा है जे सब ई मानव सभ्यता संस्कृति और पर्यावरण के बीसिक हार्ड लगे। हिंक संस्कृति में पर्यावरण के बेस राखे के लेल प्राचीन काल से ही ध्यान दिल गया है। प्रकृति के बीचे हवा पानी माटी गाछ पात जीव जंतु और मानुष के एगो संतुलन देखा है जे हमनिक अस्तित्व के गोड़ी लगे। सच कहल जाए तो एखन के आधुनिक मानुष के प्रकृति के देल सबले बेसी दामी धन संपत्ति पर्यावरण लगे। धरती के गाछ वृक्ष सब जहाँ एक बटन धरती के उलंग नहीं हवे दे है और उ सब समय सबके अपन फल फोर आठी चौका छाल पतई और जैर मोबाइल सबसे दवाई के रूप में काम आवे है हुए पर्यावरण के संभाल रखे काम है। इस सब के महत्तम है पर्यावरण के सिरे खोरठा लोक संस्कृति प्रकृति के संज्ञा रूप में देखल जाए है। हरियर हरियर गाछ पात से भोरल पूरल बोनेक धरती टुंगरी पहाड़ नदी झरना सब प्रकृति रूप में पर्यावरण के संगी लागत। सैले खोरठा संस्कृति में चांद सूरज गाछ बोन नदी जोरिया हेन तेन के देवी देवता के रूप में आराधना प्रार्थना करल जाए करल गेल है। सैले खोरठा के लोकगीतवन में करमा सोहराय बौड़ी सरहुल लखे गीतक संगे बिहा छठी सभी गीतवन में प्रकृति संगे जोरनार देखा है। हिया हरियर हरियर बोन बाजार के बीचे घूर बुले वाला ढेर लखे पशु पाखी लगस्तार बोहते रह वाला दामोदर बराकर जमुनिया सकरी अजय मौराक्षी लखे नदियन आर पारसनाथ चुटुपालू लुगु झिनगा मुहदी खरगास सुंदर पहरी लखेक छोट बोट पहाड़ आर टुंगरी सभी मिल के प्रकृतिक लतारे लोकगीत सृजन के कारण बनल है। इस सब गीतवन के देखले सुनले ही बुझला है जे इ प्रकृति एकर संस्कृति लगे। खोरठा क्षेत्र झारखंड के उत्तरी सियाड़ी के रखवैया और पहरादार लगे और इ गोटे क्षेत्र में पसरल खोरठा के लोकगीतवन में प्रकृति के दूत वाहक रूप फूल सभी संगे बसंत ऋतु जोरनार कोयले डाक लतपात मेंजूर के नाच हेन तेन के वर्णन देखा है। जैसे झिंगफुलिया के ई गीते देखा बेरिया जे डूबी गेल झिंगा फूल फूटी गेल गाथू पिया झिंगा फूल खोपा में लगाया हो खोपा में लगाई पिया भेली समतूल हो चला जी बैब नाचे पिया रिझे ही आबे आकूल हो। आर भदरिया के झुमर गीते कोन पतई लंबा लंबा कोन पतई चीरा रे कोन पतई हरियार फोरे गोले गोल रे। एकर उत्तर में आम पतई लंबा लंबा तेतर पतई चीरा रे लेम्बो पतई हरियार फोले गोले गोल रे। आर दूसरो गीते हाय रे पनिया डबरल जाए पनिया डबरल जाए इदहक मछरी उदहे चली जाए रे पनिया डबरल जाए अरे दहक भीतर लागल नाच मलक मारे पोठी माछ मागुर मीरी मातल मर दंगिया के संगे रे बस पोता मुरली बजाए हरे पनिया डबरल जाए। एकरे संगे आर भी ढेर लखे खे जैसे छोटा नाग पूरक धरतिया बड़ी मनोहारी पाल्हा पाते गीत गावे टीला टाणी ताल देवे झरना गावे है रिझुआरी रे भाई बड़ी मनोहारी लुगु जिनगा पारसनाथ बोने देखा मेंजूर नाच नदी जोरिया मारे हिल कोरी रे भाई बड़ी मनोहारी। आर बसंत ऋतु के एगो गीते बीतलै हेमंत ऋतु अल बसंत रे हुलसलै हमर जिया देखी ऋतु राज रे अम्बा मंजर गेल महुआ खोचैल रे धरती धधाय भाई नावा रंगेक पात रे। हेमंत ऋतु बीत गेल बसंत ऋतु आई गेल आम महुआ के मंजर महके

0: लागल है। ऐसा समय सब गाछे लौतन लौतन पतई निजगल है, चारों धर हरियर देखा है, जकरा देख के धरतियो इतराई लागल ही। आर अम्बा मंजरे मधु मातल रे, तैसने हमर पिया मातल जाए। तकरे संगे एगो ढिलुआ गीत, जय माने झूला गीत, निमा तरे सुतले रे दादा, अम्बा तरे रे चोर, गोड़ा के पंजनिया रे दादा, लये गेले रे चोर। आर कहाँ से उमड़ल कारी बदरिया, बोल सखी मोर, बूंदे बूंदे बरिस पनिया, गरजी बरसिए घने घने मलक, बोल सखी मोर, उमंगे उमड़े नदिया, सखी कुंजा बोने, सखी कुंजा बोने, टान जागे हमर मने, सखी कुंजा बोने, तुरुरुरु बांसी बाजे, टेसु फूले बोने बोने, पंचम सूर्य कावे कोकिल, सखी फागुन महीने कुंज बोने, लाले लाल सालुक फूटे पोखरी के कोने कोने, मुचकी मुचकी चांद हासे गगने कुंज बोने। इलखे खोरठा के ढेर ढेर लोक गीतवन में पर्यावरण के संगे प्रकृति के प्रेम देखा है। ये सब खोरठा लोकगीत सब में बसंत ऋतु में लाल लाल टेसु परास फूल से बोन के सुंदरता देखा है, तो आमेक मंजर के बीचे कोयले के मधुर साड़ाहो सुना है। एक बटे बांधे लाल लाल सालुक फूल फूटल देख के आकाशे मंडरे वाला चांद मुस्की मारे है, तो दोसर बटे सांझे के समय स्त्री अपन पति के कहो ही जे सूर्यास्त भई गेल है, झींगा फूल फूट गेल है, हे प्रीतम हमार खातिर झींगा फूल गाँथ दे, हमें ओकरा अपन खोपा में लगाएब, आर आखरा हमार संगे चला, उमंग से हमार हृदय नाचे खातिर व्याकुल होबे लागल है। यह सबके संगे आम के मंजर में रस भोरे भंवरा लोभाक संगे प्रतुल रूपे पति के प्रेम रूपे देखल गेल है। आर प्रदूषण मुक्त नीम गाछे खेठे नींद लागे के बाद देखा है, तो साफ आर थीर पानी के भीतर माछ मछरी उन्मुक्त खेल आर हैंडमैन सब पर्यावरण आर प्रकृति के संगे जोरनार देखवे है।
1: यही जानकारी कर साथे अब हमरे कर बेरा सिरायला और एखन हमरे मन खोरठा जानकारी करत रही जेके जानकारी दे रहे हैं महेंद्रनाथ गोस्वामी। और हमरे मन जाते जाते बताए चाहब कि
2: एक कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे प्रभु शरण कर,
1: तो एक साथे सौ भाई बहन मन के
2: जोहार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, लेकिन पहले ये संदेश।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है।
3: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।

0: भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास पर केंद्र सरकार का जोर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पोषण माह और पोषण पखवाड़े के जरिए जागरूकता बढ़ाने पर दिया बल। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा, गांव और पंचायतों को मजबूत करना राज्य सरकार का है लक्ष्य। अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की जारी है कोशिश। प्रदेश भाजपा ने राज्य में चल रहे कौशल विकास मिशन में अनियमितता का लगाया आरोप। ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को भुगतान का दावा, न्यायिक जांच की मांग। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी का बयान, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार राज्य सरकार की प्राथमिकता, विपक्ष पर किया पलटवार। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए शुरू की 6 महीने की माफी योजना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि देश के 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से करीब 9 करोड़ लाभार्थियों तक पोषण और प्रारंभिक शिक्षा की सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के जरिए श्री अन्न और स्थानीय खान पान को बढ़ावा देकर महिलाओं और बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
2: महिला बाल विकास विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। 14 लाख केंद्रों में लगभग 9 करोड़ के आसपास हमारे लाभार्थी हैं, जो 3 से 6 साल के हमारे बच्चे हैं। बच्चे को जब वो आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं तो उनको पोषण के साथ साथ उनको स्कूल के लिए रेडी करना, ये मुख्य लक्ष्य है।
1: ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा है कि विकास का उद्देश्य केवल शहरों का विस्तार नहीं बल्कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक अवसर, सुविधा और सम्मान पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सरकार हर गांव और पंचायत को सशक्त बनाकर समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पर मंत्री ने एक पोस्ट के जरिए कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण समान रूप तक पहुंचाना है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दावा किया है कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालु मंदिर की व्यवस्थाओं और पूजा पद्धति से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि संभावित सीईओ की भूमिका और अधिकार तय करना ट्रस्ट का विषय है। वहीं कथित चढ़ावा गबन के आरोपों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रांची के पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय ने ट्रस्ट की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं।
3: ये एक बड़ा सवाल है कि जो आस्था के तौर पे मंदिरों में दान देते हैं, ब्लाइंड तौर पे बिना बताए हुए डाल है, उन सारे चीजों का अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तिरुपति इतना बड़ा मंदिर है, कभी आज तक ये बात नहीं आया हुआ।
1: प्रदेश भाजपा ने झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी पर ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को सूची से हटाकर करोड़ों रुपए के भुगतान का आरोप लगाया है। प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने दस्तावेजों के आधार पर

0: उच्च स्तरीय न्यायिक जांच और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। श्री शाह आज रांची में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
1: झारखंड में स्किल डेवलपमेंट के विभाग ने ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को 55 करोड़ रुपए का पेमेंट किया, जो कि पूर्ण रूप से अवैध है, और अगस्त यानी कि अगले महीने से इनको और पेमेंट देने की तैयारी है। इसमें क्या रूपरेखा है, कैसे ये पूरा घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, मैं एक एक करके आपके सामने इसका विवरण जो है रखता जाऊंगा।
0: झारखंड में स्वर्ण व्यवसायियों के खिलाफ बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चिंता जताई है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर श्री मरांडी ने गोड्डा और गुमला जिले में हाल की लूट की घटनाओं का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार पर सुरक्षा देने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस से दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की मांग भी की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने दावा किया कि वे प्रतिदिन लोगों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान का प्रयास करते रहें और जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही उन्होंने विपक्ष की आलोचनाओं पर भी प्रतिक्रिया दी। मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दावा किया कि राज्य सरकार के कार्यों के प्रति जनता का भरोसा दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एकमुश्त अवसर दिया गया है। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है। एक रिपोर्ट।
2: ईपीएफओ की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रांची विश्वविद्यालय के 67वें स्थापना दिवस समारोह का समापन प्रशासनिक भवन परिसर में हरित वेदिका के तहत पौधारोपण के साथ हुआ। कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों और कर्मियों ने पौधारोपण किया। पाकुड़ जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न मतदान केंद्रों पर डिजिटाइजेशन कैंप लगाए गए। कैंपों में गणना प्रपत्र को वितरण, संग्रह और ऑनलाइन डिजिटाइजेशन किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अरविंद कुमार लाल सहित अन्य अधिकारियों ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया। खूंटी जिले से पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एक हार्डकोर उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर एक देशी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। रांची में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय थ्रोबॉल खिलाड़ियों ने शांतिपूर्ण सांकेतिक धरना दिया। खिलाड़ियों ने राज्य में समानांतर संगठन बनाए जाने का विरोध करते हुए कहा कि इससे चयन प्रक्रिया, मान्यता और खिलाड़ियों के भविष्य पर असर पड़ेगा।

0: फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष वेदांत कौस्तब ने कहा कि खिलाड़ियों को विवाद नहीं बल्कि बेहतर प्रशिक्षण, प्रतियोगिताएं और रोजगार के अवसर चाहिए।
1: जब से थ्रोबॉल झारखंड में आया है तब से लगातार यहाँ के खेल को बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा है। इसी बीच कई एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, सेकंड साउथ एशियन चैंपियनशिप का भी आयोजन हुआ। कहीं ना कहीं पूरे झारखंड के लिए और भारत के लिए एक बहुत गर्व का विषय। कुछ दिन पहले एक नए संघ का घोषणा किया गया है, अनुचित है यहाँ के खेल के लिए। तो हमें लगता है कि खेल को और इस खिलाड़ियों को बांटने का एक प्रयास है।
0: पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में आज जापान कराटे एसोसिएशन झारखंड की ओर से कराटे प्रशिक्षण शिविर सह ब्लैक बेल्ट डिप्लोमा परीक्षा का आयोजन किया गया। शिविर में चाईबासा सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लगभग 150 कराटे खिलाड़ियों ने भाग लेकर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त किया और ब्लैक बेल्ट डिप्लोमा परीक्षा में हिस्सा लिया। इस मौके पर जेकेए इंडिया के तकनीकी निदेशक सिहान आनंद रत्ना ने खिलाड़ियों को कराटे की उन्नत तकनीकों और आत्मरक्षा के प्रभावी तरीकों की जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास पर केंद्र सरकार का जोर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पोषण माह और पोषण पखवाड़े के जरिए जागरूकता बढ़ाने पर दिया बल। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा, गांव और पंचायतों को मजबूत करना राज्य सरकार का है लक्ष्य, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की जारी है कोशिश। प्रदेश भाजपा ने राज्य में चल रहे कौशल विकास मिशन में अनियमितता का लगाया आरोप। ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को भुगतान का दावा, न्यायिक जांच की मांग। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी का बयान, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार राज्य सरकार की प्राथमिकता, विपक्ष पर किया पलटवार। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए शुरू की 6 महीने की माफी योजना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
3: चलो,
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने?
5: खाता हुआ एक्टिव,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता।
1: झारखंड राज्य में एसआईआर 2026 कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही गढ़वा जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है। 30 जून से 29 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम को पारदर्शी और सहभागी बनाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय पूरी तरह से गंभीर है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्र ने एक प्रेस वार्ता कर इसकी विस्तृत जानकारी दी।
2: एसआईआर विधिवत रूप से प्रारंभ हो गया, जो बीएलओ घर घर जाके गणना का काम शुरू करेंगे। इसमें बीएलए 2 जो राजनीतिक दलों के लोग हैं उनसे सहयोग मांगा गया है और हर स्तर पे उनको भी निर्देशित किया गया है कि बीएलओ को सपोर्ट करें ताकि कोई भी मतदाता जो योग्य है मतदाता सूची में एनरोलमेंट से छूटे नहीं और कोई भी अपात्र मतदाता जो इस पात्र मतदाता सूची में रहने के लिए पात्रता नहीं रखता है वो इसमें किसी भी कीमत पे जुड़े नहीं। और बीएलए 2 का भी दायित्व है कि अपने वोटर्स को समझाएं कि यथासंभव मदद करें और जल्दी से फॉर्म भर के उनको दिलवाएं।
1: केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित हो रही उत्तर कोयल जलाशय परियोजना में विस्थापित होने वाले आदिवासी परिवारों के विरोध के कारण इस महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना को लेकर समस्या उत्पन्न हो रही है। विशेषकर डूब क्षेत्र में आने वाले शहीद नीलांबर पीताम्बर के गांव चेमो सनिया के विस्थापित होने वाले आदिवासी परिवारों ने मंडल डैम के विरोध में धरना प्रदर्शन

0: शुरू कर दिया है। मंडल डैम का विरोध कर रहे आदिवासियों का नेतृत्व कर रहे भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कहा,
1: देश की स्वतंत्रता संग्राम में अमर पिता का हमर योगदान है, बिरसा मुंडा हमर योगदान है, सिद्धू कानू का है। तो आप जो है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का वायलेशन करके आप जमीन को जो है कब्जा करना चाहते हैं, उसकी इतिहास भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए इनकी मांग को समर्थन करने के लिए आए हैं। वो कहना चाहते हैं यहाँ की हेमंत सरकार तानाशाही काम कर रही है, रिप्स 2 में भी जबरन काम करने का काम कर रही है, और यहाँ पर कुटकू जलाशय ला करके आदिवासी को विस्थापित किया जा रहा है। तो कहने का मतलब हमारे इतिहास की भूमि जाएगा तो हम आदिवासी कहाँ रहे। इसे मांग करना चाहता हूँ कि अंग्रेजी हुकूमत जैसा काम न करे, आदिवासियों को बचाने का काम करे।
0: जिला मुख्यालय गढ़वा में पिछले दिन मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में महिला पुरुषों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। इस अवसर पर रक्तदान करने वाली नेहा कुमारी नामक महिला ने एक अपनी प्रतिक्रिया में कहा,
2: खुशी हो रही है, तीसरा बार मेरा ब्लड दान हुआ है और बहुत गर्व की बात है कि एक महिला होकर मैं ब्लड दान की हूँ। और हम सभी महिला से बोलती हूँ कि आप लोग भी बहुत गर्व के साथ रक्तदान करें, क्योंकि गरीब को बहुत मतलब सहयोग होता है। और सभी महिला को बोलेंगे कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि हम लोग के महिला को मतलब कमजोर समझा जाता है, लेकिन हम लोग किसी से कमजोर नहीं है।
0: जिले में काफी प्रतीक्षा के बाद जुलाई महीने में मानसून ने दस्तक देकर खेती से निराश हो रहे किसानों में नई उम्मीद जगा दी है। जिले में 5 जुलाई के बाद से रह कर लगातार बारिश हो रही है। बारिश होते ही जिले में चारों ओर भदई फसल और धान के बिचड़े की बुआई शुरू हो चुकी है। मानसून के आगमन के साथ ही किसानों के चेहरे पर रौनक आ गई है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
3: अभी आप सुन रहे थे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:16 हो चुके हैं और अब इस समय है हमारे हिंदी साहित्यिक पत्रिका का शतल। आज आप सुनेंगे कविताएं डॉक्टर माया प्रसाद से और कहानी स्मिता से। प्रस्तुति स्वर प्रणव कुमार का और प्रस्तुति प्रभु शरण की है।

शतदल के आज के इस आयोजन में झारखंड की विशिष्ट व वरिष्ठ कवयित्री माया प्रसाद और समकालीन कहानीकार अस्मिता को हम सुनेंगे। कवयित्री माया प्रसाद जहां अपनी कविताओं के पैनेपन और विविध विषयों पर अपनी बहुआयामी दृष्टिकोण से हमें परिचित कराएंगे, वहीं कहानीकार अस्मिता परिस्थितियों के झंझावत के बीच सपनों के बीज को पल्लवित पुष्पित करने की प्रेरणा देंगे। साथियों, भारतीय परंपरा में शब्द को केवल बातचीत का माध्यम नहीं बल्कि एक असीम ऊर्जा माना गया है, जिसे सही साधना से जागृत कर अद्भुत मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताएं प्राप्त की जा सकती हैं। कविता भी शब्द को जगाने का काम करती है। सही शिल्प और नाद के माध्यम से कविता मंत्र और प्रार्थना बन जाती है। कविता को इस रूप में पिरोने के लिए वर्षों की अटल साधना की जरूरत पड़ती है। कवयित्री माया प्रसाद भी शब्द की ऐसी ही

0: साधना और मर्म को जीती जगाती रही हैं। ये कहती भी हैं, है मलिन अभिव्यक्ति के आकाश का चेहरा, हर तरफ जिंदा कलम पर लग रहा पहरा, सृजन की उर्वर धाराएं हो नहीं ऊसर, लिखूंगी आग के अक्षर। इनकी अभिव्यक्ति के आकाश में कई विषय आकर पनाह पाते हैं, लेकिन जब मानवीय साहचर्य की बात आती है तो ये कह उठती हैं, कब तक हम बैठेंगे ऊब लिए खींच लिए, मन की इस माटी में घुन खाए बीज लिए, दुख की दीवारों पर मिलकर आघात करें, आओ कुछ बात करें। कविता में शब्दों को कैसे तराशा जाता है, कौन सा मानवीय स्पंदन व्यंजना की किन सीढ़ियों से होकर गुजरना चाहता है, कौन सी ध्वनि किन मनोभावों के अनुकूल ढलना चाहती है, जैसे कई बारीक पहलुओं को इनसे पीढ़ियां सीखती रही हैं और सीख ही रही हैं। तो आइए सुनते हैं माया प्रसाद की आवाज में ही उनकी कुछ रचनाएं।
1: आज मैं अपने अलग अलग संकलनों से अलग अलग आस्वाद की कुछ रचनाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। मेरी पहली रचना का शीर्षक है प्रश्नकाल। दर्प से दीप्ते ललाट वाले इस महाप्राण राष्ट्र के समक्ष यातनाओं के लाक्षागृह से निकली यह स्त्री सवाल बनकर खड़ी है, अड़ी है कि जवाब देने ही होंगे इस समय को समय के प्रवक्ताओं को। कहां अब कहां भेजोगे हमें, पूछती है वह। अपने घर आंगन, अपनी बस्तियों, गांवों, शहरों से निकालकर जहां भी भेजोगे हमें, हम रहेंगी नारियां ही। नारियां जो पहले पुरुष को जन्म देंगी, फिर उसकी वशत के हवन कुंड में झोंकी जाएंगी कंठनाल के जलने तक। हवाओं में गूंजेगी उनकी चीखें और तुम अपनी श्रवणेन्द्रियों में इत्र के फाहे डालकर कह कहे लगाओगे, गरीबी और बेवसी के चाबू की ताल पर ठुमके लगाती किसी माँ बहन या बेटी के जिस्म की बोलियां लगाओगे, बाजार सजाओगे। माना कि जिस्मों की होती है जात, होता है धर्म, लेकिन चीखें नहीं होती अच्छी या बुरी, नहीं होती उनकी कोई जाति कोई धर्म, चीखें बस चीखें होती हैं। और अब हमारी चीखों में उतर आया है तेजाब। मेरी दूसरी रचना का शीर्षक है तीलियां। बहुत खुश है वह, उसके हाथ की सुलगती तीली ने पालने में ही झुलस दिया किसी अनचाही आस्था की पौध को, अपने पुंसत्व पर इतराता एकांत में मूछों पर ताव देता वह बार बार लेता है शपथ कि ऐसे ही फूंकता रहेगा जलती तीलियां फेंककर पक्षियों को, शावकों को, घोंसलों को, तब तक जब तक सारा जगत उसकी मनचाही आस्था के घेरे में नहीं आ जाता। मगर बेखबर है वह कि कल उसने फूका था जिस पड़ोसी का बखार, आज उसके बच्चे ने उठा लिया है हाथ में सुलगता हुआ सरकंडा। अभी असमंजस में है बच्चा, सुलगे हुए सरकंडे को बुझाना है या सर फिरे पड़ोसी का घर जलाना है, ऐसे में कौन आगे आएगा। नाराज बच्चे के माथे पर हाथ फिराकर उसे समझाएगा कि लपटों की नहीं होती आंखें, नहीं देखती वे दाएं या बाएं अपने पराए, छूते ही जला जालती हैं खेत खलिहान रिहायशी मकान और सिर पर चंदोबे सा तना ममता का आसमान। डरा हुआ आदमी भय से निहारता है बच्चे के हाथ में सुलगता सरकंडा, बरजने को उठाता है हाथ इस प्रार्थना के साथ कि आंखों का खारा पानी बुझा दे तमाम सुलगती तीलियों को और सलामत रहें खेत खलिहान रिहायशी मकान और चंदोबे सा तना ममता भरा आसमान। कहते हैं जल ही जीवन है और इस जीवन को संजोने का दायित्व हमारे देश में महिलाओं पर है। देखिए मेरी पानी शीर्षक कविता। सूख गए कुएं चूहे सूख गए सोते, बंद पड़े नलके अब कंठ ना भिगोते, ऐसे में कैसे अब सरसेगा जीवन, बूंद बूंद पानी को तरसेगा जीवन। पांच पांच गागर ले पांच कोश जाती हैं, बिंधे

0: हुए तलवों संग पानी भर लाती हैं, टाबर की कुनबे की प्यासे बुझाती हैं, देवल में सांझ पड़े देवता मनाती हैं, कब उनकी ढाणी में सरसेगा जीवन, कब तक यूं पानी को तरसेगा जीवन। हाट बाट चौराहे सील बंद बोतल में टेट भरी हो तो मिल जाता है पानी, पर जिनके चूल्हों के भाग्य में उदासी है उनकी मजबूरी पर हंसता है पानी। हाट बाट चौराहे सील बंद बोतल में टेट भरी हो तो मिल जाता है पानी, पर जिनके चूल्हों के भाग्य में उदासी है उनकी मजबूरी पर हंसता है पानी। होठों पर पपड़ी है भीग भीग जाए मन, होठों पर पपड़ी है भीग भीग जाए मन, कब तक यूं पानी को तरसेगा जीवन, ऐसे में कैसे अब सरसेगा जीवन, ऐसे में कैसे अब सरसेगा जीवन। और ये रचना जिसमें हम दुष्काल की बातें कर रहे हैं, वो दुष्काल जिसने पता नहीं कितने लोगों को हमसे छीन लिया, कितने रिश्ते नाते हमसे अलग हो गए, आओ कुछ बात करें। कब तक हम बैठेंगे ऊब लिए खीज लिए, मन की इस माटी में घुन खाए बीज लिए, दुख की दीवारों पर मिलकर आघात करें, आओ कुछ बात करें। रिश्तों के बीच अभी निर्मम सी दूरी है, रिश्तों के बीच अभी निर्मम सी दूरी है, पर अपने साहब का नाम ही सबूरी है। दो गज की दूरी में सिमटे क्यों मेल जोल, भय की फुंकारों से जलता जीवन अमोल, ऐसे में गुमसुम रह हम क्यों अपघात करें, आओ कुछ बात करें। ऐसे तो हम तुम बिन खेले ही हारेंगे, ऐसे तो हम तुम बिन खेले ही हारेंगे, राहों के कुशकंटक कैसे क्या जारेंगे, धूसर से दर्पण में मुखड़ों के मिलन रंग, आज के तराजू पर तौलें क्यों हर उमंग, सोच की अमावस को पूनों की रात करें, आओ कुछ बात करें, आओ कुछ बात करें। कब तक हम बैठेंगे ऊब लिए खीज लिए, मन की इस माटी में घुन खाए बीज लिए, दुख की दीवारों पर मिलकर आघात करें, आओ कुछ बात करें। और ये आखिरी कविता जो शायद मेरा रचनात्मक संकल्प भी है, आग के अक्षर। बर्फ से लिपटे हुए हैं नगर बस्ती घर, लिखूंगी आग के अक्षर। बर्फ से लिपटे हुए हैं नगर बस्ती घर, लिखूंगी आग के अक्षर। है मलिन अभिव्यक्ति के आकाश का चेहरा, हर तरफ जिंदा कलम पर लग रहा पहरा, नयन में दुबके हुए सपने सजग हो लें, अश्रु पलकों से ढुलक कर भीति भय धोले, सृजन की उर्वर धरा ये हो नहीं उसर, लिखूंगी आग के अक्षर। ब्याज को समझा सकूं मैं जिंदगी का मोल, गगन हो भयहीन पंछी गा सके परतोल, नाश के उन्माद का क्रम कर सकूं यदि भंग, इंद्रधनुषी हो उठेगा यह समय बेरंग, फिर धरा पर खिलखिलाए प्यार के निर्झर, लिखूंगी आग के अक्षर, लिखूंगी आग के अक्षर।
1: मित्रों, कोई भी व्यक्ति रातों रात सफल नहीं होता। सफलता तक पहुंचने का रास्ता असफलताओं, निराशाओं और आत्मसंघर्ष से होकर गुजरता है। सबसे कठिन काम होता है हर असफलता के बाद स्वयं को फिर से खड़ा करना। कई बार आपके अपने भी आपके सपनों पर विश्वास नहीं करते। कभी कभी तो स्वयं को भी लगने लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। लेकिन यदि हिम्मत नहीं हारते तो एक दिन वही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। विडंबना यह है कि लोग जब आपकी सफलताओं को देखते हैं तो उन्हें केवल चमक दिखाई पड़ती है। पुरस्कार, सम्मान, उपलब्धियां और पहचान, यही सब नजर आते हैं। लेकिन उस चमक के पीछे जो संघर्ष, अनगिनत असफलताएं, टूटते हुए सपने, फिर से उठ खड़े होने का साहस और वर्षों की अथक मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। आज के आधुनिक परिवेश में सफल होने की जल्दबाजी जिस तरह से अपराध और वैमनस्यता को जन्म दे रही है, ऐसे में अस्मिता की कहानी मनुष्य जीवन को सही

0: दिशा देने का काम करती है। वो यहां तक कहती हैं कि कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनका सबसे बड़ा प्रतिफल आत्मसंतोष होता है। तो आइए सुनते हैं कहानीकार अस्मिता की जुबानी उन्हीं की कहानी, सच होते हैं सपने भी।
1: विशाल सभागार पूरी तरह सजा धजा था। मंच पर राज्य के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री और अन्य विशिष्ट अतिथि विराजमान थे। सभागार में शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ साथ राज्य के प्रतिष्ठित उद्योगपति भी उपस्थित थे। दर्शक दरगाह खचाखच भरी हुई थी और मीडिया कॉर्नर में छोटे बड़े सभी समाचार संस्थानों के पत्रकार अपनी अपनी जगह संभाले हुए थे। चारों ओर लगे आकर्षक पोस्टर इस भव्य आयोजन की गरिमा को और बढ़ा रहे थे। यह राज्य के उद्यमियों के लिए गौरव का अवसर था। विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योगपतियों को मुख्यमंत्री उद्यमी सम्मान से सम्मानित किया जाना था। पिछले कई महीनों से पूरा सरकारी तंत्र इस आयोजन की तैयारियों में जुटा था और आज वह बहुप्रतीक्षित दिन आ ही गया था। सभागार रोशनी से जगमगा रहा था। सभी अतिथि अपनी निर्धारित सीटों पर विराजमान हो चुके थे। उद्घोषक ने मंच संभाला और मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद नन्ही बालिकाओं ने गणेश वंदना और स्वागत गीत पर मनोहारी नृत्य प्रस्तुत किया। पूरे वातावरण में एक सहज सकारात्मक ऊर्जा फैल गई। अब सम्मान समारोह आरंभ हुआ। उद्घोषक एक एक कर सम्मानित होने वाले उद्यमियों के नाम पुकार रहा था और मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों ने अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर रहे थे। तभी उद्घोषक की आवाज पूरे सभागार में गूंज उठी। अब मैं आमंत्रित करता हूं राज्य की सफल महिला उद्यमी श्रीमती शर्मिला जी को। इन्होंने अत्यंत कम समय में अपने उद्यम के माध्यम से न केवल राज्य का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया है बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया है। उनकी कंपनी ग्रामीण विकास में भी निरंतर महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज इन्हें मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। आइए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शर्मिला आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ मंच की ओर बढ़ी। अनायास ही सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। 55 वर्षीय शर्मिला का व्यक्तित्व गरिमामय और आकर्षक था। चॉकलेटी रंग की शुद्ध रेशमी साड़ी, कानों में हीरे के टॉप्स, गले में सोने की महीन चेन में जड़ा हीरे का लॉकेट, एक हाथ में सुनहरे कंगन और दूसरे हाथ में महंगी घड़ी उसकी सादगीपूर्ण भव्यता को और निखार रहे थे। चेहरे पर केवल हल्का सा काजल, सलीके से लगी लिपस्टिक और माथे पर छोटी सी बिंदी, बिना किसी बनावटी आडंबर के वह एक सफल, आत्मविश्वासी और गरिमामयी महिला की जीवंत तस्वीर लग रही थी। मंच पर पहुंचकर उसने दोनों हाथों को जोड़ उपस्थित अतिथियों और सभागार का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। सम्मान ग्रहण के बाद शर्मिला को अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया गया। माइक संभालते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, आज का यह सम्मान मेरे लिए केवल एक पुरस्कार नहीं बल्कि मेरी वर्षों की मेहनत और संघर्ष की स्वीकृति है। सच तो यह है कि कोई भी व्यक्ति रातों रात सफल नहीं होता। सफलता तक पहुंचने का रास्ता असफलताओं, निराशाओं और आत्मसंघर्ष से होकर गुजरता है। सबसे कठिन काम होता है हर असफलता के बाद स्वयं को फिर से खड़ा करना। कई बार अपने भी आपके सपनों पर विश्वास नहीं करते। कभी कभी तो स्वयं को भी लगने लगता है कि अब शायद आगे बढ़ना संभव नहीं, लेकिन यदि हिम्मत नहीं हारते तो एक दिन वही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसलिए मैं केवल इतना कहना चाहूंगी, हार मत मानिए क्योंकि हार के ठीक आगे ही जीत आपका इंतजार कर रही होती है। एक बार फिर तालियों की गूंज पूरे सभागार में फैल गई। कार्यक्रम के बाद मीडिया ने उनसे कई प्रश्न पूछे। शर्मिला ने हर सवाल का उत्तर पूरे आत्मविश्वास और सहज मुस्कान के साथ दिया। शुभकामनाएं स्वीकार करती हुई वह अपनी कार में बैठ घर के लिए रवाना हो गई। चेहरे पर संतोष की चमक थी। दिन अत्यंत व्यस्त रहा था लेकिन आज की थकान भी उसे सुखद लग रही थी। घर पहुंचकर उसने स्वयं के लिए एक कप कॉफी बनाई और आराम कुर्सी पर बैठ गई। जैसे ही उसने आंखें मूंदी, दिन भर की घटनाएं और वर्ष

देने लगा था कि अचानक नोटबंदी ने व्यवसाय को झटका दे दिया। उसने हार नहीं मानी, कुछ स्कूलों से जुड़कर यूनिफॉर्म का काम शुरू किया और धीरे धीरे कारोबार फिर संभलने लगा। लेकिन नियति की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने उसके पूरे व्यवसाय को लगभग समाप्त कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि उसे अपना पुराना कारोबार बंद करना पड़ा। पहले लॉकडाउन के बाद उसने नए क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशनी शुरू की, मगर अनुभव की कमी, सही मार्गदर्शन का अभाव और सीमित पूंजी उसके कदम रोकते रहे। तभी दूसरा लॉकडाउन आ गया। जो कुछ नया शुरू करने का साहस जुटाया था वह फिर ठहर सा गया। एक वर्ष और यूं ही बीत गया। वह लगातार जानकारी जुटाती रही, लोगों से मिलती रही, सीखती रही। आज पीछे मुड़कर देखती है तो मुस्कुरा देती है, कितनी अनजान थी तब वह। लॉकडाउन समाप्त हुआ तो उसने निश्चय किया कि अब एक टीम बनाकर फिर से शुरुआत की जाए। लेकिन जीवन शायद उसकी दृढ़ता की एक और परीक्षा लेना चाहता था। एक दिन स्कूटी फिसल गई और उसका पैर बुरी तरह टूट गया। यह स्मृति आते ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। प्लास्टर लगे महीनों बीत गए, कभी चिंता घेरती, कभी झुंझलाहट होती और कभी नए सपने आकार लेने लगते। आखिरकार हड्डी तो जुड़ गई, लेकिन लंबे समय तक बिस्तर पर रहने के कारण चलना भी जैसे फिर से सीखना पड़ा। धीरे धीरे उसने एक एक कदम बढ़ाया और जीवन की तरह चलना भी फिर सीख लिया। समय किसी के लिए नहीं रुकता, उसके लिए भी नहीं रुका। धीरे धीरे कुछ लोग साथ जुड़ने लगे, एक छोटी सी टीम तैयार होने लगी। यह नहीं पता था कि कौन कब तक साथ देगा और कौन बीच रास्ते छोड़ जाएगा, लेकिन उसने चलना नहीं छोड़ा। कोई किसी नए व्यवसाय की सलाह देता, कोई किसी नए अवसर की जानकारी। वह हर संभावना को समझने के लिए निकल पड़ती। सुबह घर से निकलती तो कई बार शाम ढले लौटती, लोगों से मिलती, अनुभव बटोरती और सीखती रहती। हर नई शुरुआत उम्मीद जगाती, फिर कई बार वही उम्मीद टूटकर बिखर जाती। इसी संघर्ष में दो तीन वर्ष और गुजर गए। कुछ काम भी मिले, कुछ सफलताएं भी मिली, लेकिन जितनी मेहनत और भाग दौड़ थी उसके मुकाबले उपलब्धियां भी बहुत छोटी थी। हाँ, इस पूरे सफर में एक बड़ा बदलाव जरूर आया। लोग उसे पहचानने लगे थे, उसका परिचय और उसका दायरा लगातार बढ़ रहा था। इसी यात्रा में कई लोग अपने आप साथ छोड़ते चले गए और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें आगे बढ़ने के लिए उसे स्वयं पीछे छोड़ना पड़ा। शायद यही हर सफलता की कीमत होती है। कहीं न कहीं यह बदलाव उसके लिए अच्छा ही साबित हुआ। अब टीम भले ही छोटी थी, लेकिन जो लोग साथ थे वे पूर्ण समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने को तैयार थे। संख्या कम थी पर भरोसा और प्रतिबद्धता कहीं अधिक मजबूत थी। कपड़ों के व्यवसाय के दौरान उसने एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाई थी। उस समय वह अकेले ही सब कुछ संभालती थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थीं, जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं और कुछ भरोसेमंद लोग भी इस सफर का हिस्सा बन चुके थे। ऐसे में एक पार्टनरशिप फर्म की आवश्यकता महसूस हुई और सबसे कठिन निर्णय यह था कि साझेदार कौन बने और कौन नहीं। यह केवल कानूनी औपचारिकता नहीं बल्कि भविष्य की नींव रखने जैसा निर्णय था। बहुत सोच विचार और लोगों को परखने के बाद उसने केवल एक व्यक्ति को अपना साझेदार चुना। इस प्रकार नई पार्टनरशिप फर्म अस्तित्व में आई, जिसके लिए हर तरह के पंजीकरण कराए गए। अब यात्रा एक नए मोड़ पर थी। काम की तलाश, नए अवसरों की पहचान, बाजार को समझना और आगे बढ़ने के रास्ते खोजने का सिलसिला लगातार चलता रहा। राह कठिन थी लेकिन असंभव नहीं। छोटे छोटे कदम ही सही, मगर हर कदम उसे अपनी मंजिल के थोड़ा और करीब ले जा रहा था। जैसे जैसे काम का दायरा बढ़ा, यह महसूस हुआ कि अब व्यवसाय को एक संगठित स्वरूप देने का समय आ गया। आपसी सहमति से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गठन किया गया। इसके साथ ही पूरे व्यवसाय को व्यवस्थित ढंग से विभिन्न विभागों में बांटा गया, ब्रांड का पंजीकरण कराया गया और प्रत्येक जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई। अब सफलता की पहली किरणें दिखाई देने लगी थीं। इन्हीं दिनों उसके भीतर बचपन का एक पुराना सपना फिर से जाग उठा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सपना। वह मानती थी कि हर काम केवल लाभ कमाने के लिए नहीं किया जाता, कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनका सबसे बड़ा प्रतिफल आत्मसंतोष होता है। समाज से बहुत कुछ मिला है, इसलिए उसे कुछ लौटाना भी चाहिए। इसी सोच के साथ उसने महिलाओं के लिए स्वरोजगार की एक नई पहल शुरू की।
छोटी छोटी मशीनों और

0: नियमित प्रशिक्षण के माध्यम से अनेक महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर मिला। हर सप्ताह उनके हाथों में आने वाली मेहनत की कमाई ने केवल उनकी आर्थिक स्थिति ही नहीं बदली बल्कि उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को भी नई पहचान दी। धीरे धीरे यह पहल एक आंदोलन का रूप लेने लगी। स्वरोजगार फिर से शुरू हुई यात्रा रोजगार सृजन तक पहुंच गई। अब वह केवल स्वयं आगे नहीं बढ़ रही थी बल्कि अनेक लोगों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ा रही थी। आज जब लोग उसकी सफलता को देखते हैं तो उन्हें केवल चमक दिखाई देती है, पुरस्कार, सम्मान, उपलब्धियां और पहचान, वही सब नजर आता है। लेकिन उस चमक के पीछे छिपे संघर्ष, अनगिनत असफलताएं, टूटते हुए सपने, फिर से उठ खड़े होने का साहस और वर्षों की अथक मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। कॉफी का अंतिम घूंट पीकर उसने सामने रखे सुबह के अखबार को उठाया। पहले पन्ने पर अपनी मुस्कुराती हुई तस्वीर देखकर उसके चेहरे पर फिर वही संतोष भरी मुस्कान लौट आई। मोटे अक्षरों में छपी सुर्खी थी, हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी नजर मंजिल पर टिकाए रखें, सपने एक दिन जरूर सच होते हैं। शर्मिला कुछ क्षण उस शीर्षक को निहारती रही, फिर अखबार को धीरे से मोड़कर मेज पर रख दिया। खिड़की से आती सुनहरी धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसे लगा जैसे जीवन एक बार फिर किसी नई सुबह का संदेश दे रहा हो। वह मुस्कुराई क्योंकि अब उसके सपनों की मंजिल केवल उसकी अपनी सफलता नहीं थी बल्कि उन हजारों आंखों में नए सपने जगाना था जो कभी उसकी तरफ परिस्थितियों के सामने ठहर गई थी। उसकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, असल में अब एक नई कहानी शुरू हो रही थी। धन्यवाद।
1: इसी के साथ
2: आप सुन रहे थे हमारे हिंदी साहित्यिक पत्रिका शतदल। प्रस्तुति स्वर था प्रणव कुमार का और प्रस्तुति थी प्रभु शरण की।

यह आकाशवाणी कराची केंद्र है दोस्तों। दोस्तों आइए अब आपको बता दें अब से कुछ ही देर में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। अब से कुछ ही देर में 7:45 पर आप सुनेंगे संताली समाचार पत्रिका।

9:30 पर वक्त होगा रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम का, जिसे आप सुनेंगे आज अंग्रेजी में और इसे रिले किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से।

रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का समय होगा रात्रि 10 बजे से। धारवाड़ के ए श्रेणी के कलाकार कुमार मतदूर का गायन आज आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में।

रक्षा राज्य मंत्री दो स्ट्रीट वेंडर्स तको स्थायी ठकुआ एमाको मेंते रांची रे ओते नेल केदाय दीपिका पांडे सी केटे आतो मेंते संकल्प नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी दो आतो रोठा रे लगतीयन सुविधा कथा येते कोनो सरकार ऐसे मारे सिरा मंत्री रघुवर दास हो निशाना केदाय SIR कमी चला करना पुनिया विधानसभा रोठा रे मोड़े गोटे मतदान केंद्र रे 7% डिजिटाइजेशन नीत भी 83% खन बढ़ती प्रपत्र हटी आर पुनोत रे नहा रे दा है दड़ेया 14 जुलाई खन संथाल रे अधिक अजाग दा पसे हिजू आ तापमान नरू आ

उतनो मेंटे गंभीर मिनाया। तेहन उनी रांची रेन महापौर रोशनी खलको सा रांची रेना पंडरा थाना सुरखली ओत नियल के दाय। जेमन स्ट्रीट वेंडर्स ताको रोजगार लगी स्थायी ठेको एमाको लगी को दड़ेया। मानोतान सेठ दो होला निगम बोर्ड दरबार रेहो नवा कथा उठव लेदाय। आ तेहन उनी नवा रे कमी एदाय नियलेना। उनी दो श्रमिक आर कटी व्यापारी ताको मौज सुविधा एमाको लगी संकल्प दोहरा के दाय। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह दो केटे आतो केटे पंचायत रे जोर एम अकान है। उनी दो मीटेन सोशल मीडिया पोस्ट रे मेन के दाय जे अर्थ एकेन सोहर पसना बांग बिचकोम अखरी होड़ हबी सुविधा अरमान मोहत इदिया। ग्रामीण विकास मंत्री दो मेन के दाय जे सरकार नवा संकल्प करना जे पोनोता सनाम आतो केटे जो सनाम पंचायत केटे बिना आर लहांती या मार्शल सावता रे अखरी होड़ हबी सेटेरो मा। झारखंड साउते गोटा दिसोम रे 1 जुलाई कोन विकसित भारत जी राम जी योजना लागू एना। नी दिसोम सरकार रा नवा केटे ते कमी जोर रे दाय। नवा लगी ग्रामीण विकास मंत्रालय रेन संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा पनोत रे पे माहा दाड़ा के दाय। उन्हीं दो रांची रे बैसी साउते खूंटी और गुमला ठोठा रे विकास योजना नेल के दाय। निये ओक्ते श्रीमती शर्मा दो ग्रामीण विकास मनरेगा जे एस एल पी एस आर ग्रामीण आजीविका खोन जुड़ो भेगार भेगार योजना नेल के दाय। ताकरे मानव दिवस सृजन कुई बिनाव आर लंबित भुगतान उसरा चाबारे चर्चा के दाय। ढांचागत संरचना विकास रे पनोत सरकार फोकस मिना। मंत्री हफीजुल हसन दो मधुपुर प्रखंड कजरा मोड़ रे कम से कम 1 करोड़ टका खोन सड़क केटेज कमी होला शिलान्यास के दाय। निये ओक्ते उनी दो मेन के दाय जे सरकार आतो आतो रे सड़क सेचे पटाव आर लगतियान सुविधा पासनाव एदाय। केटे सड़क क्षेत्र लहांतिया रेड़ कना सड़क केटेज ते इलाका रेन होड़ सीधा फायदा को नामा। नोते नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी दो आतो रोठा रे लगतियान सुविधा कथा रे पुनः सरकार ऐसे के दिया। उनी दो सोशल मीडिया रे ग्रीडी रेना पीरटाण प्रखंड आमी टेन वायरल वीडियो साझा के दाय। ओंडे किछु आतो होड़ मी टेन हमाल होड़मो ई आयो होड़ पारकोम ते लादे कते अस्पताल को इदी एदेया। मानोतान मरांडी दो नवा अड्डी कोस्टो वाना लय के दाय। उनी मेन के दाय जे नवा खोन लहा नवा आतो खोन गे मी टेन मामला हे लेना मेन खा नी थबी सड़क बांग बेना वकाना। नेता प्रतिपक्ष दो मेन के दाय जे नवा अड्डी भावना ना कथा करना जे तेहें जो आयमा आतो सड़क लेकान बुनियादी सुविधा बाय नाम का दाय। मारे सिरा मंत्री रघुवर दास दो प्रतियोगी बिडो रे अनियमितता मेनते पुनः सरकार रे निशाना का दाय। उनी दो मीटेन सोशल मीडिया पोस्ट रे मेन के दाय जे जेपीएससी सिविल सेवा बिडो 2025 पीटी बिडो मेनते कुकली का दाय। ओना अडी भावना ना कथा कना सोशल मीडिया रे वायरल ओएमआर सीट आर बिडो परिणाम कोन जुड़ो कथा जुदी सरी कान खान दो आयमा पटुआ जुवन को भविष्य रे आघात करना। पटुआ को होते ते उठ वका सनाम कथा रे आयोग आर पुनः सरकार तेला एम चाहे जेमन स्थिति सफा मा भाजपा लगी जुवन को भले पहल कथा करना। रांची रे झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन ना केंद्रीय समिति या बैसी हुई ना केंद्रीय कथा को सक्रिय ताहे लगी हुकुम एमा कुआ। राष्ट्रीय एसटी आयोग द निये हफ्ता भेगार भेगार संस्थान रे जनजातीय संस्था खोन जुड़ो एटके टोड़े आर योजना कमी नियल किदा। आयोग रेन सदस्य आशा लकड़ा दो रांची रे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रहो नियल दरबार रे सेले लेना है। निये ओक्ते उनी दो लहांती योजना प्रभावी कमी कसनी आर एटके टोड़े चबा रे ध्यान एमो लगी मेन के दाय। ताक रे आयोग रेन अधिकारी यूनिवर्सिटी रेन कुलपति प्रोफेसर आर एटा अधिकारी को तहे कना। पुनोत रे एस आई आर कमी चला कना।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार दोलई के दे जे BLO होते थे नी तभी 83% खोंडीर वोटर को तला एन्यूमेरेशन प्रपत्र को हटी नकादा मानोतान कुमार दो सना मतदाता को नवा

या सक्रिय भागी ठोके लगी मेन किदाय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दो लय किदाय जे 14 जुलाई खोन चुनाव पाठशाला हो हुयुआ ओनारे सनाम स्टेक होल्डर्स खोन गोड़ो आर भागीदारी आसो कनाय उनी दो लय किदाय जे SIR प्रपत्र पेरे मामला रे चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र रेना मतदान केंद्र संख्या 195 और 196 आर तोरपा विधान क्षेत्र रेना मतदान केंद्र 87 बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र मतदान केंद्र 44 और सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र मतदान केंद्र संख्या 218 रे BLO दो सनाम वोटर ताको प्रपत्र पेरे कते 100% डिजिटलाइजेशन पूरो के दाको केंद्र प्रायोजित PMFME योजना लेकाते नीत हबी 12 लाख खोंडीर सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम को ऋण को अंगो चगादा नवा इते होला मीटेन कमी अरी हुए ना तीरे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान दो नवा योजना लेकाते 12 लाख लाभार्थी रांची रे इंद्रजीत सी मान मोहत के दिया और 19 स्वीकृति पत्र और प्रमाण पत्र एमा दिया पुलिस महानिदेशक तदासा मिश्रा दो निये हफ्ता विधि व्यवस्था मेंते पश्चिमी सिंहभूम आसराय केला खरसावा रे बैसी किदाय उन्हीं दो होड़ कुआ सुरक्षा सनाम कोन मरांग लय किदाय आर नक्सली चबा को प्रतिबद्धता दोहरा किदाय सराय केला आर रांची रे उन्हीं दो हिजु 16 जुलाई कोन एहोबो रथ यात्रा रे सुरक्षा सपड़ाव नियल किदाय आर जरूरी हुकुम एमा कुआ है राज्य सूचना आयोग रे पुनिया सूचना आयुक्त को नियुक्त के कोते आयोग कमी रे तेजी है इना सूचना आयुक्त तनुज खत्रिया मंझी अरी रे गुमला रे होला बैसी हुई लेना निये ओक्ते सूचना अधिकार आर अधिनियम पालन आर कमी कसनी नियल के दाय मानोतान खत्री दो लंबित मामला चबा आर होड़ ताको समयबद्ध सूचना एमाको लगी मेन के दाय विश्व जनसंख्या महा रे होला गोटा दिसोम रे आयमा कमी अरी हुए ना नुआ इते रांची रे हुएन कमी अरी रे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से ले लेना है उन्हीं दो नुआ कथा रे संतोक किदाय जे जनसंख्या नियंत्रण रे एभेन ढीर आकाना मानोतान अंसारी दो पनोत रे स्वास्थ्य सुविधा केटेज लगी प्रतिबद्धता दोहरा किदाय ताक रे बेस कमी स्वास्थ्य कर्मी तको सम्मानित के कुआ को पलामू रे पुलिस ऑपरेशन प्रहार ते जीतकर न्याम अकाना मेदनी नगर सदन और पांकी थाना क्षेत्र रे पुलिस कार्रवाई ओकते 50 किलोग्राम डोडा और 754 ग्राम अफीम और 15,000 टका नगद को जब्त अकादा पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी दो लय किदाय जे हरियाणा रेन चर्चित तस्कर साते मोड़े होड़ को सा अका कुआ को पनोता आयमा इलाका रे 18 जुलाई हबी दा हिजुआ संथाल परगना वा आयमा ठोठा आर ग्रेडी रे 14 जुलाई हिलो ओका ओका रे अडी कजाक दा हे दाड़ेआ तेहिं आर गपा हो पनोत रेना आयमा जायगा रे अडी कजाक दा हे दाड़ेआ निये ओक्ते अंधी आर चेटेर हो न्यूर दाड़ेआ उनाते मौसम विज्ञान केंद्र दो येलो अलर्ट जारी अकादाय तापमान रे 4 डिग्री सेल्सियस सभी कमोआ नोते पूर्वी सिंहभूम रेना बहरा घोड़ा रे सनाम कोन ढेर 35 मिलीलीटर दा लेदाय नीत हबी पोनोत रे 38% कम दा हे आकाना नहा रे आधार नासे शर्मा कोन डिजिटल क्रांति बनाव आकाना तेहन दिन गे संसद होते ते पारित आधार अधिनियम लेकाते भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण बनाव लेदा को आधार उपयोग ते नीत सीधे लाभुक हबी योजना टका हिजुक कना उनाते पारदर्शी ढी रकाना आर बिचौलिया को कोमेना मारांग मंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई हिलो मोने रेना कथा कमी अरी लेकाते मारांग मंत्री आकाशवाणी रे प्रसारित नुआ कमी अरी आयमा होड़ आंदोलन वाहक बिना वकाना आखरी रे मुरु खबर रक्षा राज्य मंत्री दो स्ट्रीट वेंडर्स ताको स्थायी ठोके एमाको मेनते रांची रे ओते नेल के दाय दीपिका पांडे सिंह केटे आतो मेनते संकल्प
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी दो आतो रोठा रे लगतियन सुविधा कथा इते पुनः सरकार एसे।

0: हमारे सिरा मंत्री रघुवर दास हो निशाना के दय SIR कमी चला करना पुनिया विधानसभा रोठा रे मोड़े गोटे मतदान केंद्र रे 100% डिजिटाइजेशन नीत अभी 83% फोन बढ़ती प्रपत्र हटिन आर पुनोत रे नहा रे दा हे दाड़े आ 14 जुलाई कौन संथाल रे अड़ी कजाक दा पासे हिजू आ तापमान नुरू आ
1: आप सुन रहे थे संताली समाचार पत्रिका। यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दोस्तों अब से कुछ ही देर में हम हाजिर होंगे फिल्मी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा के साथ। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार दोस्तों, घड़ी में रात के 8 बज चुके हैं और मैं हाजिर हूँ आपके रेडियो हम सफ़र मोनिता। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे पता है आप सभी दोस्तों को इंतज़ार रहता है फिल्मी गीतों का, जिसे आप सुनते हैं रात्रि के 8 बजे। दोस्तों, दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब वक्त होता है कि खुद के साथ थोड़ा जुड़ने का, थोड़ी सुकून भरे बातें करने का। और आज हम कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो आज एक बेहद ख़ास दिन है, इंटरनेशनल होप डे। जी हाँ बिल्कुल, हमें हमेशा आशावादी रहना है और ज़िंदगी में कभी भी कोई उतार या चढ़ाव आए तो हमें अपने दिल से ये ज़रूर कहना है कि ऐ दिल, ऑल

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, आकाशवाणी के रांची केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा, अपनी रेडियो हम सफर मौनिता के साथ। दोस्तों, रात का ये वक्त अक्सर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि दिन भर की चिंताएं, चुनौतियां और जिम्मेदारियां, और अक्सर हम थक जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि रात कितनी ही गहरी क्यों ना हो, सुबह का सूरज आने से पहले का ये वक्त ही हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद देता है। तो आशावादी रहिए और ज़िंदगी को हमेशा एक पॉजिटिव नोट पर जरूर जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी वाकई में बहुत ही खूबसूरत है।

0: दोस्तों, उम्मीद या आशा कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक ताकत है जो हमें ये विश्वास दिलाती है और हमसे ये कहती है कि कल का दिन आज से बेहतर होगा। और आज का दिन हमें ये याद दिलाने के लिए है कि हार माना विकल्प नहीं है। हमारी स्टूडियो की घड़ी हमें बार बार ये इशारा कर रही है कि हम कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं संपन्न करें। तो आप अपनी रेडियो हम सफर मौनिता को आज्ञा दीजिए, चलते चलते बस आपसे यही कहेंगे कि होप, आशा कभी ना छोड़िए। नमस्कार।
1: Blackmail your present to ruin a beautiful future.

0: Hello.
1: Hi, ma'am. I'm calling from eBay. Are you happy with the service?
0: Yeah, why?
1: Please do continue shopping with us. Do let us know if you require any further.
2: आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। अगला कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे कुछ ही देर में, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
1: हेलो, नमस्कार दोस्तों, उड़ान कार्यक्रम में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा है आप अपने परिवार के साथ खुश और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आज का कार्यक्रम शुरू करें, आप हमारा फोन नंबर नोट कर लें। हमारा फोन नंबर है
0: 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
2: यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए।
1: हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1।

श्रोताओं, आज के युग में बहुत से परिवर्तन आ रहे हैं। लोगों के रहन सहन, खाना पीना और पहनावे में बहुत परिवर्तन आ गया है, परंतु आज भी कुछ लोग पुराने सोच वाले हैं। श्रोताओं, अक्सर आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि हमारे समय में ये नहीं होता था, वो नहीं होता था, महिलाओं को घर में रहना चाहिए, अधिक शिक्षा की आड़ लेकर लड़कियां बिगड़ रही हैं। और ये तो जरूर ही सुना होगा कि ज्यादा पढ़ी लिखी बहू में संस्कार की कमी होती है, परंतु ऐसा नहीं है। आज शिक्षा ने नारी को इतना सशक्त बना दिया है कि वह बड़े से बड़े काम को बहुत ही सहजता से संपन्न करती है, घर की जिम्मेदारियों का पालन बहुत ही सही ढंग से करती है। परंतु कुछ ही पुरानी सोच रखने वाले लोग आज भी उन्हीं नियमों का पालन करते हैं और अपनी सोच को नहीं बदलना चाहते। उनके अनुसार बहू और बेटी में बहुत बड़ा अंतर है। बहू को तो घर में रहकर सिर्फ घर के ही काम करने चाहिए। अगर घर की बहू बाहर जाकर नौकरी करती है तो उनके मान सम्मान को ठेस पहुंच जाती है, जबकि बेटी को नौकरी करने और ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करने पर बल दिया जाता है। उनके अनुसार बहू और बेटी दोनों के लिए अलग अलग नियम है, परंतु आज उन पुरानी सोच रखने वाले लोगों को समझना होगा कि बहू और बेटी दोनों को शिक्षा और नौकरी करने का अधिकार है, परंतु पुरानी सोच रखने वालों के कारण ही नारी को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है। रीति रिवाज के नाम पर घर की चार दीवारी में बंद रखा जाता है, जिससे नारी के गुणों को उजागर नहीं किया जाता, परंतु शिक्षा पाकर महिलाओं को उनके अधिकारों का ज्ञान होता है। शिक्षा पाकर ही वे घर गृहस्थी में सहयोग दे पाती हैं। इस विषय पर हम आपसे कुछ बात करेंगे और कुछ सुनाएंगे, एक नाटक। पूनम एक पढ़ी लिखी और बहुत ही संस्कारी बहू है। वह सुलोचना जी मतलब अपनी सांस का बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रखती है। वह अपने घर का काम बहुत ही सलीके से करती है और पूरी कोशिश करती है कि उसकी सास को उसे किसी प्रकार की शिकायत ना हो। परंतु सुलोचना जी, जो पूनम की सास, बहुत ही पुराने विचार की है। वह पूनम के हर काम पर कड़ी नजर रखती है। वह चाहती है जिस प्रकार उन्होंने अपनी सास के समय उनकी किसी भी बात का विरोध नहीं किया, उसी तरह पूनम भी उनके हर एक फैसले को माने और हर काम को पूछ कर करे। वहीं समीर, जो पूनम का पति है, वह एक कंपनी में काम करता है। समीर पूनम और अपनी माँ का पूरा ध्यान रखता है, परंतु वह कभी भी अपनी माँ और पत्नी के बीच होने वाली बातों में नहीं बोलता। वह पूनम को ही समझाता है कि माँ की किसी बात का बुरा ना मानना। और पूनम भी सुलोचना जी का पूरा सम्मान करती है। सुलोचना जी की बड़ी बेटी श्रद्धा एक विवाहित महिला है। वह अपनी माँ के घर पर कुछ दिन रहने के लिए आई है। उसका एक 2 साल का बेटा है। वह एक ऑफिस में काम करती है। वह बहुत ही समझदार महिला है। वह अपनी माँ को भी समझाती है कि आजकल लड़कियां बहुत काम कर रही हैं, घर के साथ साथ ऑफिस में भी काम करती हैं। परंतु पुराने विचारों होने के कारण वह श्रद्धा की बात को अनसुना कर देती है और अपने विचारों को अहमियत देती है। वही पूनम अपनी सास और ननद का पूरा ध्यान रखती है और अपने काम में व्यस्त रहती है। वहीं सुलोचना जी के पति रामचंद्र जी बहुत ही शांत व्यक्ति हैं। वह सुलोचना जी को समझाते हैं, परंतु सुलोचना जी को समझाने के लिए

0: तथा इस युग में बहू बेटी एक समान है ये बताने के लिए आइए सुनते हैं इस पर आधारित एक नाटक।
1: अरे सुनती हो, अभी तक सुबह की चाय नहीं आई।
2: अरे क्या, अब तक चाय नहीं दी आपको? तभी बोलती थी ज्यादा पढ़ी लिखी बहू लाओगे तो यही होगा।
1: अरे इसमें पढ़ाई लिखाई कहाँ से आ गई? क्या पता बहू किसी काम में बिजी हो, तुम क्यों नहीं चाय बना लेती?
2: हाँ, घर में बहू के होते हुए अब मैं काम करूँ।
1: तो क्या हुआ, घर के छोटे छोटे काम करने से तुम थोड़ी छोटी हो जाओगी? अरे काम करने से तो शरीर फिट रहता है।
2: हाँ, मुझे तो घर की नौकरानी बना दो। पहले आपकी माँ की जी हजूरी की, अब आपकी बहू की जी हजूरी करूँ। तो सुन लो, ये सब मुझसे नहीं होगा।
1: तुम भी ना छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देती हो।
3: सॉरी पापा जी, वो थोड़ी देर हो गई चाय देने में।
1: कोई बात नहीं बेटा।
3: माँ जी, क्या आपको कुछ चाहिए?
2: नहीं बहू, तुम जाकर समीर को नाश्ता देकर जल्दी से उसके ऑफिस का टिफिन पैक कर दो। और हाँ, सभी काम सफाई से और ध्यान से करना।
3: जी माँ जी, ठीक है।
0: परंतु पूनम को घर के सारे काम साड़ी पहनकर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए वह समीर से बात करना चाहती है। तो वह समीर के लिए नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में समीर ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। पूनम कुछ समय चुपचाप वहीं खड़ी रही और सोचती है कि किस प्रकार वह समीर से बात करे। तभी पूनम समीर से बोलती है।
3: समीर, समीर सुनो ना, कुछ बात करनी है मुझे आपसे।
4: हाँ बोलो, क्या बात है?
3: समीर, घर के काम करते समय क्या मैं साड़ी की जगह सूट पहन सकती हूँ?
4: अरे यार पूनम, तुमको तो पता है ना, माँ को तुम्हारा सूट पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं।
3: पर समीर, मैं घर के बहुत से काम को साड़ी पहनकर नहीं कर सकती। प्लीज समीर, समझने की कोशिश करो। समीर, एक बार तुम माँ से बात करो ना।
4: देखो पूनम, मैं इस बारे में माँ से कुछ नहीं कहने वाला, और तुम भी जानती हो माँ नहीं मानेगी।
3: तो क्या मैं एक बार माँ से बात कर लूँ?
4: तुमको जो ठीक लगे वो करो, पर मैं तो माँ को कुछ नहीं बोलने वाला। हाँ, पर मुझे तुम्हारे सूट पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब मैं ऑफिस चलता हूँ।
0: इतना कहकर समीर गाड़ी लेकर जॉब पर चला जाता है और पूनम घर के काम में लग जाती है। वो किचन के काम कर ही रही होती है और अपनी सास से बात करने के बारे में सोच रही होती है कि किस तरह से वह अपनी सास से साड़ी की जगह सूट पहनने वाली बात कहे। उसकी काम वाली शांता उसको देखकर पूछ लेती है, दीदी जी क्या सोच रही हो? तो पूनम बोलती है, कुछ नहीं, बस वैसे ही। और तभी पूनम की सास सुलोचना जी वहां आ जाती है। अभी सुलोचना जी रसोई का जायजा ले रही थी, तभी पूनम हिम्मत करके उनसे पूछ लेती है।
2: हाँ क्या बात है, बोलो।
3: माँ जी, आप कहे तो मैं भी आपकी तरह घर में सूट पहनना शुरू कर दूं क्या? वो साड़ी में काम नहीं हो पाता है मुझसे।
2: खबरदार बहू, जो मेरे सामने तुमने दोबारा ऐसी बात कही तो इस घर में तुम मेरी बराबरी करने चली हो।
3: नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस,
2: मैं खूब समझती हूँ तुम्हारा क्या मतलब था, लेकिन एक बात याद रखना बहू, जब तक मेरी सास जिंदा थी मैंने हमेशा ही साड़ी पहनी थी और साड़ी का पल्लू हमेशा सर से उतरने नहीं दिया। उनके गुजर जाने के बाद ही मैंने अपनी मर्जी से सूट पहनना शुरू किया था, उससे पहले नहीं। और तुम्हारी सास यानी कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। जब इस दुनिया से विदा हो जाऊंगी तब तुम अपनी मर्जी से घर में जो मर्जी पहन लेना।
0: ये कहते हुए सुलोचना जी रसोई से बाहर निकल कर वापिस जाने के लिए मुड़ी थी कि उनकी नज़र अपनी बेटी श्रद्धा से टकरा गई। लेकिन आज अचानक अपनी माँ की ऊंची आवाज़ सुनकर वह सीढ़ियों से उतरकर रसोई में आ पहुँची थी और अपनी माँ से इस तरह गुस्सा करने की वजह पूछती है।
5: क्या हुआ माँ, आप भाभी पर इतना नाराज क्यों हो रही हो? क्या बात हो गई?
2: अरे क्या बताऊँ बेटा, आजकल की बहुएं ससुराल आते ही अपनी सास की बराबरी करने लगती हैं।
5: लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ।
2: तेरी भाभी को साड़ी पहनने से परहेज हो रहा है, इसका सूट पहनने का मन कर रहा है।
5: माँ, सूट तो मैं भी पहनती हूँ, इसमें क्या दिक्कत?
2: मुझे दिक्कत है।
5: लेकिन क्यों माँ?
2: बेटा, तेरे ससुराल में तेरी सास नहीं है और दामाद जी तुझे खुद बाजार ले जाकर तेरी पसंद के कपड़े दिलवाते हैं, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही है।
5: माँ, मैं कुछ समझी नहीं।
2: तेरी भाभी का सूट पहनना ना तो मुझे पसंद है और ना ही तेरे भाई समीर को।
3: लेकिन

0: माँ, समीर को भाभी के सूट पहनने से क्या दिक्कत है?
1: बेटा, यह बात उसे अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं। मुझे जो पसंद है वही मेरे बेटे को पसंद है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ।
0: पर माँ,
2: तभी एक चीख सुनाई देती है। ये चीख रोहित यानी श्रद्धा के बेटे की थी, जो अपनी माँ श्रद्धा के पीछे पीछे आने की कोशिश में सीढ़ियों से गिर गया था और बहुत ही चीख चीख कर रो रहा था। उसके सिर पर चोट आई थी, बहुत खून निकल रहा था। तभी पूनम और काम वाली शांता भी वहाँ आ गई। सुलोचना जी घबरा कर रोने लगी और कहती है,
1: अरे अरे, ये क्या हुआ? रोहित कैसे गिर गया? हे भगवान, कितनी चोट आई है इसे। शांता, जरा देख तो सही, पड़ोस वाले शर्मा जी घर पर ही है ना? जल्दी जा, उन्हें बुला कर लेकर आ। रोहित को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, जल्दी जा।
3: पर माँ जी, अभी तो उनको मैंने ऑफिस जाते हुए देखा है, वो तो चले गए अपने ऑफिस।
1: अरे अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँ? घर में कोई आदमी भी नहीं है जो रोहित को हॉस्पिटल ले जाए। हे भगवान।
4: माँ जी, समीर भी ऑफिस चले गए, घर पर नहीं है। आप कहो तो मैं उनको फोन करके बुला लूँ क्या घर?
5: अरे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। अरे भाभी, आपको तो स्कूटी चलानी आती है ना? आप तो स्कूटी से कॉलेज जाती थी ना? भाभी जल्दी से स्कूटी की चाबी ले आओ और रोहित को हॉस्पिटल ले चलो। भाभी प्लीज जल्दी करो।
1: पर दीदी, पर वर क्या, जल्दी कर बहू, ये ले स्कूटी की चाबी और रोहित को हॉस्पिटल ले जाओ।
5: जी माँ जी, ठीक है।
2: साड़ी का पल्लू संभालते हुए स्कूटी चलाने के लिए बाहर की ओर चलती है। तभी उसकी सास सलोचना जी आवाज लगाती है,
1: अरे बहू रुक, पहले सूट पहन ले, साड़ी पहनकर स्कूटी कैसे चलाएगी, कहीं गिर गई तो?
5: पर माँ जी,
1: पर वर कुछ नहीं, जल्दी कर, जाके सूट पहन और रोहित को जल्दी ले जा हॉस्पिटल।
5: ठीक है माँ जी।
2: पूनम बहुत ही हैरान थी सास के ऐसे व्यवहार से। वो सास जो अभी कुछ देर पहले बोल रही थी कि मेरे मरने तक का इंतजार करो, तब करना अपने मन की, और अब वो खुद ही बोल रही है कि सूट पहनकर और घर से बाहर जाने के लिए स्कूटी की चाबी दे रही है। स्कूटी की चाबी मिलते ही मानो पूनम की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। अब वह खुद को बहुत खुश और आजाद महसूस कर रही थी। पूनम ने जल्दी से सूट पहना और स्कूटी की चाबी ली और रोहित और श्रद्धा के साथ हॉस्पिटल पहुंच गई, जिससे रोहित का इलाज समय पर हो सका और सुलोचना जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब सुलोचना जी अपनी बहू को हर वो काम करने को कहती जो उनकी बेटी करती है, फिर वो पढ़ाई हो या जॉब। अब तो सुलोचना जी खुद पूनम को मार्केट ले जाती और उसकी पसंद की ड्रेस दिलवाती है, और पूनम भी सुलोचना जी की बहुत सेवा करती है, अपनी माँ से भी ज्यादा ध्यान रखती है। सारा दिन उनके घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहता है।

तो श्रोताओं, आपने इस कहानी के माध्यम से सुना कि किस प्रकार एक छोटी सी घटना ने सुलोचना जी की पुरानी सोच और रूढ़वादी सोच को बदल कर रख दिया और किस तरह उनकी सोच बदल गई। इस कहानी को सुनकर आपके मन में क्या विचार आए हैं, जरूर हमें बताएं।

0: तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सब भी आपके विचार, परामर्श, सुझाव या आपके सवाल हमको लिख सकते हैं। तो हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और हमारा फोन नंबर है
1: 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
0: अब आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अपनी दोस्त प्रियंका को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
2: दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

0: यह आकाशवाणी कराची केंद्र है और हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:23 हो रहे हैं और अब इस समय है सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और पत्रकार सिमरन सोढ़ी।
3: आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा की, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। प्रधानमंत्री मोदी इन 3 देशों में गए जहां भारत का तीनों देशों के साथ संबंध है उनको गहरा किया, डिफेंस पर बातचीत हुई, पार्टनरशिप्स पे बात हुई और इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स पर भी बात हुई है। प्रोफेसर मिश्रा, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की विजिट को देखते हैं जो जुलाई 6-8 में हुई और इस विजिट में लगभग 14 की एग्रीमेंट साइन हुए हैं, तो ये जो 3 देश का दौरा रहा है प्रधानमंत्री का, ये कितना महत्वपूर्ण है और जो शुरुआत हुई इंडोनेशिया में, हम वहां से शुरुआत करते हैं।
4: देखिए सिमरन जी, प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा था 3 देशों का, इंडोनेशिया से शुरू हुआ जैसा कि आपने बताया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पर जाकर खत्म हुआ। ये तीनों ही देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत और भारत के महासागर विजन के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और जैसा कि हमने देखा कि इन तीनों ही देशों में भारत और इन मित्र देशों के बीच में रक्षा, सुरक्षा से लेकर के आर्थिक मुद्दों पर, सेमीकंडक्टर और न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर, स्पेस सेक्टर को लेकर, पीपल टू पीपल कनेक्ट को लेकर, के साथ ही साथ जो नए उभरते हुए क्षेत्र हैं उन पर भी तमाम समझौते हुए हैं, तमाम एग्रीमेंट्स हुए हैं और इससे ये बात बहुत स्पष्ट है कि भारत न सिर्फ अपनी एक्ट ईस्ट नीति को एक पूरा साकार रूप दे रहा है बल्कि ये जो इंडो पैसिफिक के देश हैं ये भी चाहते हैं, ये भी उसमें पूरी तत्परता के साथ लगे हुए हैं। जहां तक इंडोनेशिया का सवाल है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा के दौरान 20 समझौते हुए, 14 MOUs हुए और 6 पर समझौता हुआ और उसका एक अनाउंसमेंट हुआ। अगर हम 14 समझौतों की बात करें तो मिसाइल डिफेंस को लेकर के इंडोनेशिया ने अपनी सहमति व्यक्त की है और कहा कि हम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेंगे और इसके साथ वो दक्षिण पूर्व एशिया का 3रा देश बन गया है जो भारत के साथ ब्रह्मोस को लेकर के व्यापार करना चाहता है। इसके साथ ही साथ एयर टू एयर मिसाइल, जिसमें हमारी अस्त्रा मिसाइल है, उसको लेकर भी बातचीत हुई है और उसको लेकर भी एक अनाउंसमेंट किया गया है। जहां तक मेरी समझ है इस क्षेत्र को लेकर के सरफेस टू एयर मिसाइल के क्षेत्र में भी आकाश मिसाइल को लेकर भारत और इंडोनेशिया के बीच बात हो रही है। लेकिन समझौतों में सिर्फ रक्षा और सुरक्षा के संबंध ही नहीं, मैरिटाइम सिक्योरिटी ही नहीं, इसके साथ साथ दोनों देशों के बीच में एक स्टील सप्लाई चेन बनाने की बात हुई है क्योंकि इंडोनेशिया निकल मिनरल होता है, उसके उत्पादन में दुनिया का 3रा सबसे बड़ा देश है और इस लिहाज से भारत की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्षेत्र है और तमाम जो आधुनिक जो IT टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्र है उसमें इंडोनेशिया की ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो मिनरल्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में समझौते हुए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के दोनों देशों में समझौते हुए हैं, टेलीकम्युनिकेशन भी है, उसके बाद हेल्थ वर्क फोर्स को लेकर के कोविड जैसी महामारियों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बात कही और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो ने भी कहा कि इंडोनेशिया भारत से बहुत कुछ सीखता है, प्रबोवो ने भारतीय सरकार की जो नीतियां हैं, प्रधानमंत्री मोदी की जो नीतियां हैं उनसे बहुत कुछ सीखा है और प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में या इन जनता की जो कल्याण के लिए जो नीतियां बनी है उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है और ये इस बात से परिलक्षित होता है कि भारत का इलेक्शन कमीशन और KPU जनरल इलेक्शन कमीशन जो इंडोनेशिया का है दोनों के बीच में समझौता हुआ है कि चुनावों को कैसे अच्छे ढंग से संचालित किया जाए। साथ ही साथ नॉन फेरस मिनरल्स पे भी बात हुई है, मेटल आइटम्स पर बात हुई है। IFC IOR इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में जो हमारे इंडियन ओशन रीजन में जो एक फ्यूजन सेंटर बना है गुड़गांव में, वहां पर एक इंडोनेशियन लायसन ऑफिसर की नियुक्ति होगी और उसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर के सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक अपनी ब्रांच इंडोनेशिया में खोलेगा सिंघासेरी में और प्रम्बानान मंदिर जिसकी यात्रा भी प्रधानमंत्री ने की उसके रिस्टोरेशन का काम भी भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडोनेशियन अपने काउंटर पार्ट से मिलकर जो जकार्ता में जो ये मंदिर है उसके जीर्णोद्धार और पुनरोद्धार का काम भी करेंगे। तो इंडोनेशिया की यात्रा मुझे लगता है इन 20

0: 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब ही ये बात कही गई थी कि एक्ट ईस्ट नीति एक प्रोएक्टिव नीति है दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के देशों के साथ जुड़ने के लिए। और उस समय ये बात कही गई कि हमारे 3 C's कल्चर, कॉमर्स और कनेक्टिविटी हमारे तमाम मित्र देशों और पड़ोसियों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आज एक्ट ईस्ट नीति इस स्तर पर पहुंच गई है कि आज हम कल्चर, कनेक्टिविटी, कॉमर्स की तो बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, मैरिटाइम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ हम डायस्पोरा की बात कर रहे हैं। तो ये 4 जो D's इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आ गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की जो पहले से एक परिकल्पना रही है कि भारत की सीमाएं सिर्फ दक्षिण एशिया के देशों से या इंडियन सबकॉन्टिनेंट जिसे कहते हैं उससे निर्धारित नहीं होती, भारत की विदेश नीति अपने जो ईस्टर्न फ्लैंक है, जो पूर्वी तरफ के देश हैं जिनके साथ हमारे सदियों से संबंध रहे हैं, उनके साथ भी भारत के उतने ही अच्छे संबंध होने चाहिए। जब म्यांमार के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की तो भी हमने देखा कि दोनों देशों के बीच में संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तो इस एक्ट ईस्ट नीति में अब 40 वर्षों बाद जब एक भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड पहुंचा और ये यात्रा पिछली साल न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन की विजिट के बाद हुई, मार्च 2025 की यात्रा के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा हुई, और हमने देखा कि सिर्फ 2 मुलाकातों में दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन किया और मैरिटाइम सिक्योरिटी भी एग्रीमेंट साइन किया। दोनों देशों के बीच में अप्रैल 2026 में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले ही साइन हो चुका है जिसको रेटिफाई इस साल के अंत तक कर दिया जाएगा, और ये रिकॉर्ड 9 महीनों के समय में इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया गया। तो ये एक बड़ी बात है। मुझे लगता है एक्ट ईस्ट की नीति में अब वो परिवर्तन आ रहे हैं जिनके दूरगामी परिणाम होंगे, वो परिवर्तन आ रहे हैं जो सीधे हमारी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों और हमारे रक्षा संबंधों और व्यापार के हितों से जुड़े हुए हैं। मैरिटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट और डिफेंस के जो तमाम एग्रीमेंट्स इन तीनों देशों की यात्रा में साइन हुए उससे पता चलता है। आपने सवाल पूछा महासागर नीति का, तीनों ही देशों के साथ भारत ने समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में, आतंकवाद से निपटने, नेचुरल डिजास्टर से निपटने, इन तमाम क्षेत्रों में जो महासागर विजन का जो कोर कॉन्सेप्ट है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसका मतलब यह है कि जो इस क्षेत्र के जो तमाम देश हैं उनकी प्रगति और उनके विकास के साथ साथ भारत का भी विकास हो, और भारत की सुरक्षा है उसके साथ ही इन देशों की सुरक्षा भी जुड़ी हो। तो महासागर विजन में देखिए मैरिटाइम सिक्योरिटी भी आता है और आतंकवाद से लड़ना भी आता है, नेचुरल डिजास्टर सुनामी जैसी डिजास्टर से लड़ना भी आता है, और जो मैरिटाइम पायरेसी है, गन रनिंग है, नार्कोटिक्स है, उनसे जूझना भी आता है। सीधे तौर पर महासागर विजन से ही ऐसा लगता है कि जो हमारे लिस्ट ऑफ MOUs इन तीनों यात्राओं में आए हैं वो उसी से एक तरह से प्रेरित है, और ये दिखाता है कि कैसे महासागर विजन को अब धीरे धीरे उस संकल्पना को धीरे धीरे जमीनी तार्किक परिणत में लाया जा रहा है।
1: प्रोफेसर मिश्रा, अगर हम प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की बात करें जो जुलाई 8 से 11 तक हुई, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विजिट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत की, और जैसा आपने भी बताया अभी कि मैरिटाइम डिफेंस कोलैबोरेशन पर बातचीत हुई, सिक्योरिटी पर बातचीत हुई, और जो एक मेजर एग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो एक सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का हुआ है जिससे ऑस्ट्रेलिया भारत को कमर्शियल यूरेनियम का सप्लाई दे सकता है। तो ये जो एक यूरेनियम सप्लाई का जो एक एग्रीमेंट है ये कितना महत्वपूर्ण है?
0: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बातचीत 2008 में शुरू हुई, तब से लेकर के अगले 6 सालों में 2014 में सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट को साइन किया गया, और उसके बाद से वो ऑस्ट्रेलिया की अपनी संसद में रेटिफिकेशन के प्रोसेस और तमाम उन दस्तावेजों की बार बार जांच परख के साथ साथ एक बड़ा मुद्दा ये भी था जैसा आपने कहा कि दोनों देशों के बीच में भरोसा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने वक्तव्य में भी ये बात कही कि ट्रस्ट सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है दो देशों के बीच में कूटनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने में। आज जब ऑस्ट्रेलिया मलाबार एक्सरसाइज में भारत के साथ है जिसमें जापान और अमेरिका भी है, आज जब ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ क्वाड का एक सदस्य है 2017 के बाद, हमें याद है कि 2007 में जब क्वाड बन रहा था तो ऑस्ट्रेलिया को यही भरोसा नहीं था भारत, तो उसे लग रहा था कि क्वाड बनेगा तो पाकिस्तान और चीन का विरोध होगा और वो उसमें पढ़ना नहीं चाहता। 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने खुद ये इच्छा व्यक्त की कि वो क्वाड में रहे और भारत के साथ मिलकर रक्षा और सुरक्षा मामलों में सहयोग करें। तो ये जो विश्वास की बात है वो आज भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंधों को आगे बढ़ा रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया को पता है कि ये समय की जरूरत है। और इतने वर्षों में 1998 से लेकर 2026 तक भारत ने कभी भी अपने किसी परमाणु कार्यक्रम को न किसी देश के साथ साझा किया है, न उसका किसी गलत ढंग से इस्तेमाल किया है। तो NPT का सिग्नेटरी न होने के बावजूद भारत ने अपनी जो विश्वसनीयता है उसको स्थापित किया है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के आगे

0: बढ़ते हुए, सुधरते हुए और मजबूत होते हुए संबंधों के साथ साथ भारत की अपनी विश्वसनीयता भी परमाणु कार्यक्रम को लेकर के स्थापित हुई है, और इस वजह से ये सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट अब 2026 में साइन हुआ और जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आपने न्यूजीलैंड के बारे में भी हमारे सुनने वालों को विस्तार से बताया, जो भारत और न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में बताया, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की है, इंडोनेशिया की बात की है, महासागर की, और आपने मेंशन भी किया कि क्वाड का भी हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया और भारत, जापान और अमेरिका के साथ। तो ये जब हम सब फैक्टर्स देखते हैं कि कहीं ना कहीं भारत का रिश्ता इंडोनेशिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो तीन देश की जो यात्रा हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, ये हमारे जो रिश्ते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नीचे अगर हम रख के इन रिश्तों को देखें, तो इनको कितना फॉरवर्ड मूवमेंट मिला है, इस यात्रा से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं?
0: इन तीनों देशों की यात्रा से हमारे संबंधों में, इन तीनों देशों के साथ भारत के संबंधों को फॉरवर्ड मूवमेंट मिला है। मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, भारत के इंडोनेशिया के साथ संबंध हमेशा से अच्छे रहे। तो एक छोटा पीरियड था 1960 के दशक में जिसमें भारत और इंडोनेशिया उतने अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो भारत और इंडोनेशिया हमेशा से ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट मोटे तौर पर एक इन नीतियों का को फॉलो करते रहे हैं, और इसलिए दोनों के संबंधों में जो अभी नया परिवर्तन आ रहा है वो एक तार्किक परिणति है उनकी अपनी विदेश नीतियों की प्रेफरेंसेस के हिसाब से। क्वांटम जंप है भारत और इंडोनेशिया के बीच में रक्षा संबंधों को लेकर, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ये क्वांटम लीप है। इन तीनों ही देशों के साथ हम जिस पायदान पर खड़े थे हम उससे कई पायदान ऊपर जा चुके हैं, और इन तीनों देशों के साथ हमारे संबंध भी एक जैसे नहीं थे। इंडोनेशिया हमारे बड़े नजदीकी था लेकिन आज वो हमसे ब्रह्मोस मिसाइल ले रहा है। ऑस्ट्रेलिया जिसके साथ हम कई मिनी लैटरल फोरम्स पर काम कर रहे थे वो आज हमारे साथ यूरेनियम भी साझा करना चाहता है, और मैरिटाइम सिक्योरिटी में मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करना चाहता है। न्यूजीलैंड जिसने बहुत ही कम देश हैं जिनके साथ उसने रक्षा और सैन्य मामलों पर दोस्ताना संबंध रखे हैं, वो भारत के साथ आज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है। तो इन तीनों ही देशों के साथ संबंधों में क्वालिटेटिव जंप हुआ है। अगर हम एफटीए की बात जोड़ें तो वो एक दिखाता है कि मल्टी डायमेंशनल क्वालिटेटिव जंप इन तीनों ही देशों के साथ संबंधों में दिख रहा है साफ तौर पर। आगे आने वाले समय में जब इन समझौतों को जमीनी हकीकत में उतारा जाएगा तब हमें ये देखने को मिलेगा कि कितना परिवर्तन इनसे एक आम भारतीय, एक आम इंडोनेशियन, ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंडर की जिंदगी पर पड़ेगा। तो इसमें रक्षा सुरक्षा के साथ साथ व्यापार संबंधों, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, डायरेक्ट फ्लाइट्स की भी बात हो रही है खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ, लेकिन इंडोनेशिया के साथ भी हमारी डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आगे आने वाले दिनों में ये परिवर्तन दिखेंगे, और भारतीय बाजारों में जब इन न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट्स दिखने शुरू होंगे तो शायद लोगों को लगेगा कि एक्ट ईस्ट की नीति ने कितने व्यापक परिवर्तन भारत की विदेश नीति में, भारत की इकोनॉमी में और भारत के डोमेस्टिक मार्केट में दिखाए।
1: और हमने आज बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन देशों की यात्रा को लेकर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को लेकर, और इन यात्राओं के अंत में हमको जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं और भारत का जो रिश्ता इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ बड़ा है, और भारत की जो नीति है चाहे वो इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, महासागर विजन है, उनको कितना फॉरवर्ड थ्रस्ट मिला है, आज हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बातचीत समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और पत्रकार सिमरन सोडी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: आप सुन रहे थे सुर्खियों में। यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगले कार्यक्रम के लिए हम आपको लिए चलते हमारे दिल्ली केंद्र, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी। अरब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि 1 लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेना ईरानी आक्रामकता उत्पीड़न धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
2: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
3: कार्यक्रम के दौरान जनभवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जनभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। ये अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
4: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
5: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेले जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुआओ हान्यू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफिनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील हैं। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रखा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देशभर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देशभर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य ने सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सजीव उनकी इस गायकी में जयपुर, अतरौली और अन्य घरानों की झलक भी मिलती है। एक बहुमुखी कलाकार और संगीतकार के रूप में कुमार मल्डोर ख्याल, ठुमरी, हिंदी भजन, मराठी अभंग, कन्नड़ दास साहित्य, कन्नड़ वचन साहित्य और कई अन्य संगीत परंपराओं का अन्वेषण करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार कुमार ने देश भर के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुति दी है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय श्री कुमार मर्डूर, अवार्डेड द उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार बाय द संगीत नाटक अकेडमी। कुमार मर्डूर स्टैंड्स आउट एज अ गिफ्टेड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट। हिज ग्राउंडिंग इन द किराना एंड ग्वालियर घरानाज अलोंग विद ट्रेनिंग अंडर हिज फादर पंडित सोमनाथ मर्डूर has led to a unique gaiki that weaves in elements from Jaipur, Atrauli and other gharanas, built on deep riyaz and inspiration from legendary maestros. A multifaceted performer and composer, Kumar explores khayal, tumri, Hindi bhajans, Marathi abhangs, Kannada dasa sahitya, Kannada vachana sahitya and many other traditions. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Kumar has performed throughout the country in various prestigious concerts.
0: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे हैं। श्री कुमार मर्डूर अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग छायानट से कर रहे हैं। विलंबित झुमरा इनायत हो, द्रुत तीन ताल एरी मालनिया, द्रुत तीन ताल तराना।
1: In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath. Shri Kumar Mardur will begin his vocal recital with Raag Chhayanat, Vilambit Jhumra, Inayatahu, Drutteentaal, Eri Maliniya, followed by Tarana in Drutteentaal.

अभी आपने सुना राग छायानट। अब श्री कुमार मर्डूर प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्वरी, विलंबित एकताल सकी मना लागे।

0: द्रुत एकताल बिनती कराता।
1: यू जस्ट हर्ड राग छायानट। श्री कुमार मरडूर विल नाउ प्रेजेंट राग बागेश्री। विलंबित एकताल सखी मना लागेना। द्रुत एकताल बिनती करता।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग बागेश्वरी। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री कुमार मरडूर का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे थे।
1: That was Raag Bageshri. With that, we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha, in which you were listening to a vocal recital by Shri Kumar Maradur. He was accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was earlier recorded at Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
4: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में यह कहने के बाद आया।

कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फू कॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के आउटडोर्स में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।